सुप्रभात। FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 8 जून सन 2026, सुबह के 5:59 होने को है। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हम दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा

0: मुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के तीन दिन जोन टू सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सहनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। आइए सुनते हैं आज का चिंतन भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदनवार, श्री रामचरितमानस का और संगीत सरिता, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, निरोगी रहें, सभी का कल्याण हो और किसी को कभी दुख न सहना पड़े। ये था आज का चिंतन। लीजिए सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

सुबह 6:35 पर रामचरितमानस गान भाग 213, सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर भाग 8, कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खसनीस, प्रस्तुति मनीषा जैन की। सात बजे से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक।

शाम 4 बजे सुनिएगा मधुमेह कारण और बचाव, डॉक्टर कुणाल मेहता से बातचीत सुनिएगा। पांच बजे छाया गीत 5:30 पर, तराने नए पुराने।

6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता। आपको फिर से बता दें, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज सुनेंगे श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर भाग 8। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खसनेस, प्रस्तुति मनीषा जैन की। शाम 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा। शाम 7:45 पर स्मृतियों के स्वर। शाम 7:45 पर स्मृतियों के स्वर, इसके अंतर्गत सुनेगा सेवानिवृत्त सहायक निदेशक अनीता वेस्ले पटेल से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए झलकी। यस सर, लेखक प्रकाश शुक्ला, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। 8:15 पर चित्रलोक। 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार। रात 9:30 आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पर। 10 बजे छायागीत। 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान भाग 213।

भरत के साथ आए अयोध्या वासियों से प्रेम पूर्वक मिलकर श्री रामचंद्र ने उनके सारे संताप दूर कर दिए। और निषाद राज के सौभाग्य का क्या कहना, जिसे मुनिवर वशिष्ठ ने लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से गले लगाया। जब उसने दूर से दंडवत प्रणाम किया तो कुलगुरु ने उसे राम सखा का ये सम्मान दिया। श्री राम ने माताओं के समीप पहुंचकर सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों में गिरकर उन्हें सांत्वना दी। जो भी हुआ था उसके लिए काल, कर्म और विधाता को उत्तरदायी ठहराया। फिर राम और लक्ष्मण ने अयोध्या से आई ब्राह्मण पत्नियों तथा गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की, गंगा तथा गौरी की भांति उनका सम्मान किया। फिर दोनों भाई माता सुमित्रा के चरणों से लिपट गए, ऐसे जैसे भिखारी को अपरिमित संपत्ति मिल गई हो। जब माता कौशल्या के सामने दोनों भाई नतमस्तक हुए तो उन्होंने दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्हें अपने प्रेमाश्रुओं से नहला दिया। ब्राह्मणों, गुरु, मंत्री तथा सभी माताओं को साथ ले भरत श्री राम तथा लक्ष्मण सहित आश्रम पहुंचे। सीता ने कुलगुरु के चरणों से लगकर मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त किया।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। इस श्रृंखला की आज सातवीं कड़ी।
1: रविंद्र जी, अब तक हमने तीन ताल, रूपक, एक ताल और झपताल, शास्त्रीय संगीत में उपयोग में लाए जाने वाले इन तालों की बात की
2: जी।
1: इस पर आधारित फिल्मों में जो गीत हुए हैं उनकी चर्चा की। अब थोड़ी चर्चा ललित संगीत में जो उपयोग किए जाते हैं ताल और उन पर आधारित जो फिल्मी गाने हैं उनकी बात करते हैं। इसके बारे में क्या बताएंगे आप?
2: अभी ये जो है, जैसे तीन ताल, रूपक, एक ताल, झपताल
1: जी,
2: ये ख्याल गायन में इनका प्रयोग करते हैं
1: जी,
2: संगत के लिए, और उसमें विलंबित भी होता है, मध्यलय भी होती है और

0: द्रुतलय भी होती है
1: जी।
0: अभी शास्त्रीय संगीत के अलावा हमारे भारतीय संगीत में उपशास्त्रीय संगीत है, तो उपशास्त्रीय संगीत जो है वो उसकी भी काफ़ी बड़ी विधा है और उसमें भी कई महान कलाकार जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है
1: जी।
0: तो ये जो उपशास्त्रीय संगीत है इसमें ठुमरी, दादरा, कजरी, होरी, बारामासा ऐसे कई सारे प्रकार है
1: जी।
0: तो ये जो प्रकार है इसमें उपयोग में लाए जाने वाले जो ताल है
1: जी,
0: उसमें प्रमुखता है कहरवा और दादरा। तो कहरवा जो है वो कहरवा फिल्मी गीतों में तो काफ़ी गीतों में वो आया है, मतलब अनगिनत गीत है जिसमें कहरवा बजाया गया है। और कहरवा का एक अपना खुद का जो विशेषता है, कहरवा की विशेषता, मतलब जैसे अब हम लोग अगर तीन ताल का उदाहरण लेते हैं तो तीन ताल है 16 मात्रा
1: जी।
0: मतलब सम में आने के लिए हमको 16वीं मात्रा

0: ललित संगीत इसलिए कहते हैं कि वो उसमें सुलभता है, आसानी है। तो सुलभता आसानी होने की वजह से कहरवा में अनगिनत गीतों का निर्माण हुआ है।
1: और अलग अलग गीतों में रविंद्र जी कहरवा के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं।
0: हाँ, कई सारे रूप है
1: जी।
0: तो इसमें हम लोग जो शुरू में बात कर रहे थे कि पैटर्न के बारे में, पैटर्न होते हैं
1: जी,
0: तो अभी कहरवा जो है वो केवल ये मूल
1: ये उसका
0: कहरवा है, धागे नती ना कधी ना
1: जी।
0: अब वो जो कहरवा है वो गीतों के साथ में कई रूप बदल बदल के आया है, और हर गीत में हमको एक नया कहरवा का रूप देखने को मिलता है
1: जी।
0: वो पैटर्न की वजह से है। तो ये पैटर्न जो होते हैं वो पैटर्न तो गीतों के अनुसार कई सारे हैं, एक हाथ दो मैं आपको अभी उदाहरण के तौर पर दिखाता हूँ
1: जी।

0: ऐसे केरवा के कई सारे रूप
1: क्या है, बात है,
0: और इन सारे रूपों में हमको गीत सुनने को मिलते हैं। हम सुनते हैं गीत तो मतलब ऐसा कहने को मन नहीं करता कि ये केरवा बज रहा है।
1: हाँ, नहीं,
0: वो तो उसका इतना सुंदर सुंदर रूप देखने को मिलता है कि बस उसको केवल सुनते जाए, वो उसका वो कोई नाम ना दे हम लोग।
1: तो ये हर अलग ढंग में जो केरवा बजा है और उसका अलग रूप हमारे सामने आता है
0: जी।
1: तो ऐसे दो गीतों की झलक सुन लेते हैं
0: जी। हाँ,
1: कुदरत फिल्म का गीत है, तूने और रंगीले क्या जादू किया, लता जी के

0: की विविधता जो देखने को मिली इन गीतों की झलक में श्रोताओं, इसके बाद रविंद्र जी से पूछना चाहेंगे कि कहरवा ताल का कोई और भी प्रकार है जिसे फिल्म संगीत में प्रयोग में लाया गया है?
1: हाँ, फिल्मी गीतों में लाया गया एक कहरवा का प्रकार है जिसको हम लोग महाराष्ट्र में धुमाई ताल कहते हैं। तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश या अन्य भागों में इसको कहरवा ही कहते हैं। तो कहरवा का ये जो आविष्कार है ये इसकी महाराष्ट्र की थोड़ी सी जो पार्श्वभूमि है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पर मैंने कहा कि महाराष्ट्र में नाट्य संगीत की परंपरा थी,
0: जी जी,
1: तो वैसे ही महाराष्ट्र में कीर्तन की एक परंपरा रही है, दीर्घ परंपरा है ये, बहुत बड़ी परंपरा चलती आई। तो ये कीर्तन जो होता है इसमें एक धुमारी ताल का प्रयोग होता है। तो वो जो प्रयोग है, तो कीर्तन में अक्सर जो कीर्तन करने वाले हैं वो

0: ये कीर्तन परंपरा में इस तरह का ये ताल
1: जी जी
0: बजाया गया, तो उसका ही सुगम स्वरूप जो है, हाँ, ललित स्वरूप वो

0: वाह,
1: ये कहरवा का ही एक अंग आ गया इसमें। तो इस अंग को लेकर भी फिल्मों में गीत बनाए गए हैं और वो काफी अच्छे गीत है
0: जी,
1: लोगों ने बहुत पसंद किए हुए गीत है।
0: तो रविंद्र जी, ये जो एक कहरवा का रूप है जिसे धुमारी कहा जाता है, क्या फिल्म संगीत में इसका उपयोग हुआ है?
1: हाँ बिल्कुल हुआ है, और मतलब वो उदाहरण बताने के लिए ही मैंने अभी जी, इस जी। उस ताल का जिक्र किया।
0: हाँ।
1: कि धुमारी का प्रयोग जो है वो आप सब लोग जानते हैं, गाना अजहुन आए बालमा
0: सावन बीता
1: सावन जाए। बीता जाए, तो इसमें जो धुमारी जो हम लोग महाराष्ट्र में जिसे कहते हैं,
0: हाँ,
1: वो उसमें सुनने को मिलता है।
0: क्या बात है, सांझ और सवेरा फिल्म का बड़ा ही सुंदर गीत है, राग मधुवंती पर आधारित। तो सुनते हैं इस रचना को संगीतकार शंकर जयकिशन।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित द्वैत भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.2 MHz पर सुबह के 7 बजने को हैं। आइए सुनते हैं दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़।

सुबह झालावाड़ नई उम्मीदों, नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ एक नई सुबह आपके द्वार पर दस्तक दे चुकी है। सुबह की ठंडी हवाएं, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी और उगते सूरज की सुनहरी किरणें मानो कह रही हैं, हर नया दिन जीवन को बेहतर बनाने का अवसर लेकर आता है। मैं ललित वैष्णव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़ में, जहां बात होगी समाज की, संस्कारों की, प्रकृति की और इंसानियत की।

आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार झलावाड़ में, जहां बात होगी समाज की, संस्कारों की, प्रकृति की और इंसानियत की।

दोस्तों, आज का मौसम भी काफी सुहाना है। हल्की हवा लोगों को राहत दे रही है। कहीं किसान खेतों की ओर बढ़ चुके हैं, कहीं विद्यार्थी अपने सपनों की तैयारी में लगे हैं और कहीं माएं अपने परिवार के लिए नए दिन की शुरुआत कर रही हैं। यही जीवन है, यही अपनापन है।

जी हाँ दोस्तों, ये सफ़र जिंदगी का सफ़र बहुत ही सुहाना है। और सुबह सुबह की ठंडी हवाओं के साथ जब हम इस सफ़र पर निकलते हैं तो और भी आनंद आ जाता है। और दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम आज के विचार की। तो श्रोताओं, आज का विचार छोटा ज़रूर है, लेकिन यदि कोई इसे जीवन में उतार ले तो उसका पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। जब किसी को देने के लिए कुछ न हो तो प्रेम और सम्मान दीजिए।

दोस्तों, हर इंसान अमीर नहीं होता, हर व्यक्ति के पास दौलत नहीं होती, लेकिन हर व्यक्ति के पास मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार जरूर हो सकता है। आज इंसान के पास साधन बहुत है, लेकिन रिश्तों में अपनापन कम होता जा रहा है। कभी किसी दुखी इंसान के पास बैठ जाइए, कभी किसी बुजुर्ग का सम्मान कर दीजिए, कभी किसी बच्चे को प्यार से मुस्कुरा दीजिए। यकीन मानिए, आपने उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी। सम्मान वो चीज है जो देने वाले को छोटा नहीं करती, बल्कि और बड़ा बना देती है। आज जरूरत इस बात की नहीं कि हम कितनी संपत्ति जोड़ रहे हैं, जरूरत इस बात की है कि हम कितने दिल जोड़ रहे हैं, क्योंकि अंत में इंसान को याद उसके पैसे नहीं, उसके व्यवहार से किया जाता है।

और दोस्तों, आगे हम चर्चा करेंगे आज के दिवस विशेष की। उससे पहले लेते हैं हम एक छोटा सा विराम, जल्द हाजिर होते हैं।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जलवायु और स्वास्थ्य, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन इंसानी स्वास्थ्य के लिए खतरा है। यह साफ हवा, सुरक्षित पानी, स्वस्थ भोजन और सुरक्षित घर पाना मुश्किल बना देता है। ज्यादा तापमान की वजह से हीट स्ट्रोक, हवा में प्रदूषण और मलेरिया डेंगू जैसे रोग बढ़ते हैं, क्योंकि मच्छर नए इलाकों में फैल जाते हैं। जैव विविधता का नुकसान और प्राकृतिक आवास का विनाश नए महामारियों को जन्म दे सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है गरीब लोगों और बच्चों पर, क्योंकि उनके पास इलाज की सुविधा कम होती है। क्या आप जानते हैं, 2019 में मलेरिया ने दुनिया भर में 22.9 करोड़ लोगों को प्रभावित किया और लगभग 4,09,000 मौत हुई। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।

और दोस्तों, अब चर्चा करते हैं आज के दिवस विशेष की। श्रोताओं, आज 8 जून को पूरी दुनिया विश्व महासागर दिवस मनाने जा रही है। समुद्र केवल पानी का विशाल भंडार नहीं है, ये पृथ्वी की सांस है, धरती के संतुलन की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन आज प्लास्टिक, प्रदूषण और लापरवाही ने समुद्रों को भी बीमार कर दिया है। यदि हमने प्रकृति को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। समुद्र हमें सिखाता है, विशाल बनो, गहरा बनो, लेकिन जीवन देने वाले बनो।

0: दोस्तों, समुद्र की लहरों की तरह गीत भी मन को छू जाता है। प्रकृति की सुंदरता को महसूस करना भी एक तरह की पूजा है, क्योंकि जब इंसान प्रकृति से जुड़ता है तभी उसके भीतर संवेदनाएं जीवित रहती हैं। और दोस्तों, अब लेते हैं एक छोटा सा विराम।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

का उपयोग करें, चक्र अपनाएं, मिट्टी का परीक्षण करवाएं, पानी का संतुलित उपयोग करें और गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट को बढ़ाएं। मिट्टी स्वस्थ होगी तो अन्न स्वस्थ होगा और अन्न स्वस्थ होगा तो हमारा जीवन भी स्वस्थ होगा।

दोस्तों, स्वास्थ्य और स्वच्छता किसी भी मजबूत राष्ट्र की नींव होते हैं। पिछले वर्षों में स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर देश में बड़े स्तर पर जागरूकता बढ़ी है। गांवों में शौचालय निर्माण, स्वच्छ भारत अभियान, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और लोगों में जागरूकता पर लगातार कार्य हुआ है। लेकिन केवल योजनाएं काफी नहीं, जब तक जनता खुद जिम्मेदारी नहीं समझेगी तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? घर और आसपास साफ रखें, पानी को व्यर्थ न बहाएं, पौष्टिक भोजन लें, नियमित व्यायाम करें, बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक रहें। याद रखिए, स्वच्छता आदत नहीं, संस्कार होनी चाहिए।

खुद जिम्मेदारी नहीं समझेगी तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? घर और आसपास साफ रखें, पानी को व्यर्थ न बहाएं, पौष्टिक भोजन लें, नियमित व्यायाम करें, बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक रहें। याद रखिए, स्वच्छता आदत नहीं, संस्कार होनी चाहिए।

और श्रोताओं, बात करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर में 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। लोक रचनाओं से जुड़ा हमारा कार्यक्रम लोक संगीत, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 8:15 पर। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत, जिसमें आज आप सुनेंगे चर्चा समुद्री जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है, विश्व महासागर दिवस। साथ ही आप सुनेंगे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। भेंटवार्ता में आप सुनेंगे प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण के लिए बढ़ता खतरा। बातचीत होगी हर्षित शर्मा से, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़ से अनीता शर्मा की बातचीत। जानकारी की बातों में आप जानेंगे जल संरक्षण अभियान। तो सुनते रहिए 8:30 पर कार्यक्रम महिला जगत।

साथियों के लिए कार्यक्रम होगा कृषक चौपाल 7:45 पर, जिसमें आज चर्चा होगी, भेंटवार्ता आप सुनेंगे और जानेंगे जानकारी के बाद में ग्रामीण सड़क योजना, गौरव पथ, मौसम, बाजार भाव, समर्थन मूल्य और कल के कार्यक्रम। रात्रि 9 आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय।

दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है। कौन कब बिछड़ जाए, कौन कब दूर चला जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके शब्द किसी का दिल न दुखाए, आपका व्यवहार किसी की आंखों में नहीं। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय।

दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है। कौन कब बिछड़ जाए, कौन कब दूर चला जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके शब्द किसी का दिल न दुखाए, आपका व्यवहार किसी की आंखों में आंसू न लाए। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है तो पहले अच्छा इंसान बनिए। धन खत्म हो सकता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन प्रेम और सम्मान से कमाई गई पहचान कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, रिश्तों की कदर भी धन की तरह कीजिए। दोनों को कमाना मुश्किल और खोना बहुत आसान होता है। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, इतना बोलकर जाइए कि लोग दोबारा सुनने का इंतजार करें। और दोस्तों, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं ललित वैष्णव आपसे अनुमति चाहता हूं। फिर मिलेंगे नई सुबह, नए विचार और नई ऊर्जा के साथ। तब तक मुस्कुराइए, प्रेम बांटिए, सम्मान दीजिए, क्योंकि यही इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है। सुनते रहिए आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल, कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का आरंभ करते हैं बूंद जो बन गई मोती। आवाज है मुकेश की। इस गीत के बोल लिखे हैं भारत व्यास ने और संगीत रामलाल का।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

और लीजिए दोस्तों, सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में इम्तिहान फिल्म का गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह

0: गीत है, रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत, जो हमने लिया है फिल्म होटल से। आवाज़ है मन्ना रविदास और आशा भोसले की।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

और दोस्तों लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत। फिल्म का नाम है कुर्बानी, आवाज कंचन और मनहर उदास की। इस गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: और परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट

0: मंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
6: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट

0: जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
2: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दो दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
4: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने दो मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
3: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के

0: हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं लोक रचनाओं से जुड़ा हमारा कार्यक्रम लोक संगीत।

0: लोक संगीत कार्यक्रम का आरंभ करते हैं विश्वामित्र दादी जी के गाए इस लोक भजन के साथ।
1: डूंगर ऊपर डूंगर रे डूंगर भीजेगा पाड़ो सन

हासू काई बोलो जी है तो सबका मन की जानो हासू काई बोलो जी ननद जी ठाणे ताना मारे मन की कुनसू बोलो जी ननद जी ठाणे।

कावड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं लोक रचनाओं से जुड़ा हमारा कार्यक्रम लोक संगीत।

वंदना शर्मा की आवाज में आप सुन रहे थे ये लोक वचन। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है और आप सुन रहे हैं लोक संगीत। लीजिए सुनते हैं शिव कुमारी गौड़ की आवाज में ये लोक रचना।

शिव कुमारी गौड़ की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये लोक रचना। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। सुबह के 8:30 हो रहे हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

कभी गुस्से में कभी शांत, उसका रूप अनोखा है। समंदर का यह अंदाज एक नया झोंका है। गुड मॉर्निंग आदाब नमस्ते सत श्री अकाल और सुप्रभात। महिला जगत के इस अंक में मैं अनीता शर्मा स्वागत करती हूँ मेरी सभी सखी सहेलियों और सभी श्रोताओं का। सखियों, आज है विश्व महासागर दिवस जो प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। इस अवधारणा का जो प्रस्ताव है वो मूल रूप से 1992 में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय महासागर विकास केंद्र ICOD और कनाडा के महासागर संस्थान OIC द्वारा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में रखा गया था। सखियों, विश्व महासागर दिवस को 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्वव्यापी सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन का समर्थन करता है और महासागर के संरक्षण और उसके संसाधनों के सतत प्रबंधन में जनहित को बढ़ावा देता है। सखियों, इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा मनाया जाता है। समुद्री जैव विविधता का संतुलन अत्यंत जरूरी है सखियों।

क्योंकि ये संपूर्ण पृथ्वी के जलवायु नियंत्रण, ऑक्सीजन उत्पादन और खाद्य सुरक्षा का मुख्य आधार है। सक्यों महासागरों में जीवों की विविधता

आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.2 MHz पर। सुबह के 8:30 हो रहे हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

कभी गुस्से में कभी शांत, उसका रूप अनोखा है। समंदर का यह अंदाज एक नया झोंका है। गुड मॉर्निंग आदाब नमस्ते सत श्री अकाल और सुप्रभात। महिला जगत के इस अंक में मैं अनीता शर्मा स्वागत करती हूँ मेरी सभी सखी सहेलियों और सभी श्रोताओं का। सखियों, आज है विश्व महासागर दिवस जो प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। इस अवधारणा का जो प्रस्ताव है वो मूल रूप से 1992 में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय महासागर विकास केंद्र ICOD और कनाडा के महासागर संस्थान OIC द्वारा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में रखा गया था। सखियों, विश्व महासागर दिवस को 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्वव्यापी सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन का समर्थन करता है और महासागर के संरक्षण और उसके संसाधनों के सतत प्रबंधन में जनहित को बढ़ावा देता है। सखियों, इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा मनाया जाता है। समुद्री जैव विविधता का संतुलन अत्यंत जरूरी है सखियों, क्योंकि यह संपूर्ण पृथ्वी के जलवायु नियंत्रण, ऑक्सीजन उत्पादन और खाद्य सुरक्षा का मुख्य आधार है। सखियों, महासागरों में जीवों की विविधता

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, केंद्र सरकार के 12 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 12 साल विकास का बदलता भारत बढ़ता भारत इस अभियान के तहत सभी अस्पतालों और सभी सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान आयोजित किया जा रहा है। सखियों, स्वच्छ भारत अभियान ने जन भागीदारी को बढ़ावा देते हुए स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप दिया है। इसलिए सखियों, हम सबका भी परम कर्तव्य है कि अपने आसपास और सभी सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने का प्रयास करें और सभी को इसके लिए प्रेरित भी करें। सखियों, बहुत से जो लोग होते हैं वो स्वच्छता को केवल सौंदर्य से जोड़कर देखते हैं, जबकि इसका सीधा संबंध पर्यावरण से है। जब हम सड़क पर कचरा फेंकते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं या नदियों में गंदगी डालते हैं, तब हम केवल स्थान को गंदा नहीं करते बल्कि प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाते हैं।

0: सखियों, भारत में प्रतिदिन हजारों टन कचरा निकलता है, जिसमें प्लास्टिक कचरा सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। ये नष्ट होने में सैकड़ों वर्ष लेता है और नदियों एवं समुद्र में पहुंचकर जल जीवों के लिए घातक बन जाता है। सखियों, कई शहरों में प्लास्टिक कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं। इनको जलाने से निकलने वाली जहरीली गैसें पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करती हैं। सखियों, आधुनिक जीवन यूज एंड थ्रो पर आधारित होता जा रहा है। सिंगल यूज वस्तुएं सुविधा तो देती हैं, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। प्लास्टिक नालियों को जाम करता है, मिट्टी की उर्वरकता कम करता है, बारिश के समय जल भराव और शहरी बाढ़ का कारण बनता है। प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण के लिए बढ़ता खतरा, इस विषय से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आइए सुन लेते हैं ये भेंट वार्ता। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे महिला जगत कार्यक्रम में। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय स्वयं हमारी बहनों और सभी श्रोताओं को दें।
1: धन्यवाद मैडम इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं हर्षित शर्मा, राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़ में सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ।
0: सर, आज हमारी भेंट वार्ता का विषय है प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण के लिए खतरा। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्लास्टिक प्रदूषण क्या है और ये किस तरह पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है।
1: मैडम, ये वर्तमान में ज्वलंत मुद्दा है जो हमारे समक्ष पूरा प्रकृति संकटग्रस्त है इससे। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्लास्टिक एक कृत्रिम पदार्थ होता है जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता, एक नॉन डिग्रेडेबल टाइप का होता है। इसका उपयोग के बाद मिट्टी में, समुद्री नदियों में इकट्ठा होने लगता है, तो ये प्लास्टिक प्रदूषण का रूप ले लेता है। इसका न सिर्फ मिट्टी की उर्वरता पर असर पड़ता है, बल्कि ये समुद्र में जमा होने पर जलीय जीवों के लिए भी हानिकारक है। प्लास्टिक को हम जब जलाते हैं तब भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें फैलती है, और इसके न केवल शीघ्रकालीन त्वरित इसके हमें नुकसान है, बल्कि दीर्घकालीन भी इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान पैदा होता है, और ये जब माइक्रोप्लास्टिक का रूप ले लेता है तब ये मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है।
0: पुनर्चक्रण क्या एक वास्तविक समाधान हो सकता है प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति पाने में?
1: हाँ, काफी हद तक इसका ये समाधान के रूप में हो सकता है, पर ये अंतिम समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम बार बार प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं तो जो उससे प्रोडक्ट बनता है उसकी गुणवत्ता सही नहीं होती, तो अंततः वो कचरा ही रह जाता है। जो प्लास्टिक का वेस्ट है वो वेस्ट का वेस्ट ही रहता है, तो इसके लिए हमें रिसाइकिल के साथ साथ हमें इसके उत्पादन और उपयोग को भी कम करने की आवश्यकता है।
0: सर, माइक्रोप्लास्टिक क्या है और क्या इसे मानव स्वास्थ्य को खतरा है?
1: माइक्रोप्लास्टिक, जब प्लास्टिक किसी भी कारण से 5 mm के छोटे छोटे कुड़े में बदल जाता है तो ये माइक्रोप्लास्टिक कहलाता है। ये हमारे भोजन करने से, सांस लेने पर, पानी पीने से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिनसे हमें कई प्रकार की हानिकारक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इससे मनुष्य को कैंसर का खतरा हो सकता है, फेफड़ों की समस्या हो सकती है, उसके पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है, हृदय एवं तंत्रिका तंत्र को भी नुकसान हो सकता है।
0: सर, बायोप्लास्टिक प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने का एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, क्या सही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: कुछ हद तक ये एक बेहतरीन पहल हो सकती है बायोप्लास्टिक का विकल्प, लेकिन इसमें जो मेन जो प्रॉब्लम आती है इसमें वह है कि कुछ जो बायोप्लास्टिक जो हमारे पास होते हैं वो हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रियल कंपोजिट में ही डिस्पोज होते हैं। अगर हम उन्हें डायरेक्ट ही अगर पृथ्वी पर ऐसे ही छोड़ देते हैं सामान्य कचरे के साथ, तो वो सेम प्लास्टिक की तरह ही बिहेव करते हैं, उनका भी कंपोजिशन आसानी से नहीं होता है। कुछ और बायोप्लास्टिक बनाने में जैसे स्टार्च, इसका हम यूज करते हैं जो नेचुरल प्रोसेस है, तो हम इसे लार्ज स्केल पे बनाने के लिए हमें अत्यधिक कृषि भूमि और संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, जो भी एक मानव की खाद्य समस्या को उत्पन्न कर देगी।
0: सर, प्लास्टिक हमारी दैनिक दिनचर्या में जैसे रस्ट बस गया है, तो इससे मुक्ति पाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं?
1: आजकल हमारी छोटी से लेकर बड़ी चीज में हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, यहाँ तक कि हम पानी को पीने के लिए भी पानी की बोतल का यूज करते हैं। प्लास्टिक जहाँ असेंशियल है वहाँ तो हमें यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन हम हमारी दैनिक दिनचर्या को ट्राई करें कि प्लास्टिक थैलियों का कम से कम उपयोग करें, बाहर जब भी हम जाएं तो जूट का थैला रखें, कांच की बोतल्स का अधिकतर यूज करें, और हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करके ही प्लास्टिक का समाधान हो सकता है। जहां पर भी प्लास्टिक अल्टरनेटिव मौजूद है वहां हमें प्लास्टिक के अल्टरनेट यूज करना चाहिए। जो कटलरीज होती है वहां हम नेचुरल जो रूप से बनाई गई चीजों का यूज करें, मैक्सिमम हम ट्राई करें कि हम प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, वो ही इसका एक समाधान हो।
0: सर, प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव क्या क्या हैं?
1: प्लास्टिक हानिकारक प्रभावों की हम बात करें तो चूंकि प्लास्टिक नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता है, ये नॉन डिग्रेडेबल है, तो इस

0: मिट्टी की उर्वरता में बहुत ज्यादा कमी होती है, जिससे ना सिर्फ फसल चक्र प्रभावित होता है, अगर यही प्लास्टिक समुद्र में जमा हो जाता है तो जलीय जीवों को भी नुकसान होता है, और वहां से ये माइक्रोप्लास्टिक का रूप ले लेता है। माइक्रोप्लास्टिक का जब हमारे जीवन में भोजन के द्वारा, पानी पीने से, अनेकों माध्यम से हमारे शरीर में पाए जाने लग गया है, और जो मानव जीवन के समक्ष एक संकट के रूप में उपस्थित हो रहा है, न सिर्फ इससे हमें कैंसर, किडनी, यहाँ तक कि बच्चों के मानसिक क्षमता पर भी इसका असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का भी कारक बन रहा है, बल्कि जल प्रदूषण का भी एक संकट के रूप में उपस्थित हो रहा है। इसके हानिकारक प्रभावों में अगर हम इसे जलाने की कोशिश करते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसें उत्सर्जित होती है, और पारिस्थितिक तंत्र पर भी यह व्यवधान के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। इसके दीर्घकालीन प्रभाव में जलवायु परिवर्तन का भी एक फैक्टर माना जा सकता है प्लास्टिक को।
1: प्लास्टिक प्रदूषण संकट के वास्तविक समाधान क्या हैं?
0: अगर मानव जीवन को प्लास्टिक प्रदूषण के संकट से निपटना है तो उसे 4R का यूज करना पड़ेगा, जो हमारे UNEP द्वारा भी कहा गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भी बार बार कहा जाता है, कि सबसे पहले हमें 4R में रिफ्यूज, उसका फर्स्ट आर होगा, जिसमें हमें प्लास्टिक के उपयोग को मना करना पड़ेगा। हम ट्राई करें कि अगर हमें कोई प्लास्टिक का सामान देता है, थैली देता है, तो हम उसको सामाजिक रूप से हम खुद बना करें, हमारी दैनिक दिनचर्या में यूज, सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका हम कम से कम यूज करें। पहली चीज हमें हमारी जीवनचर्या में परिवर्तन करना पड़ेगा। सेकंड आर के हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, हमें जहां मैक्सिमम जहां प्लास्टिक का अल्टरनेट मौजूद नहीं है वहां ही प्लास्टिक का उपयोग करना पड़ेगा, जहां भी उसका अल्टरनेटिव हमें उसके उपयोग कम करना। थर्ड आर के रूप में हम रीयूज कर सकते हैं उसे, जितना जैसे हम एक ही प्लास्टिक के सामान को बार बार यूज करें, जब तक जरूरत न हो हम नया प्लास्टिक का कोई भी सामान नहीं खरीदे, जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसका रीयूज करें हम। फोर्थ जो आर है वो हमारे पास रोट, यानी R4 रोट, यानी खाद बनाना है। हम ये ट्राई करें कि हम हमारा जो प्लास्टिक का कचरा है वो अलग तरीके से हो और जैविक कचरा अलग तरीके से हो। जैविक कचरे को हम डिकम्पोज करें तो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट। मानव जगत को ये पहल करनी चाहिए कि हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो और लाइफ जीवनचर्या हो वो एनवायरमेंट के आधार पर हो, और हम प्लास्टिक का मिनिमम यूज करते हुए हमारी जीवन कुछ जिए, और
1: जी
0: वैज्ञानिक रूप से हम इसमें अधिक से अधिक रिसर्च इस क्षेत्र में बढ़ाएं, जिससे कि इसका एक अल्टरनेटिव समाज के समक्ष उपलब्ध हो।
1: सर, क्या कांच और एल्युमिनियम एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बोतलों से बेहतर विकल्प है?
0: हाँ, कांच और एल्यूमिनियम की बोतल्स प्लास्टिक की बोतल से बहुत बेहतरीन विकल्प है। हम ये इंश्योर करें कि जहाँ हमें जरूरत है हम कांच और एल्यूमिनियम की बोतल्स का ही यूज करते रहें। मेन रूप से इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हम करते हैं तो इनकी कॉस्ट ज्यादा आती है, इनकी कॉस्ट ज्यादा होती है और एक ट्रांसपोर्टेशन में इनकी दिक्कत आती है, इसलिए हमने एक प्लास्टिक को अल्टरनेट के रूप में चुना। लेकिन अगर हम ट्राई करेंगे कि कांच और एल्यूमिनियम की बोतल से हमारा अगर वहां पर यूज हो रहा है तो हम मैक्सिमम ट्राई करें कि कांच और एल्यूमिनियम की बोतल्स का ही यूज करें।
1: क्या यह सोचना अवास्तविक नहीं है कि हम सभी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर सकते हैं?
0: वास्तविक तो नहीं लगता मैडम, अगर सभी लोग इस बात का ठान लें, जिस प्रकार की सरकार की भी पॉलिसीज हैं, हम अगर चरणबद्ध तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं तो जरूर सिंगल यूज प्लास्टिक को तो हम बैन कर सकते हैं। कई देशों में बैन किया गया है, भारत में भी प्लास्टिक की जो थैलियां हैं वो बैन है, सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन है।
1: जी
0: सरकारी तरीके से जो भी किया जा सकता है सरकार अपने कदम उठा रही है। समाज को आगे आने की जरूरत है कि वह सरकार का साथ देते हुए जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो समाज में एक जनजागृति लाएं और सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्ण तरह से निषेध हो और हम उसके अल्टरनेटिव जो नेचुरली रूप से बहुत अच्छे हैं उनका यूज करें। कॉस्ट से ज्यादा हम हमारी लागत से ज्यादा प्रकृति के लिए अपना योगदान दें।
1: सर, प्लास्टिक में कौन कौन से हानिकारक रसायन पाए जाते हैं?
0: प्लास्टिक को मेन रूप के निर्माण में एक इसमें बिस्फेनोल ए पाया जाता है मैडम,
1: जी
0: जो कठोर प्लास्टिक को कठोर बनाने के लिए इसका मेन रूप से यूज होता है। ये एक बहुत हानिकारक रसायन है। यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंट है उसके अनुसार इससे दिल की बीमारी, स्ट्रोक, कैंसर का खतरा आदि बीमारियां हो सकती है। सेकंड इसमें थैलेट्स पाया जाता है जो बच्चों की दिमागी विकास

0: और यही मुझे उम्मीद होगी कि हम सब लोग साथ मिलकर इस प्लास्टिक प्रदूषण जैसी समस्या से जरूर पार पा पाएंगे और इसके समाधान की ओर जरूर आगे बढ़ेंगे।
1: सर, आपने हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण और लाभप्रद जानकारियां साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम।
1: सर, महिला जगत कार्यक्रम जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन का भी माध्यम है। तो अंत में चलते चलते आप अपनी पसंद का कौन सा गीत हमारी सभी बहनों और श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे?

सखियों, अभी हम सुन रहे थे हर्ष शर्मा जी की पसंद का ई गीत। इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सखियों, जानकारी की बातों में आज हम बात कर रहे हैं जल संरक्षण अभियान के बारे में। सखियों, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी स्थानीय तालाबों, झीलों और नदियों के संरक्षण के साथ साथ जल स्वावलंबन हासिल करना है। सखियों, जल संरक्षण से जल संकट से बचा जा सकता है। जल संरक्षण का अर्थ है पानी को बचाना। हालांकि जल संरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोग पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन कई कारणों से यह अभी भी सोचनीय विषय बना हुआ है। सखियों, जल संरक्षण की रणनीतियों में से एक है वर्षा जल संचयन। तालाब, झीलें, नहरें खोदना, जल भंडारण का विस्तार करना और घरों में वर्षा जल संग्रहण नलिकाएं और निस्पंदन प्रणालियां स्थापित करना वर्षा जल संचयन के विभिन्न तरीके हैं। सखियों, एकत्रित और फिल्टर किए गए वर्षा जल का उपयोग शौचालयों, घरेलू बागवानी, लॉन की सिंचाई और छोटे पैमाने की कृषि के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा घर की छत के पानी को पाइप के जरिए जमीन के अंदर बने सोखते गड्ढे या टैंक में इकट्ठा करना। सखियों, आरओ से निकलने वाले वेस्ट पानी और फल और सब्जियों को धोने वाले पानी का उपयोग पौधों में या घर की साफ सफाई के लिए कर सकते हैं। घर में टपकते नलों और लीक होते फ्लश को तुरंत ठीक करवाना अत्यंत जरूरी है। सखियों, जल संरक्षण एक जन आंदोलन है और हमारी

है जिस पर लोग पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन कई कारणों से ये अभी भी शोचनीय विषय बना हुआ है। सखियों, जल संरक्षण की रणनीतियों में से एक है वर्षा जल संचयन। तालाब, झीलें, नहरें खोदना, जल भंडारण का विस्तार करना और घरों में वर्षा जल संग्रहण नलिकाएं और निस्पंदन प्रणालियां स्थापित करना वर्षा जल संचयन के विभिन्न तरीके हैं। सखियों, एकत्रित और फिल्टर किए गए वर्षा जल का उपयोग शौचालयों, घरेलू बागवानी, लॉन की सिंचाई और छोटे पैमाने की कृषि के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा घर की छत के पानी को पाइप के जरिए जमीन के अंदर बने सोखते गड्ढे या टैंक में इकट्ठा करना। सखियों, आरओ से निकलने वाले वेस्ट पानी और फल और सब्जियों को धोने वाले पानी का उपयोग पौधों में या घर की साफ सफाई के लिए कर सकते हैं। घर में टपकते नलों और लीक होते फ्लश को तुरंत ठीक करवाना अत्यंत जरूरी है। सखियों, जल संरक्षण एक जन आंदोलन है और हमारी छोटी

0: हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग, ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी की। और प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थमने की संभावना, पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नामांकन विधानसभा में जमा करा सकेंगे। दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस सीटों पर जीत के आधार पर अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। भाजपा ने वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। नामांकनों की कल जांच की जाएगी। 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे और आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। गौरतलब है कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य निर्वाचित होने हैं, भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। नामांकनों की कल जांच की जाएगी। 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे और आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। गौरतलब है कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य निर्वाचित होने हैं, भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत

0: 2047 का सपना जन भागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा समावेशी विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व और सक्रिय नागरिक भागीदारी द्वारा निर्देशित होना चाहिए। युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए श्री बिरला ने कहा कि शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 7 से 8 सालों में बढ़कर लगभग 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। ये अर्थव्यवस्था वर्तमान में 9 अरब डॉलर की है। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में दृष्टिकोण को लेकर जो बदलाव आया है वह बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव छोटे शहरों से आने वाले सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर्स की बढ़ती संख्या में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें कहा गया है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है।
1: यावत् चतस्रः प्रदिशश्चक्षुर् यावत् समश्नुते तावत् समैत्विन्द्रियं मयि तद्धस्ति वर्चसम्।
2: चारों दिशाओं के विस्तार व नेत्रों की दृष्टि शक्ति की जागरूकता से युक्त ऐसी समृद्धि हमें प्राप्त हो जहां प्रकृति के साथ पूर्ण संतुलन में रहकर पर्यावरण का संरक्षण हो और समस्त जीवन का सतत कल्याण सुनिश्चित हो।
0: भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद सीमांत जिलों में प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। सरहदी जिले जैसलमेर की जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि सीमा से सटे क्षेत्रों में अवैध निर्माणों का सर्वे कर उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे के दौरान सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई थी।
3: मंत्री महोदय ने, सीएम महोदय ने जो बैठक ली थी उसमें पांचों जिले जो हैं सीमावर्ती जिले उनके कलेक्टर एसपी के साथ बैठक थी, जिसमें बहुत क्लियर कट ये निर्देश दिए कि 0 से 15 किलोमीटर के दरमियान किसी भी तरीके का एंक्रोचमेंट है कि सबसे पहले तो उसका हमें पूरा सर्वे हमारे पास होना चाहिए और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है कि जो नियम विरुद्ध है तो उस पे कार्रवाई करने के लिए दिवाली पर्व से पहले इसमें निर्देश दिए गए। निर्देश क्लियर है कि एंक्रोचमेंट हटने की कार्रवाई करनी है और उससे पहले एक सर्वे का कहा गया है तो सर्वे के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को हमने यहां से पाबंद कर दिया गया है कि सबसे पहले सर्वे है, सर्वे स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा और जैसे स्टेट से निर्देश मिलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 मई को होने वाली नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। देश विदेश के 566 शहरों में एक पारी में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक ये परीक्षा ली जाएगी। NTA की जानकारी के अनुसार पंजीकृत उम्मीदवार अब अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजधानी में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को देखते हुए जयपुर पुलिस और जिला प्रशासन सतर्क मोड पर है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। विभिन्न संगठनों की ओर से संभावित विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया

0: जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ राजीव पचार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार कमिश्नरेट क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह की रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, लाठी, डंडा लेकर चलने पर रोक रहेगी। प्रशासन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भड़काऊ, भ्रामक या सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित करने वाली सामग्री के प्रसारण पर भी नजर बनाए हुए है। इस बीच आज जिला प्रशासन ने एहतियातन जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थम जाने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज से 11 जून तक तापमान में बढ़ोतरी होने और पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इस बीच पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 11 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बीकानेर सहित प्रदेश के कुछ शहरों में हल्की बारिश हुई। अजमेर में भी कई जगह पश्चिमी विक्षोभ के चलते देर रात धूल भरी आंधी के बाद मूसलाधार बारिश हुई।
1: कल दिन भर की गर्मी और उमस के बाद देर रात करीब 2 बजे से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं और तेज मूसलाधार बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दी। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि शहर में कई जगह पेड़ और सोलर पैनलों की प्लेटें होर्डिंग उड़ गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हालांकि आज सूर्योदय के साथ ही उमस फिर बढ़ने लगी है। नीलिमा धादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: जयपुर विद्युत वितरण निगम ने बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए भरतपुर में कल विशेष अभियान चलाकर करीब 14 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता के निर्देशन में जिला मुख्यालय सहित उज्जैन, छोकरवाड़ा, वैर, बयाना और रूपवास में ये कार्रवाई की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी की। और प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थमने की संभावना, पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए श्रोताओं, हम आपको ले चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।

रेखा भारद्वाज की आवाज में डेढ़ इश्किया फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे विशाल भारद्वाज। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक बहुत छोटा सा एक और ब्रेक लिया जाए।

आज अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है। शिल्पा शेट्टी अपनी खूबसूरती, फिटनेस और बेहतरीन अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली लोकप्रिय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जी को जन्मदिन की विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

धड़कन फिल्म का गीत अलका याग्निक सोनू निगम की आवाजों में आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा था और नदीम श्रवण ने धुन बनाई थी।

0: ऐसी आवाज
1: संगीतकार खयाम,
0: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्ते, और आज की फनकार हैं खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा डिंपल कपाड़िया।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ,

0: पहले तुम
1: पहले तुम
0: तुम
1: तुम
0: तुम
1: तुम
0: तुम देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: 8 जून सन 1957 को एक गुजराती परिवार में जन्मी डिंपल कापाड़िया को सिर्फ 16 साल की उम्र में फिल्म बॉबी में हीरोइन का टाइटल रोल प्ले करने का मौका मिल गया और इस फिल्म ने डिंपल को रातों रात स्टार बना दिया।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके,

0: जिस तरह रातों रात उन्हें शोहरत मिली, उसी तरह अचानक ही डिंपल ने इस चमक दमक और स्टारडम को नमस्ते कह दिया और उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी करके फिल्मों को अलविदा कह दिया।
1: हाँ।

राजेश खन्ना के साथ अपने वैवाहिक जीवन में डिंपल को दो बेटियां मिली, ट्विंकल और रिंकी। लेकिन डिंपल का वैवाहिक जीवन ज्यादा लंबा नहीं चल सका।

डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन थे, लेकिन फिर भी डिंपल को अपनी दोनों बेटियों के साथ एक अच्छे जीवन के लिए कोई ना कोई फैसला तो करना ही था। सो स्वाभिमानी डिंपल ने खुद अपने ही बलबूते पर कुछ करने की ठानी और उनके इस फैसले का स्वागत किया। फिल्म इंडस्ट्री ने, निर्देशक रमेश सिप्पी ने और उनकी पहली फिल्म के को स्टार ऋषि कपूर ने। 1985 में उनकी कमबैक फिल्म आई सागर।

इस फिल्म के बाद डिंपल कपाड़िया ने अपनी उपस्थिति को फिल्म इंडस्ट्री में मजबूती से दर्ज किया और हर तरह की फिल्में स्वीकार करने लगीं। यानी उस दौर में भी डिंपल ने अपनी फिल्मों में बोल्ड सीन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं।

डिंपल को 1973 में बॉबी और 1985 में फिल्म सागर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड और 1991 में फिल्म दृष्टि के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अवार्ड मिला। और फिर 1993 में डिंपल ने साबित कर दिया कि उनके अंदर कितनी सशक्त अभिनेत्री छिपी है। फिल्म आई रुदाली।

0: डिंपल कपाड़िया ने हीरोइन के रूप में अपनी अदाकारी और अपनी खूबसूरती से जो जादू अपने दर्शकों पर चलाया उससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन 2009 से उन्होंने जो पारी शुरू की चरित्र अभिनेत्री के रूप में, वो भी कम दमदार नहीं है। लक बाय चांस, तुम मिलो तो सही, दबंग, पटियाला हाउस और कॉकटेल। तो ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था डिंपल कपाड़िया पर। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज।

0: बलिदान की,
1: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
1: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और

0: तो प्रभु की छाया।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी।
0: बलिदान की इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
1: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
3: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
1: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।

0: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
1: मितुल जी, जब बात चल रही है प्रदीप जी की, तो 5 दशक के अपने इस फिल्मी सफर में प्रदीप जी ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। चल चल रे नौजवान, या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, न जाने कितने ऐसे बहुत सारे देशभक्ति गीत हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में भी उन्होंने जो गीत लिखा वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो इस गीत की रचना कैसे हुई, राष्ट्रभक्ति का ये अमर गीत प्रदीप जी द्वारा कैसे लिखा गया, क्या माहौल था, आपके घर का क्या माहौल था, और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारित किया गया इस गीत को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई, इसके बारे में आप हमें बताइए।
2: जैसे मैंने कहा कि उनको देशभक्ति उनके रग रग में थी। जब ये चीन के साथ हमारा ये जो लड़ाई हुई और तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो चीज़ उन्हें बहुत मन तक बहुत झकझोर गई, है ना। और उसमें उनको लगा कि ये इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का, कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग के नहीं। तो वो चीज़ें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था, है ना। और वो एक शैतान सिंह नाम के, मेजर शैतान सिंह, जिनकी वहाँ पर

0: शहादत हुई रेजांगला में, और वो चीज़ से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं रास्ते पे चल रहे थे, और चितलकर काका सी रामचंद्र, उनका घर माहिम में था, तो वहाँ पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहाँ चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है देश में, हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन में आई, और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा मैं भूल जाऊंगा जब तक मैं घर जाऊंगा, हो सकता है मैं ये लाइन भूल जाऊं। रास्ते पे उन्होंने एक देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी पान वाले की, उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए? बोलते यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं? आपके पास पेन है? बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन, उन्होंने उस पे वो लाइन लिख दी और वो घर आ गए। वहाँ पर जाके वो जो अपनी मीटिंग खत्म करके घर आने के बाद फिर इसके ऊपर जो मंथन चला उनका, और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ। और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे, और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना। अब वो तो गीत तो बन गया, लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे
1: जी।
0: उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में
1: जी।
0: महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहाँ पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए। मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में,
1: बिल्कुल।
0: तो फिर बैठ के उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के। महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है, क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस क्या है, वो हम लिखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कल आपको देता हूँ। उन्होंने चितलकर काका को घर पर बुलाया, मतलब सी रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहाँ पर देना है, और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है,
1: ठीक है।
0: तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये गीत जब तक वहाँ पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है
1: जी।
0: तो चितलकर काका ने कहा ठीक है, अब सुवीनियर में देना है लाइंस। तो उन्होंने महबूब खान को चार लाइनें दी। ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ठीक है, मतलब ये होगा कि हाँ शुभ दिन है, ये है वो है, सब लोग खुश हो जाओ, हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब वॉट एवर। तो उस प्रकार का उन्होंने साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है
1: जी।
0: अब जब तक गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी, उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे, ठीक है। अब तब चितलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो लता जी ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी, ये तो ओपन सीक्रेट है। तो फिर ठीक है आशा दीदी गाएगी। फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया। तो वो तो तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में हुई। ये तो लाइव वहां पर गाया उन्होंने
1: दिल्ली में,
0: तो रिहर्सल कैसे करेंगे। एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी, एक ही बार चले गए दिल्ली, है ना। लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी कि उनको तो समय नहीं लगा उसको उठाने में। और चितलकर काका और उनका तो संबंध ठीक नहीं थे, फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया। प्रदीप जी

0: को नहीं बुलाया गया था, नो इनविटेशन।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो ये भी अजीब सी बात है देखिए, कि जिस इंसान का गाना वहाँ बज रहा है, हाँ, वहाँ गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना
1: जी।
0: तो इनवाइटेड नहीं थे, तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। गीत वहाँ पर पेश हुआ, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने है प्राण गंवाए।
1: जी,
0: तो माहौल चेंज हो गया, पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने है प्राण गंवाए। लोग एकदम सुनना शुरू किया कि ये क्या है। जवाहरलाल नेहरू जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे, राधा कृष्णन जैसे बहुत ज्ञानी थे, मतलब ऐसे हमारे वहाँ पर नेता बैठे थे जो समझ पा रहे थे कि ये क्या है। और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ ना बोले, और लता दीदी की आवाज़ में ये गाना वहाँ पर गूंजा, लोगों की आंखों में आंसू भरे। और ये हकीकत है, वहाँ पर जितने लोग वहाँ मौजूद थे, एक इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना
1: नहीं
0: हो। और जवाहरलाल जी रोए, वो तो पता है सबको,
1: जी
0: क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: उनके मन में भी ग्लानी बहुत थी कि हमारे कितने शहीद हो गए, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारी आर्मी। तो वो चीज़ को सुन करके सभी बहुत दुखी थे, मन में बहुत ग्लानी थी,
1: जी
0: गिल्ट फीलिंग।
1: जी
0: पूरा हो गया कार्यक्रम, जवाहरलाल जी ने पूछा कि बेटी तुमने तो रुला दिया, लेकिन कवि कहाँ है, ये
1: अच्छा
0: लिखा किसने है?
1: जी,
0: तो लता दीदी ने कहा नहीं, वो तो नहीं आए हैं, कवि प्रदीप ने लिखा है, वो नहीं आए हैं। तो वहाँ पर यशवंतराव चव्हाण खड़े थे, है ना, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे तब, यशवंतराव चव्हाण। उनको जवाहरलाल जी ने कहा कि चव्हाण जी आपके वहाँ के हैं, ये तो बम्बई के लोग हैं ये सब, तो आप जब बम्बई जाएंगे तो आप प्रदीप जी को ज़रूर कहिए कि मैं

0: मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत छोटी थी,
1: जी जी
0: लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत जी को आते हुए देखा, उनको पैर पड़ते हुए देखा और उनको ये कहते हुए सुना,
1: वाह।
0: ये मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ।
1: और इस वक्त आपसे बात करते हुए, ये घटना सुनते हुए हमारी आंखों में भी पानी सा आ गया है कि कितना उम्दा गीत उन्होंने लिखा। पर बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया गया। और इसके पीछे का कारण क्या कभी सामने आया?

0: हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
1: वाह, बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदीप जी की कलम से निकले जो गीत थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया
0: जी,
1: और साथ ही उनके गीतों में राष्ट्रीयता थी, अध्यात्म था और मानवता का गहरा समावेश देखने को मिला, और तभी ये गीत लिखा गया जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये गीत हम सुन लें?
0: हम सुनने से पहले एक बात और बता दूं
1: जी
0: कि ये गीत की जितनी भी रॉयल्टी आई वो सभी हम लोगों ने और मेरे पिता ने जवानों की विधवाओं के लिए दान कर दी है
1: जी।
0: ए मेरे वतन के लोगों की जो भी रॉयल्टी आती है वो वहां पर जाती है उनके घर वालों को, उनके परिवार को। वो मेरे पिता की इच्छा थी तो इसको हमने आज तक हमने निभाया है।
1: ये गीत सुन ले, ऐ मेरे वतन के
0: जी,
1: लोगों,
0: जरूर जरूर,
1: जरा आंख में भर लो पानी।

0: तो देखिए हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है आज इस बातचीत को जब हम कर रहे हैं। मिथुल जी, कवि प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्ति रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऐ मेरी वतन की लोगों
1: जी।
0: और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन, देश प्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए
1: जी।
0: एक समय ऐसा भी आया। आप इस बात को कैसे कहेंगी, आप किस तरह का माहौल लगता था, कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे?
1: हाँ, मैं आपको एक खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी उनसे बात करना चाहे वो हमारे घर पे आते थे
0: जी।
1: तो ये नहीं है कि कभी वहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी ऑफिस में या उनके रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे
0: जी।
1: आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी, इन सबको सुनने का रिहर्सल्स में हमको मौका मिलता था।
0: बिल्कुल।
1: तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे दरवाजे के पास।
0: हाँ हाँ।
1: और कभी कभी ऐसा होता था कि अचानक दरवाजा खुल जाता था तो हम पकड़े जाते थे हम लोग खड़े तो ये बात थी। एक तो ऐसा था कि लोग आते थे और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पिताजी को, कवि प्रदीप जी को, पूरी छूट दे के रखी थी कि आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस लाइन पे लिखिए। तो कई उनके ऐसे गीत थे जो आज इतने पॉपुलर हैं, कौन सी फिल्म है लोगों को नहीं पता, लेकिन गीत लोग जानते हैं। जैसे जागृति फिल्म या नास्तिक फिल्म, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गीत हुए और उसमें पूरी छूट देके रखी थी कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं
0: जी।
1: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो कई नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे हमारे घर पे, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उस वक्त के लोग,

0: जी
1: काफी आते थे, जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे सिर्फ मिलने के लिए
0: जी जी
1: और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिहर्सल होता था इसीलिए आते थे। तो उनका बातचीत सभी से थी लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं, ना वो किसी विचारधारा के साथ गए।
0: जी
1: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर।
0: बिल्कुल,
1: कोई भी आए जाए नेता, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो, और वो सुन भी लेते थे। ऐसा माहौल था तब, वो सुन भी लेते थे
0: क्योंकि उनकी गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में वो जादू था।
1: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो मैंने देखा था कि वो आके बैठते थे, उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है। तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था, न्यूज, अखबार, मतलब जो अखबार सुबह आए तो 4-5 अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहां पर।
0: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, कुछ याद है आपको?
1: हाँ हाँ, अभी भी याद, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार।
0: जी,
1: वो मराठी भी पढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज्यादा आएंगे न्यूज, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज आएंगे और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो ये 6 अखबार हमारे वहां रोज आते थे, और गुजराती, मतलब गुजराती भी, क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी।
0: इतनी भाषाओं के
1: हमारे वहाँ अखबार आते थे
0: और उसे पढ़ा जाता
1: और आज भी आते हैं, वो मैंने बंद नहीं किए
0: जी।
1: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी सुबह नहीं होती। बीबीसी न्यूज, उनका रोज का सवेरे का 6:45 बजे का न्यूज वो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज, मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी में आएंगे,
0: हाँ,
1: वो सब उनको सुनना जरूरी था।
0: तो घर में एक रेडियो था।
1: हाँ हाँ
0: जी,
1: एक नहीं 2-3 रेडियो थे, क्योंकि तब तो टेलीविजन भी नहीं था ना। तो रेडियो उनका साथी था, मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था और मेरे लिए अलग रेडियो था। तो हमारे घर में 3 अलग अलग रेडियो बजते थे। तो मैं जो है विविध भारती सुनती थी।
0: अच्छा,
1: जैसे मैंने कहा वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते थे कि दिन में कुछ भी अगर समाचार आए तो हमको वो पहले बताते थे। जैसे कैनेडी को गोली मारी गई तो सबसे पहले उन्होंने आके हमको बताया कि देखो ये हो गया है। तो ये अपडेटेड रहते थे हर एक चीज में,
0: मतलब पल पल उनका देश के लिए समर्पित था। हाँ, और हाँ, हर कण कण
1: तो
0: में वो देशभक्ति का
1: जो जागरूकता थी ना, वो मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों में रहती है। तो जागरूकता रहने से मैं, माँ और तब दीदी की शादी भी हो गई थी, वो मुझसे बड़ी थी, तो हम तीनों लोग जागरूकता, मतलब वो क्या आ रहा है सुनने की आदत हो गई कि सबसे पहले समाचार सुनो क्या हो रहा है, समाचार सुन लिए उसके बाद में चाहे कुछ भी करो। तो मेरी माँ भी सुबह, मेरे पिता के जाने के बाद सुबह सवेरे वो रेडियो का समाचार पहले सुनती थी।
0: तो मितुल जी, अब एक और गीत हम आपकी पसंद का सुन लेते हैं, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
1: एक हम लोग थोड़ा सा हटके सुनाते हैं, संबंध फिल्म का, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पे भी कुछ डालो, अरे ओ रोशनी वालों।
0: वाह, क्या बात है, महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ गीत है ये, और बहुत पसंद करते हैं लोग इस गाने को। गाने में बहुत ही दर्शन छुपा है, बहुत ही खूबसूरत गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप दोनों बेटियों ने अपने पिता से क्या सीखा, मतलब उनको जिस करीबी से आपने देखा, क्या क्या लगा आपको कि नहीं हम अपने पिता से ये नहीं सीख पाए, हमें सीख लेना चाहिए था, ऐसा कभी महसूस करते हैं?

0: आप दोनों बेटियों ने अपने पिता से क्या सीखा, मतलब उनको जिस करीबी से आपने देखा, क्या क्या लगा आपको कि नहीं हम अपने पिता से ये नहीं सीख पाए, हमें सीख लेना चाहिए था, ऐसा कभी महसूस करते हैं
1: आप? कि आप पिताजी की तरह आप भी लिखिए, मैं उसके म्यूजिक कंपोज करूंगा, पप्पी लाहिरी ने
0: जी,
1: तो वो तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नहीं लिख पाऊंगी, मैं जानती हूँ, तो मैं क्यों अपने आप को उसमें एक्सपोज करूँ, तो वो काम नहीं हो पाया।
0: आप उनकी कोई कविता सुनाना चाहती हैं तो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो,
1: हाँ हम
0: जो
1: अभी
0: फिल्मों में नहीं आई और उन अलग से जो उनका संकलन था कविताओं का।
1: हाँ, तो उन्होंने जैसे देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखी, तो एक दो लाइनें उसकी सुनाती हूँ और एक दो लाइनें कुछ अलग मूड की सुनाती हूँ।
0: जी,
1: तो उन्होंने मैंने जैसे पहले कहा था कि आज़ाद जब नहीं रहे, चंद्रशेखर आज़ाद, तब कविता लिखी थी। उसी दौरान, उसके बाद में जब हमको आज़ादी मिली,
0: जी,
1: तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि लो फिर पुलक उठे, वे जो थे दले गए, लो फिर पुलक उठे, वे जो थे दले हुए, उर्वी पर अपार दुर्वा दल नए नए। कल तक थी जो विकल दैन्य से दबी रही, आज वही खिल उठी शस्य श्यामला मही। निखिल प्रकृति लहलही, विमल वातास वही, पल्लव पल्लव ने नवयुग की कथा कही। मतलब नवयुग में खुशी से आनंदित है क्योंकि हमको उस वक्त आज़ादी
0: मिली
1: थी।
0: गई।
1: और आप अगर सुने, एक और उनका गाना है जो आप बाद में बजा सकते हैं कि इंसान का इंसान से हो
0: भाईचारा, यही
1: ये वही तरीके का है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह
0: पाए।
1: तो ये एक गीत भी उनका बहुत देश के लिए पॉपुलर है और आज भी वो संदेश लोगों में जाना चाहिए कि इंसान का इंसान से उभाई जा रहा, और कुछ नहीं।
0: यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते, भुला नहीं सकते, झुटला नहीं सकते हैं। तो आप कहें तो यही गीत हम सुन लें।
1: ये जरूर बजाइए, बहुत अच्छा गीत है,
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: वो उन्होंने स्पेशली बोलती है कि मैंने बहुत सारा बनाया और प्रदीप जी ने भी खाया और आसपास के लोगों को भी हमने खिलाया। तो एक तो हलवा बना घर में और बंदेज अपने तोरण बनाए हाथों से, गेंदे के फूल लेके हाथों से। मतलब तब ये था कि जितना हाथ से बना के करेंगे वो आनंद का एक दिखा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। तो घर घर में वो बना, मतलब हमारे घर में, आसपास के घरों में, तो माहौल बहुत ही सुंदर था और बहुत ही खुशबूदार था, क्योंकि इतने सारे फूल थे, इतने सारी पत्तियां थी और गाने बज रहे थे। उस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं था कि लोग बड़े बड़े डीजे बनाए और वो करें, लेकिन रेडियो में गाने बज रहे थे और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे।
1: और ऐसे में अगर कभी प्रदीप जी के गीत बज रहे होंगे, जन जन तक पहुंच रहे होंगे, तो क्या माहौल होगा?
0: बहुत बढ़िया, बहुत। और उस वक्त भी लोग बधाइयां देने आते थे कि प्रदीप जी आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके गीतों के द्वारा हम लोगों ने
1: जागृति मिली हमको। जो बीज था वो वहीं से उत्पन्न हुआ।
0: हाँ, मतलब इस प्रकार का माहौल था ये जो हमको माता पिता ने दोनों ने बताया।
1: जी जी।
0: और लेकिन प्रदीप जी इसमें भी थोड़े आश्वस्त नहीं थे।
1: अच्छा।
0: जब मिल गई आजादी उसके 2-4 साल के बाद, उनको लगा कि आजादी तो मिल गई है लेकिन क्या आप इसको संभाल पाओगे क्या?
1: बहुत बड़ा सवाल।
0: हाँ, तो ये उनके मन में उसी वक्त उठा था कि हमने तो आजादी दिलवा दी, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद में क्या, क्या आप इस देश को आजाद रख पाओगे? तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
1: इस देश को रखना मेरे
0: बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि उनको वही चिंता रही कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, तुम क्या करोगे? तुम खुद कुछ भी करना चाहो पूरी दुनिया में बम से? और आज वही माहौल नहीं है क्या? हाँ, आज जो इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े देश, आज भी वही बात है। तो वो उन्होंने उस वक्त यही सोचा था कि आगे क्या होगा।
1: जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि प्रदीप जी वहां पहुंच गए जो आज हम देख रहे हैं। उस समय वो उस बात तक पहुंच गए और उन्होंने चिंता व्यक्त की जो आज सच साबित हो रही है।
0: हर एक लाइन सुनिए आप
1: जी।

0: देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।
1: मितुल जी, आज प्रदीप जी के बारे में हमें इतनी बातें पता चल रही हैं और हम इतने अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत सी बातें उनके बारे में हमने पढ़ी, जैसा कि आपने भी कहा कि वो बहुत साहसी थे, दबंग थे और जो कहना होता था सामने कह देते थे। कवि प्रदीप जी ने तो असंख्य गीत लिखे हैं। जब कोई फिल्म वाले या निर्माता पहले से बनाई गई धुन लेकर उनके पास आते थे और कहते थे कि इस धुन पर प्रदीप जी आप कोई गीत लिख दीजिए, तो वो कहते थे कि भाई मुर्दे का कफन पहले खरीदे हुए, मतलब मुर्दे को उसकी साइज का काटना पड़ेगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और इस तरह से वो सही बात कह देते थे। क्या इस तरह से उनका सही कहना कहीं आपको लगता है कि उनके गीतों में कटौती हुई या कुछ और गीत, बहुत सारे गीत जो आ सकते थे नहीं आए उनकी इस बेबाकी से और बहुत ही सही रवैये से?
2: हाँ, ये आप मुझे लगता है ऐसा मतलब हुआ होगा, क्योंकि उनको कभी भी, जैसे आपने कहा कि पहले से बनाई हुई धुन पे उन्होंने कभी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा वो अपनी खुद की धुन पे लिखा, और इसलिए कई बड़े बड़े संगीतकार भी उनसे थोड़ा दूर रहते थे कि भाई ये तो हमको काम नहीं करने देंगे, वो खुद गाएंगे और प्रोड्यूसर कहेगा कि यही धुन ठीक है। तो उसमें ओपी नैयर के साथ भी ऐसा एक वाक्या हुआ था
1: जी,
2: संबंध फिल्म जिसमें कवि प्रदीप जी के गीत और ओपी नैयर का संगीत। तो जब प्रोड्यूसर राम मुखर्जी, उन्होंने कहा कि प्रदीप जी लिखेंगे गीत और आप म्यूजिक देंगे, तो नैयर साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं म्यूजिक नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि प्रदीप जी को आदत है कि खुद अपनी धुन बनाते हैं और फिर आप लोग हमको कहते हैं कि इस धुन पे आप अपना संगीत दीजिए। तो राम मुखर्जी ने कहा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो वो आए घर पे और कहा कि प्रदीप जी, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो आप अपनी धुन इसमें मत दीजिएगा। बोलता मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मेरी आदत तो वैसी है, ओपिनियर चाहे तो बदल दे। मैं नहीं बोलूंगा कि मत बदलो, ठीक है। तो वो भी अपने घर पे ही हुए इतने रिहर्सल्स। ओपिनियर आते थे, आशा भोसले दीदी आती थी, महेंद्र कपूर, बहुत बढ़िया माहौल था।

0: कहीं पर भी कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ। और नय्यर साहब ने बापू के बनाई हुई धुन पे भी एक दो थोड़ा ऊपर नीचे करके संगीत दिया, और वो धुन को थोड़ा सा चेंज किया, जिसमें है चल अकेला तेरा मेला पीछे
1: पीछे
0: छूटा
1: छूटा
0: राही
1: राही
0: चल
1: चल
0: अकेला।
1: अकेला।
0: ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ, संबंध के कई गीत बहुत पॉपुलर हुए। तो ये फिर ये एक प्रोजेक्ट बहुत सुंदर हुआ, और ओपी नैयर को भी जो टेंशन था वो खत्म हो गया कि नहीं नहीं प्रदीप जी के साथ काम कर सकता हूँ।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। कभी कभी इस एल्बम का गाना अनिरुद्ध झा की आवाज, इन्हीं का लिखा हुआ गाना, रिकी का संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है।
0: सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। यूफोरिया की आवाज पलाश और दीक्षांत का लिखा हुआ गाना, संगीत पलाश और डीजे का,

0: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
1: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने, देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
2: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
3: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
4: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

0: जाते हैं।
1: राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते

0: बराबर अभ्यास करो।
1: जी।
2: रवि वर्मा यही करने लगे, तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
0: मिस्टर जेनसन,
3: यस,
0: जब आप चित्र बना रहे हों तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
3: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
0: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
4: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
3: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
4: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
2: राजा रवि वर्मा ने केवल

0: देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया का भी जन्मदिन है, तो हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। उन्हीं की फिल्मों के कुछ गाने अब आपको सुनवाएंगे। ये है बॉबी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, विट्ठल भाई पटेल का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए

0: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नकली बीज प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार आरोपी बीज निगम के निदेशक का रिश्तेदार बताया जा रहा है। एसीबी ने बताया कि आरोपियों ने एक बीज कंपनी के जब्त बीजों को गुजरात भेजे जाने की एवज में कंपनी से 1,20,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सूचना मिलने पर एसीबी की टीम ने आरोपी को बीकानेर के लूणकरणसर से बस से उतार गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 85,00,000 रुपए की अवैध धनराशि बरामद की गई। एसीबी ने बीज निगम के निदेशक के घर छापा मारा, जहां से 1,50,000,000 रुपए की राशि भी जब्त की गई। प्रदेश भर में पीने के पानी की उपलब्धता के लिए चलाए जा रहे अभियानों के तहत 5 मई से 6 जून तक 19,000 से अधिक पेयजल समस्याओं का समाधान किया गया। इस दौरान हैंडपंप मरम्मत, पाइपलाइन लीकेज, कम दबाव के साथ पानी और अनिश्चित जलापूर्ति की शिकायतों का समाधान किया गया। इसके अलावा करीब 7,500 सुधारात्मक कार्यों के जरिए पेयजल व्यवस्था को प्रभावी बनाया गया। इस दौरान 6 जून को एक दिन में 3,000 से अधिक कार्य संपन्न करवा के लोगों को राहत दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पेयजल व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए विशेष अभियान 30 जून तक लगातार जारी रहेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजधानी जयपुर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज शहर के जगतपुरा और मालवीय नगर क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन सख्त कदम उठाए हैं। जेडीए दस्ते के साथ भारी संख्या में पुलिस बल और आरएसी का जाप्ता शामिल रहा। विभिन्न संगठनों की ओर से संभावित विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। कमिश्नरेट क्षेत्र में आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई हैं। प्रदेश में हाल ही में आए आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त हुए विद्युत तंत्र को सुचारू करने के लिए सभी विद्युत वितरण निगम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवर लाल डेलू ने बताया कि सरहदी और पश्चिमी जिलों में बिजली आपूर्ति की समीक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस बीच डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों ने जैसलमेर जिले के फतेहगढ़, चांदन और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद लक्ष्य में बढ़ोतरी किए जाने से किसानों को राहत मिली है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के जिलों में किसान सरकार के इस फैसले से उत्साहित है और मंडियों में गेहूं बेचान के लिए पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर राम रतन सौकरिया ने बताया कि जिले का कुल गेहूं खरीद लक्ष्य बढ़कर 8.75 लाख मीट्रिक टन हो गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी से 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, हम आपको फिर से लिए चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।

सबसे बड़े सिंक के रूप में काम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, सागर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। गाना है सागर जैसी आंखों वाली, अभिनेत्री कौन है, उनका आज जन्मदिन भी है तो उन्हें हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उनकी फिल्म का ये गाना सुनते हैं। किशोर कुमार की आवाज़ से जावेद अख्तर के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया गया ये गाना है, सागर जैसी आंखों वाली अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया। आज उनका जन्मदिन भी है, तो एक बार फिर हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र केवल खारे पानी का अथाह विस्तार नहीं, बल्कि पृथ्वी का धड़कता हुआ हृदय है। दूर तक फैला उसका नीला कैनवास जितना मनोहारी है, उतनी ही गहरी उसकी संवेदनाएँ हैं। उसकी लहरें तट से मिलने की उत्कंठा में दौड़ती है, टूट जाती है, फिर भी जाते जाते सीप, शंख और मोतियों जैसी अनमोल सौगातें दे जाती है। मानव की उपेक्षा, प्रदूषण और प्रकृति की चुनौतियों को सहते हुए भी वो एक मौन तपस्वी की तरह बिना किसी शिकायत के

अनोखी रात फिल्म का ये गाना संजीव कुमार पर फिल्माया गया है और इस फिल्मांकन में वो बैलगाड़ी चलाते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र हमें सिखाता है कि गहराई में ही असली खजाना छिपा होता है, ऊपर लहरों का शोर होता है लेकिन भीतर अनगिनत मोती पलते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि इसका यानी कि समुद्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, हमारी पृथ्वी को करीब 70% घेर के रखता है और हमें हवा पानी मुहैया करवाता है, हजारों लोगों को रोजगार देता है। इसके किनारे खड़े होने पर अलग अलग समय में अलग अलग दृश्य देखने का रोमांच अलग ही होता है। ठंडी हवा के झोंके से मन आनंदित होता है तो कभी दूर तक शांत दिखाई देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि समुद्र केवल भौगोलिक संरचना नहीं है बल्कि एक भावना है, इसे देखकर मन में असीम शांति और कभी कभी विचारों का ज्वार भाटा उठता है। यह बाहर जितनी अटखेलियां करता है इंसान के भीतर भी उतनी ही गहरी हलचल पैदा करता है। समुद्र की लहरें जब तट की रेतीली किनारे से टकराती है तो वह दृश्य अद्भुत होता है। लहरें अपने साथ गहरे समंदर में सुंदर सीप शंख और मोती तट पर छोड़ जाती है जिन्हें लोग यादों के तौर पर समेट लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रंगोली फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल और संगीत है शंकर जी जयकिशन का। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है आप बताइए हमें।

अभिनेत्री वैजयंती माला ये गीत गा रही हैं फिल्म में जो हमें दिखाई देता है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सागर की लहरें किनारे से टकराकर लौट तो जाती है लेकिन हार कर नहीं, वे फिर जाती है, फिर कोशिश करती है। शायद इसी में जीवन का सबसे सुंदर संदेश छिपा है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि आज विश्व महासागर दिवस हमें ये याद दिलाता है कि स्वस्थ महासागर ही स्वस्थ पृथ्वी और उज्जवल भविष्य की नींव है। बढ़ते प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे और जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर संकट का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें समुद्रों को स्वच्छ रखने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लेना चाहिए। जी हाँ, ये सबसे ज़रूरी बात है कि ऐसी चीज़ों का उपयोग हम कम करें या ना करें जिनसे ये जो जलाशय हैं हमारे ये प्रदूषित हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप घूमने के लिए जाएं तो प्लास्टिक का बहुत सारा कचरा और गंदगी वहाँ पर फेंक करके ना जाएं, क्योंकि दूसरे भी तो सैलानी वहाँ आने वाले हैं ना देखने के लिए, और वो जब देखेंगे इस गंदगी को तो उन्हें फिर कहाँ आनंद आएगा। और वैसे भी इन चीज़ों से, प्लास्टिक से या गंदगी से, वो जलाशय जब गंदे होते हैं, प्रदूषित होते हैं, तो जब हम दोबारा जाएंगे तो क्या देखेंगे, या हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो क्या देख पाएगी, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर ये गंदे हो गए तो ये हमारे दिल को बहला नहीं पाएंगे। दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी की बोल, संगीत नौशाद का।

दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गाना दिलीप कुमार पर यह गाना फिल्माया गया है। एक हमारे साथी की बात है कि समुद्र सागर या फिर महासागर मनुष्य की जीवन शैली को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। ये मात्र विशाल जलराशि का स्रोत नहीं है बल्कि असीम धैर्य स्थिरता और जीवन चक्र को प्रतीकात्मक रूप से प्रेरित करते हैं। सागर की लहरें चाहे कितनी भी उग्र हो सागर की गहराई उतनी ही शांत और गंभीर होती है जो एक संदेश देती है। मनुष्य के जीवन में कितनी भी उथल पुथल हो जीवन का उतार चढ़ाव में संयम और धैर्य रखें, मन को विचलित न होने दें। समुद्र के सामने मनुष्य का अस्तित्व उसकी एक बूंद के बराबर है। समुद्र की विशालता हमें अहंकार मुक्त होकर प्रकृति के प्रति विनम्र रहने की प्रेरणा देती है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि नीले जल में छिपे हैं

राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गाना अभी हमने आपको सुनवाया। एक साथी की ये बात है कि जब हम सागर के किनारे अपने पैर डालकर बैठे तो वहाँ से हटने का दिल नहीं कर रहा था। दूर दूर तक पानी ही पानी, आती जाती लहर को हम देख रहे थे, मानो वो हमसे धीरे धीरे कुछ बोल रही हो, कुछ बताना चाह रही हो। हम सुनना चाहते थे उनकी बातें, कुछ सुनी। हर जाती लहर मानो हमारे सारे दुख दर्द अपने साथ दूर, बहुत दूर ले जा रही हो, और हर आती लहर हमें अनगिनत खुशियां दे रही हो। बस फिर क्या, हमारी नटखट सी परी ने कहा, नानी उठो, हम दोनों इसमें पत्थर फेंकेंगे। और हमारी बातें अधूरी रह गई, हम बहुत सारी बातें करना चाहते थे समुद्र से। एक साथी लिख रहे हैं कि सागर की आती जाती लहरें हमें ये संदेश देती है कि जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी खुशियों की लहर आती, कभी चुनौतियों की। लेकिन जैसे लहरें बार बार किनारे पर पहुंचने का प्रयास करती है, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में हिम्मत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हार कर लौटना नहीं, बल्कि फिर से उठकर आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे सुंदर सीख है। चलिए अगला गाना अब हम आपको सुनवाते हैं, तकदीर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ और साथ में कुछ और भी आवाज़ें हैं, सुलक्षणा पंडित, मीना पत्की और ईला देसाई की इसमें आवाज़ें हैं, और आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है ये, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सुनिए ये गीत कि जब हमारे घर के कोई व्यक्ति सात समंदर पार जाते हैं तो हम क्या उम्मीद रखते हैं, यही ना कि चाहे जो भी हो, बस आप सुरक्षित घर लौट आइए, घर लौट आइए।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सागर किनारे जो शाम होती है वो प्रकृति में सबसे मनमोहक और सुरमई सा रूप लेते हुए मनुष्य में एक कौतूहल उत्पन्न करती है, प्रतीत होती है। इस समय सागर में उठने वाली लहरें मानवीय भावनाओं जैसे प्रेम, विरह और शांति को बहुत ही मनोयोग से बयां करती है। ढलती हुई शाम को सूर्य जब लालिमा बिखेरता है और सागर में उठती लहरों से किरणें आर पार गुजरती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने सागर का 16 श्रृंगार कर दिया है। साथ ही नीला आसमां भी लालिमा बिखेरता है जो एक मनमोहक दृश्य बना देता है। एक साथी लिखने की महासागर केवल जल का विशाल भंडार नहीं है बल्कि प्रकृति की अनंत भावनाओं का प्रतीक भी है। इसकी अथाह गहराइयां हमें जीवन के रहस्यों का एहसास कराती है जबकि इसकी लहरें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। महासागर प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो अपने सुंदरता, शक्ति और शांति से हर हृदय को छू लेता है। धन्यवाद आपका। और अब मजेदार फिल्म का गाना एसपी बालसुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: शिक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
1: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और वे सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि

0: बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
2: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
6: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश

0: और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: देश के सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है आज और कल। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

आज और कल फिल्म का ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल और संगीत रवि का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब अगला जो गीत आपको सुनवा रहे हैं ये बहुरानी फिल्म का गाना लता मंगेशकर ने गाया है, साहिल लुधियानवी ने लिखा है और संगीत तैयार किया सी रामचंद्र ने।

0: उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी। तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं,
1: क्या बात
0: जैसे
1: है।
0: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म का नाम अकेली मत जइयो।

0: बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म का नाम अकेली मत जइयो।

0: चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं ये बंदिनी फिल्म का गाना, आवाज़ लता मंगेशकर की, गुलजार के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

अब आपको जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं ये सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में है, बी डी मिश्रा ने लिखा है, एस एन त्रिपाठी का संगीत है और फिल्म का नाम बीन का जादू।

आइए अब सुना जाए ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: आबादी रहते थे। बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना बेगाना फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: रामकुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कैप्टन शेरू। इस फिल्म का ये गाना सुमन कल्याणपुर ने गाया है, नक्श लायलपुरी के बोल और संगीत है एस मोहिंदर का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

0: देखिए, हम जो हैं उस बात का ध्यान रखते हैं कि पहली बात तो हम अपनी सावधानी का ज्यादा ध्यान रखते हैं. छोड़ने की बात से पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितना लहरों के बीच में जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, तो उस हिसाब से हम जाते हैं. और रेत जो होती है ममता जी, वो अक्सर आप जहां पैर रखेंगे, दूसरा पैर आगे बढ़ाएंगे तो वहां खिसकती है रेत. तो अगर आप भूल से भी किसी पत्थर पर खड़े हो जाते हैं और जब आप पैर नीचे रखेंगे तो आपका पैर बहुत अंदर तक जाएगा. तो ये सावधानी हमें
1: बिल्कुल
0: बताई थी.
1: ये कहा जाता है ना कि आग और पानी का कोई भरोसा नहीं होता है, तो खास तौर से समंदर का तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए. और जो जैसे कि मुंबई तटीय इलाका है और यहाँ पर बीच है और नियमित रूप से लोग आते जाते हैं, तो यहाँ का मालूम है यहाँ के निवासियों को. और इतना गहरा भी नहीं है समंदर यहाँ का, लेकिन बहुत सारे जगहों पर जहाँ पर महासागर की गहराई ज्यादा है और जो बहुत इंटीरियर बीच है, वहां जब आप जाते हैं तो इन सब बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप बहुत अंदर तक पानी में ना जाएं. और कहीं पर रेत धसकती है, और कुछ ऐसे जगह खास तौर से रायगढ़ में एक जगह है दापोली, जहां पर हमने देखा, हमने खुद देखा है कि वहां पर पैर रखिए तो आप एक जरा सा कुछ सेकंड के लिए खड़े होंगे तो आपके पैर मतलब घुटने तक रेत चली जाती है, इतना तक. और कई बार गाड़ियां वहां पार्क की जाती हैं, गाड़ियां फंस जाती हैं और ये बाकायदा इंसिडेंट होते हैं. तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आप कहाँ जहाँ जा रहे हैं पहले वहाँ के बारे में सावधानी और नियमावली पढ़ लें, उस जगह के बारे में, उस समंदर के बारे में. और एक बात और है जो आप भी जानती होंगी कि वहाँ पर ढेर सारा कचरा छोड़कर ना आए, बताइए आप क्या कहेंगे.
0: क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पर लोग घर से या तो खाने के लिए कुछ चीजें ले जाते हैं या वहां से परचेज करके खाते हैं. जो छोटी छोटी दुकानें लगी रहती है तो उसमें जो पॉलिथीन चीज जैसी चीज होती है या आपने दोने में कोई चीज खाई है तो वो सब वहीं पे छोड़ के चले आते हैं. तो वो वापस समुद्र में जाते हैं जो उसको दूषित कर देता है पानी
1: और आपको वापस देता भी है,
0: वापस पलट के वो लहरों के थ्रू वापस आता भी है.
1: तो ये कहने का मतलब है कि आप मुझे जो दोगे मैं वही वापस करूंगा. मतलब समंदर ये एक तरह से मूक भाषा में ये कहता है,
0: संदेश देता.
1: तो ये मत करिए, जब आपको मालूम है कि आपने पैर डाला पानी में और एक पॉलीथिन फंस गया और एक कचरा कागज का टुकड़ा या कुछ भी आ गया तो बहुत बुरा सा लगता है ना. आपको डर भी लगता है कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं आ गया, मछली तो नहीं आ गई.
0: बिल्कुल सही कहा आपने. तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि जैसा हम करेंगे, जैसा वो उसके साथ करेंगे वो भी वापस जवाब देता है. तो हमें इन सब की खूबसूरती को अगर देखने जाना है तो आप देखिए, खाइए, पीजिए, लेकिन आप उस कचरे को या तो आप अपने साथ किसी पॉलिथीन में, पैकेट में, झोले में रख के ले आइए अपने घर में, आसपास जो आपका कचरा दान है उसमें डालिए, या वहाँ पर भी रहते हैं कचरे के डिब्बे तो आप उसमें डालिए. वहाँ समुद्र के वातावरण को, उसके किनारे को, उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं करें, इसका ध्यान.
1: और बारिश के मौसम में समंदर के हर बीच पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. मुंबई में भी खास तौर से एक बीच है, अक्सा बीच जो कहा जाता है, वो थोड़ा सा गहरा है, तो वहाँ पर हर साल बारिश में दुर्घटनाएं घटित होती हैं और ये कहा जाता है. और उस वहाँ पर जो युवाओं का झुंड है अक्सर जाता है और हर साल कुछ न कुछ हादसे होते हैं. तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें कि कितनी अनमोल है ज़िंदगी. और आज विश्व सागर दिवस पर ये जो बातें हम चर्चा कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारे श्रोताओं के कुछ अनुभव होंगे, खट्टे मीठे अनुभव साझा करें, बजाय ये लिखने की कि हमने बहुत सारी बातें तो साझा कर दी है और कोई एक तरह की टिप्पणी हमारे श्रोता लिख रहे हैं, तो उसकी बजाय अपने अनुभव साझा करें, हम आप तक पहुंचाएंगे. अब क्या करें, हम
0: अब गीत सुना दीजिए.
1: चलिए सुनते हैं गाना.

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मेरा यानी मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: बस वही जैसे आपने पूछा क्या हाल है, तो हमेशा की तरह हम कहते हैं बहुत अच्छे
1: हैं और उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे। ये बताइए जरा कि जब आप कहीं समंदर के किनारे जाती हैं तो लहरों में खूब मौज मस्ती करती होंगी निश्चित रूप से।
2: बिल्कुल।
1: फिर वहां जाती हैं तो क्या छोड़ कर आती हैं और क्या लेकर आती हैं?

0: तो ममता जी, हम पहले विषय बता देते हैं कि हम बात करेंगे व्यंजन में मथुरा की दाल और आलू की कचौड़ी जो वहाँ प्रसिद्ध है उसके बारे में, और एक विषय हमारा है तपाक से बोलने की आदत। तो हमारे साथी इस पर लिखकर भेज चुके हैं, और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विविध भारती के पेज से वो भी लिखकर भेजे। और धरती की धड़कन है महासागर, विश्व महासागर दिवस पर
1: वो हमने बता
0: ही दिया है। और कथा सुधा में हम आभूषण का भाग दो सुनेंगे।
1: और तपाक से बोलने की जो आदत है, कई बार लोग तपाक से बोलने के चक्कर में गलत बोल जाते हैं, तो जरा सोच समझ के बोले क्योंकि कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। तो जब बोले तो सोच समझ के। फिलहाल ये गाना सुने।

0: चलिए सुनते हैं कथा सुधा कहानी आभूषण, इसका भाग दो।
1: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना,
3: शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे।

0: पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे, पर यूरोप से लौटने पर उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। वो पहले कलकत्ते गया, वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: आइए सुनते हैं इस कहानी की दूसरी कड़ी।
0: मंगला को केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना न था, शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि ये उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते, प्रेम की शक्ति अपार है। पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी, चाहे वो कितना ही वेश बदल कर आवे। सुरेश इसी मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे, किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वो एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का यह खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। वो मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। वो अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा। यदि वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष, पर उनका ये सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते हुए देखकर भी रोकने का कोई उपाय ना कर सकते थे। परिणाम क्या होगा ये सोचने का उन्हें साहस ही न होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में

ने उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया। वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया।

0: एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी, पंखा झलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी, जो जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी चार कदम टहलते फिर हाँप कर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी।
1: पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
2: क्या बात है,
1: मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली।
0: चौंके, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा।
3: ये क्या बेवक्त की शहनाई है, यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूची है। मंगला ने बुलाया होगा और क्या, लोग नाहक ही कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है, उनके जीवन का आधार वही भोजन निद्रा राग रंग आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, ये गीत कभी बंद होगा भी या नहीं। सब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं।
0: अंत को न रहा गया, जनान खाने में आकर बोले,
3: ये तुम लोगों ने क्या कांव-कांव मचा रखी है, हाँ? ये गाने बजाने का कौन सा समय है, बाहर बैठना मुश्किल हो गया।
0: सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गईं। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई, पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली,
4: अरे क्या बात है, इतना क्यों बिगड़ रहे हो आखिर।
3: मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता।
4: तुम्हें सुनाता ही कौन है, क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है।
3: फजूल की मचमच,
4: तुमसे मतलब?
3: मैं अपने घर में ये कोलाहल न मचने दूंगा।
4: तो मेरा घर कहीं और है।
3: इन सबसे कह दो फिर किसी वक्त आए।
4: हाँ हाँ, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता है ना।
3: ओहो हाँ हाँ हाँ, इसीलिए।
4: तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसे ठट्ठे की आवाज अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों करते हो भला।
3: इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ।
4: स्वामी हूँ, स्वामी हूँ, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ इस घर में मेरा अधिकार है।
3: क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो, मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा तुम्हें, हाँ?
4: अच्छी बात है, जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वो भ्रम मेरा मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी था ही नहीं। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता।
3: अरे सुनो, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो, मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ का कुछ समझ गई तुम तो।
4: मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं।
0: सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही ये और भी जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए।

प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंसू पोंछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहु विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहां चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ ये है कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई, उनकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं ताका।

0: मंगला पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थीं। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: मंगला बहन, जरा अंदर आकर दम ले लो। ये क्या हुआ?
2: शीतला बहन, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ और क्या।
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती ना।
1: अरे तो क्या अब यहां तक नौबत आ गई है?
2: चाहती तो अब भी वहीं पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता। पर जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं।
1: तुम्हारा मैका कहाँ है?
2: मैके कौन मुंह लेकर जाऊंगी मैं भला?
1: अरे तो तब कहाँ जाओगी?
2: ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा,
1: इसे क्या खिलाऊंगी, आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं।
0: मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही,
1: मैं कैसी अभागिन हूं जिस प्रेम को ना पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है। उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके? इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वो कहाँ है, किस दशा में है।
0: अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली
1: और हम बात करने वाले हैं धरती की धड़कन है महासागर, क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और महासागर वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य की ऊष्मा को अपने भीतर समाहित कर तापमान को नियंत्रित करते हैं। यदि महासागर ना हो तो धरती पर कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असहनीय पीड़ा, असहनीय ठंड हो जाती है। वर्षा चक्र भी महासागरों के कारण ही संभव है और समुद्र से उठती जल वाष्प बादलों का रूप लेकर खेतों, जंगलों और नदियों को जीवन देती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। महासागर जैव विविधता का अनमोल खजाना है। लाखों तरह के जीव जंतु वनस्पतियां समुद्र में निवास करती हैं और छोटी मछलियों से लेकर विशाल वेल तक हर जीव समुद्री जीवन की अद्भुत दुनिया का हिस्सा है। करोड़ों लोगों की आजीविका भी महासागरों पर निर्भर होती है। कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी आजीविका उन पर टिकी होती है। आप तो यहीं मुंबई जहां विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, यहां के तमाम बीच पर जाइए तो मछलियां सूखती रहती हैं, तो ये उनकी आजीविका का स्रोत है। और जरा उनके बारे में सोचिए कि जो मछुआरे कई कई दिन तक मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी सी नैया लेकर चले जाते हैं बहुत दूर तक, और कई बार तूफान आ जाता है तो उन तूफानों से लड़ते हैं। तो जब हम समंदर में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो ये इन बातों का भी ख्याल रखें कि हम जब सागर हमें इतना कुछ दे रहा है तो हम भी सागर के लिए कुछ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में, कि उसकी सुरक्षा साफ सफाई का ख्याल रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और मछली तो वहाँ पर मिलती ही मिलती है, मछली पालन भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बहुत ही बहुमूल्य रत्न भी समुद्र से महासागरों से पाए जाते हैं।
0: तेल मिलता है जिससे जो बहुत बड़ा स्रोत है, हम सब
1: बिल्कुल ईंधन का साधन है। और व्यापार, पर्यटन और परिवहन जैसे अनेक कार्य समुद्रों के कारण ही चलते हैं। और इसका जो इतना महत्व होने के बावजूद भी ममता जी आज महासागर संकट में है। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि हम समय रहते नहीं जाग गए तो इसका प्रभाव पूरी मानव सभ्यता पर नजर आएगा।
0: बिल्कुल। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि समंदर, नदियों और तालाब में गजब का आकर्षण छिपा है। ये सब प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादान हैं। रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, समुद्र में ही नहीं नदियों, तालाब और जहां जहां पानी है वहां उठती है फेनिल हिलोरें और मन की आंतरिक सतह में एक मीठा झरना गुनगुनाने लगता है। क्या बात है, रात चांदनी की जब बात कही तो चांदनी रात में समंदर के किनारे बैठना, समंदर के किनारे सैर करना बहुत सुहाता है। हालांकि रात में समंदर का शोर डराता भी है मन को, लेकिन सुखद भी लगता है।
1: ऐसा लगता है कि वो जब उसके किनारे आप टहल रहे होंगे तो लगेगा लहरें आपको पीछे से घेर लेती हैं, ऐसा लगता है वो दृश्य।
0: इसी तरह की बात हमारी एक और सखी लिख रही है कि आसमानी रंग को अपने तन पर समेटे हुए सुंदरता को बिखेरता हुआ नजर आता है जो मनमोहिनी का काम करता है। उसकी अपार सुंदरता बरबस ये आकर्षित करती है। दूध सी आती शुभ्र उर्मी जब पैरों से टकराती है तो ऐसा लगता है किसी ने पांव में पायल बांधी और नूपुर बज उठते हैं। उससे निकलता संगीत मन को गहराई तक छू जाता है। क्या बात है भाई, आज तो हमारी सखियां बड़ी ललित भाषा में ये बातें लिख रही हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अदा करते हैं
1: जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि महासागर धरती की धड़कन की तरह है जो पूरी पृथ्वी के जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। विशाल और गहरे महासागर न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि जलवायु को नियंत्रित करने, वर्षा लाने और असंख्य जीवों को जीवन देने का कार्य भी करते हैं। समुद्र की लहरों की मधुर आवाज मन को शांति देती है और हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराती है। धरती पर जीवन का आधार माने जाने वाले महासागर मानव, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए अनमोल धरोहर है। इसलिए हमें महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी महिमा के महत्व को समझ सके।
0: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और मंजरी जी, आपने समुद्र एक संदेश भी देता है, उस संदेश को कभी सुना है? जब हम बहुत ध्यान से समंदर की लहरों को उठती गिरती देखे तो एक संदेश होता है। हम सब ये महसूस करते हैं कि एक बार उठना और गिरना ये इंसान की भी फितरत होती है। तो जब बहुत ऊंचाई पर जाएं तो कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं, हमारे सखा है ये। इन्होंने लिखा है कि समुद्र की धड़कनों से उसकी अनंत

0: तो गहराई मनुष्य को जीना सिखाती है। इतनी ऊंची लहरें मन को सुकून तो देती हैं, ये कहती हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा, सीमा से ज़्यादा ऊंचा उठना भी एक दिन वापस आना बताती है। बहुत सी चीज़ें हमें देती हैं, लेकिन हम सब जाएं तो वहाँ स्वच्छता साफ़ सफाई ज़रूर रखें। ये एक बात है कि ये कहा जाता है कि जब हम बहुत ऊंचाई तक ये उड़ते हैं लोग, मतलब ऊंचे ख्वाब देखते हैं और ये अपनी जड़ों को, जमीन को भूल जाते हैं, तब ये बात हम कहते हैं कि ज्यादा मत उड़ो, जब गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी, है ना।
1: जब आप तो ये बात कह रही थी ममता जी, तो मेरी जो सोच थी वो चली गई थी आपके ऊपर कि आप जो साहित्य लिखती हैं, साहित्य की दृष्टि, आपकी जो कलम चलती है, तो उस नजरिए से आपने बहुत बड़ी बात कही थी इसमें कि लहरें ऊपर भी उठाती हैं और नीचे भी गिराती हैं।
0: शुक्रिया मंजरी जी, लेकिन ये जब हम किसी भी जगह जाते हैं
1: जी,
0: तो बजाय सिर्फ मौज मस्ती के गाना बजाना और खाना पीना करने के बजाय, हम प्रकृति के उन नज़ारों को ध्यान से देखें, अपनी आंखों से देखें, उसे महसूस करें, आत्मसात करें, तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो हम ही से जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि महासागर प्रकृति की अनमोल देन है, वे केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली शक्ति है। उनकी अथाह गहराई में असंख्य जीवों का संसार बसता है और उनकी लहरें प्रकृति के निरंतर प्रवाह का संदेश देती है। महासागर हमारे मौसम को संतुलित रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मानव जीवन के लिए अनेक संसाधन प्रदान करते हैं। इनकी स्वच्छता और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो धरती भी स्वस्थ और जीवन से भरपूर रहेगी, और इनको स्वस्थ रखने में हम सभी को ही अपना योगदान देना चाहिए।
0: उफ, इतनी सारी टिप्पणियां हैं मंजरी जी, क्या कहें, लेकिन हम बहुत लंबी लंबी टिप्पणियां हैं तो शॉर्ट में पढ़ देते हैं। दो टिप्पणी एक साथ। महासागर को एक सखा है हमारे लिख रहे हैं, महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और दिल की धड़कन, जो इस ग्रह के मौसम, जलवायु और जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में एक रहस्यमय धड़कन हर 26 सेकंड में सूक्ष्म कंपन का स्रोत अटलांटिक महासागर की लहरों को ही माना जाता है। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है जो हमारे वायुमंडल से करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेषित कर लेता है। और एक हमारे श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती के सभी को नमस्कार, और एक श्रोता ने लिखा है कि महासागर न केवल पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है बल्कि ये हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है और ग्रह के जलचक्र को बनाए रखता है। महासागर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के लिए आवश्यक है, ये एक जीवन रेखा है।
1: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि अक्सर ये बात कही या सुनी जाती है कि दिल सागर जैसा विशाल रखिए, सागर जो हमें अपार सहनशीलता या विशाल दृष्टिकोण और निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। इस धरती की हर गंदगी अपने में समाकर खुद खारा यानी नमकीन बन जाता है, बदले में कड़ी धूप और गर्मी सहन करते हुए जल से बादल बनाकर बरसात द्वारा हमें मीठा पानी देता है, मतलब खुद जहर पीकर हमें अमृत देता है। जैसे मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसी का जीना है जो।
0: क्या बात है, अब देखते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने इस गाने में समंदर के बारे में क्या लिखा है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया है और सचिन देवबर्मन ने संगीत दिया। बारूद।

0: बारूद फिल्म का ये गाना था और समंदर के लिए आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था।
1: देखिए ना कुछ कहने वाले
0: अरे,
1: हैं।
0: आपने मुझे बोले ही नहीं थे, काट दिया।
1: देखो यही तो बात होती है ना कि क्या हम
0: तपाक से मतलब ये तपाक से बोलना हुआ लेकिन कई बार जरूरी बात रह जाती है ना तपाक से बोलने पर।
1: बिल्कुल सही बात है, तपाक से इसीलिए कई बार जब ऐसा बोला ना कि तपाक से बोल दिया तो उसका अंजाम भी बहुत गलत हो जाता है।
0: नहीं कई बार सही भी तो हो जाता है,
1: कई बार सही हो जाता है।
0: जैसे अभी हम तो तपाक से बोलने की बात पर हमें बतियाना था तो आपने तो सही किया लेकिन आप घबरा गई।
1: हमें लगा कहीं तपाक से बोले तो कहीं वो गलत ना असर पड़ जाए। तो ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम ना चाहते हुए भी बोल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ममता जी कि मतलब वो
0: अच्छी बात बोल देते हैं, कोई जानकारी होती है और वो तपाक से बोल देते हैं कि ये नहीं ये ऐसा था।
1: बिल्कुल। और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे, बस चार लोग खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे हैं, मालूम पड़ा आपने बिना सोचे समझे कि उनकी बात का क्या है मतलब है, कहाँ हमें बोलना नहीं चाहिए कहाँ बोलना है, वो तपाक से बोल देते। फिर उसका असर जो तीन सुन रहे होते, चार के बीच में आपने चौथे आपने बोल दिया, जो तीन सुन रहे हैं तो उनको बड़ा लगता है अरे ये क्या बात कर दी इसने, मतलब किसी का आप कटाक्ष भी कर देते हैं तपाक से बोलने वाले। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है, लोग गलत समझ सकते हैं, कभी कभी सीधी बात सामने वालों को कठोर या बहुत ही अपमानजनक लग सकती है और कभी कभी रिश्तों में तनाव भी आ जाता है और हर व्यक्ति जो है वो सच सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता है ममता जी। और बिना सोच समझ कर कही गई बात रिश्तों में दूरी भी ला सकती है।
0: लेकिन हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि मुझे तो तपाक से बोलने की आदत है और मुझे पता है कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं जब कोई गलत करता है तो अपने को मैं रोक नहीं पाती, अपने बातों से चतुर बनने की कोशिश करता है कोई तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता है, मैं बोल देती हूँ भाई कोई गलत बात कह रहा है तो आपको बोलना ही चाहिए तपाक से।
1: बिल्कुल।
0: तो सामने वाले की गलती भी उजागर हो जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि बड़ों ने कहा है, कुछ कहावत भी है कि कुछ भी बोलो तो पहले सोच समझ के फिर बोलो, तपाक से कुछ भी बोल जाने से हमारे मुंह से गलत निकल सकता है, किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, किसी को दुख पहुंच सकता है, किसी का हम अपमान कर जाएंगे, सारी हानि हमें ही होगी, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, तपाक से मत बोलो।
1: और हमारे साथी लिखते हैं कि तपाक से बोले शब्द तीर बन जाते हैं जो दिलों को बर्बाद करते हैं, जबकि सोच समझ कर बोले शब्द मोती होते हैं जो कभी चुपते नहीं बल्कि सजे हार बनकर रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। और इसी तरह हमारे साथी और लिखते हैं कि अत्यधिक उत्तेजना व अहंकार में सामने वाले को तपाक से ऐसा कोई आप शब्द कटु शब्द ना बोलें जिससे संबंधों रिश्तों में मतभेद कड़वाहट हो जाए, पहले तोले फिर बोले, नम्रता ममता भरे भाव मधुर बोले सभी जन से जिससे प्यार स्नेह बढ़ता है, इन्होंने ये बात लिख करके।
0: और हमारी एक सखी है, इन्होंने कहा है कि कुछ कह देना अक्सर बातचीत में गलतफहमी, विवाद या सामने वाले को ठेस पहुंचाने का कारण बनता है, इसलिए इसे आमतौर पर एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती, बिना सोचे बोले गए शब्दों में अक्सर सही संदर्भ की कमी होती है जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है।
1: और हमारे एक साथी देखिए और भी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत हमारे व्यक्ति की विशेषता होती है, जहां लोग दिल की बात बिना लाग लपेट के कह देते हैं वही

0: तपाक से बिना सोचे समझे बोली गई बात, जिसमें उतावलापन, रूखापन या दूसरों की बात काटने का उद्देश्य हो, मित्रों, आपसी रिश्तों और कार्यस्थल पर मुश्किलें भी पैदा कर सकती है, लेकिन शिष्टता, संयम और सम्मान के साथ तपाक से बोली गई बात आपको सम्मान के साथ आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि जल्दबाजी, अत्यधिक उत्साह या चिंता शामिल है तपाक से बोलने में। इसे एक बातूनी या वाचाल स्वभाव कहा जाता है। इस आदत को सुधारने और कम बोलने की आदत डालने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सुनने की आदत डालें, दूसरों की बात को ध्यान से सुने और बीच में न काटें। आज तो मंजरी जी ने हमें काटा बीच से, कहा कि तपाक से बोलने के लिए, तो भाई मैं मान गई, चुप हो गई और मैंने कहा कि हाँ, क्या कहना चाहती हैं। तो कई बार पते की बात कहने के लिए भी काट दिया जाता है, तो अच्छी बात है कि अगर हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो इसलिए एक दूसरे को काट कर अगर बोलते हैं तो वो अपनी जगह पर सही है।
0: बिल्कुल।
1: तो इनका कहना भी सही कि कुछ कहने से पहले 3-5 सेकंड का समय लें, सोच लें और उसके बाद मन को शांत करके बोलें और चिंता में और गुस्से में ना बोलें। और भी बहुत लंबी सी टिप्पणी इन्होंने लिखी है।
0: देखिए, एक बड़ा मजेदार सा संदेश मिला है मुझे। ममता जी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत कुछ मर्दों में होती है, लेकिन प्राय महिलाओं में ये आदत होती है, अच्छी तरह एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी होती है, इन्होंने लिखा है। पड़ोसी की
1: काफी विश्लेषण किया है इन्होंने।
0: देखिए ना, पड़ोसी की पति से लड़ती पड़ोसन के तपाक से बोलने की आदत को ताज्जुब करता हूँ। कभी कभी हमारी भी ऐसी करती हैं, अब नहीं तो कहकर सब मैं उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाऊं।
1: अच्छा, वैसे झगड़े के वक्त तो शब्द अपने आप फूटते हैं ना, फटाफट तपाक से ऐसे नॉर्मल बातचीत में कई बार लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन झगड़े के वक्त जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, देखा है कि वो भी बहुत तेजी से और फास्ट बोलने लगते हैं।
0: सही बात
1: तो
0: है।
1: ये क्या वजह है, हमें लगता है कि
0: बड़े बैठे होते होंगे इसलिए बोल जाते होंगे।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि तपाक से बोलने या बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत अक्सर बातचीत में खटास डाल देती है। और भी कुछ कहना चाहती हैं?
0: नहीं, अब गीत सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं।

0: आज नहीं तो कल कह लेंगे, लेकिन आप हम कल
1: पे कहना पड़ेगा
0: तुरंत कहना पड़ेगा और तपाक से जी. तो तपाक से बताइए कौन सी रेसिपी तैयार की गई है आज.
1: बस हम तैयार करने वाले हैं मथुरा की आलू की खस्ता कचौड़ी, जिसे आलू की सब्जी के साथ भी खाते हैं और चटनी के साथ भी
0: तो खाते हैं. तो ये रेसिपी सिर्फ बता रहे हैं, बनाया भी है कभी, बनाती भी है?
1: नहीं, वैसे तो देखिए आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी तो सब घर में बनती है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ की इसमें क्या खास बात है.
0: अरे आपने समझा ही नहीं, बनाने से मतलब है कि बना के खिलाया जाता है ना,
1: अभी तो
0: सिर्फ बनाया नहीं जाता है.
1: जी वो तो मैं जानती हूँ, आपके इशारे आपकी आंखों की जो चमक थी वो मैं समझ गई थी.
0: तो कौन सा व्यंजन आप बना रही
1: हैं? आलू की खस्ता कचौड़ी बताते हैं. इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच तेल या घी मोयन के लिए लेना है, 1/2 छोटा चम्मच नमक, गुनगुना पानी. आलू की ब्रावन के लिए आपको लेना है 2 या 4 उबले आलू लीजिए और हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा लीजिए, साबुत धनिया लीजिएगा उसको दरदरा कर लीजिए, और 1/2 छोटा चम्मच हींग लेना है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच अमचूर और नमक स्वाद के अनुसार, और 4 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है. तलने के लिए तेल भी आपको अलग से रखना है. और इसको बनाना है कि सबसे पहले मैदे में नमक मोयन डालकर अच्छी तरह इसको मिला लीजिए, और जब आपके हाथ से दबने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन आपका रेडी सही लगा इसमें, और पानी डालकर थोड़ा सा इसको गूंथ लीजिए नरम नरम, और करीब 20 मिनट के लिए आप रखिए. और आप एक कढ़ाई में तेल गरम करिए, उसमें हींग सौंफ धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए, और उबले आलू हाथ से तोड़कर डालें, सारे मसाले नमक डाल करके आप मिला लें अच्छे से, हरी धनिया भी आप इसमें डाल दीजिए, और मिश्रण सूखा और मसालेदार जब हो जाएगा तब आप उसको किनारे रख लें. अब कचौड़ी की जो आटा साना है उससे लोइयां बनाइए, उसमें आलू का भ्रावन भरिए और इसको आप हल्के से हाथ से दबाकर बेल लें, या फिर आप हाथ हथेली से दबाएं या बेलन से बेलें, और इसको आप सुनहरा सुनहरा धीमी आंच पर आप इसको तल लें, तो ये आपकी आलू की खस्ता कचौड़ियां तैयार हो जाएगी.
0: तो जब भी बनाना हो तो बना सकते हैं, और मंजरी जी बना के लाएंगी तो हमें जरूर खिलाएंगी, हम ये उम्मीद करते हैं. और अब तो हमने माइक्रोफोन पर कह दिया है ये बात,
1: बिल्कुल ये टाली भी नहीं जाएगी.
0: अब दाल की खस्ता कचौड़ी कैसे बनाएं ये भी आप जरा सुन लीजिए हमारे सारे श्रोताओं के साथ. दाल की खस्ता कचौड़ी के लिए भरावन के लिए पहले तो सामग्री बता दें, 1/2 कप धुली उड़द की दाल 4-5 घंटे भिगोई हो जो, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ, और 1/4 छोटा चम्मच हींग, या हींग तो चुटकी भर अंदाजे से डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला 1 छोटे चम्मच से मतलब चुटकी भर, और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार 2 बड़े चम्मच तेल का प्रयोग कर सकते हैं. अब भरावन कैसे बनाएं, भीगी उड़द की दाल का पानी निकालकर दरदरा पीस लें, कढ़ाई में तेल गरम करें, हींग सौंफ और धनिया इसमें डालें. अब दाल मध्यम आंच पर भून लें, सारे मसाले नमक डालें, मिश्रण सूखा और खुशबूदार होने तक पकाएं, ठंडा होने दें. अब कचौड़ी बेलें, आटे की छोटी लोई बनाकर बीच में दाल की भरावन भरें और धीमी आंच पर तेल में तलें. इसको आलू की पतली सब्जी और चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ भी खा सकते हैं
1: जी.
0: और अब ये गाना सुनिए.

0: कहीं दिन कहीं रात फिल्म का गाना था, महेंद्र कपूर की आवाज़ थी। और अब घड़ी की ओर ज़रा देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। इनसे हम बातचीत करेंगे जिसका विषय रहेगा मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर कुणाल मेहता जी, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं विविध भारती के इस माध्यम द्वारा आपसे बात करने का ये मुझे सुंदर मौका मिला है। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो विविध भारती सुन के ही बड़ी हुई है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, जो विविध भारती सुनते ही बड़ा हुआ हूं, और अभी मुंबई में पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परिचय दे दिया कि विविध भारती सुनते सुनते हमारी जनरेशन भी बड़ी हुई है। और देखिए, इसमें एक संयोग की बात यह है कि उसी चैनल पर जब आपको बातचीत का मौका मिलता है सुनने वालों से, तो अच्छा भी लगता है।
1: जी, बहुत खुशी हो रही है, और ये मेरे लिए एक मीडियम है जहाँ से मैं इंडिया की पूरी जनता से जुड़ सकता हूँ और उनको मेरे विचार पहुँचा सकता हूँ, और थोड़ा मैं उनको गाइड कर सकता हूँ आज के विषय के बारे में।
0: जी, आज का विषय हमने सुनने वालों को बता दिया है, मधुमेह, कारण और बचाव। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत ऐसे करते हैं कि मधुमेह कई बार डरावना शब्द होता जा रहा है आज के दौर में, खासतौर से आपके पास भी जो मरीज आते होंगे उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। पहले होता था कि एक बड़े होने के बाद, आयु वर्ग निकलने के बाद मधुमेह एक रोग होता था, आजकल ये कॉमन सी बात हो गई है और भारत में तो इसका प्रभाव सबलता से बढ़ता जा रहा है। तो हम जानेंगे कि मधुमेह के प्रकार किस तरह से हैं और आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे।
1: जी, मधुमेह जो बीमारी है सबको पता है, डायबिटीज मेलाइटिस जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। और कहने में दुख होता है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है, और यह बन गया है। मधुमेह के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं,

और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जो कि एडल्ट्स में होता है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसमें ये इंसुलिन की टोटल कमी होती है, पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते, इसके लिए ये जो मरीज होते हैं ये पूरी तरह डायबिट इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं। और इनमें जो है टैबलेट्स हम नहीं दे सकते, इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, जो कॉमनली पहले एडल्ट्स में होता था लेकिन आजकल काफ़ी यंग लोगों में पाया जा

0: वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप 1, टाइप 2 और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं वह किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया, हम जी कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम एक एंटीसिपेशन कल्पना कर लेते हैं इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है, ऐसा क्यों होता है?
1: सी, डायबिटीज मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं जिसमें है ओबेसिटी, डिसलिपिडेमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ही मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है। ये सब के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पर असर होता है, और जो इंसुलिन

0: सेंसिटिविटी है, मतलब जो इंसुलिन का एक्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण कि शुगर कंट्रोल में तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है।
1: अगर डॉक्टर साहब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नज़रिए वाली बात होती है, तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप 1 का रोगी बन चुका है?
0: टाइप 1 के जो रोगी होते हैं वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी पहले कहते थे। ये जैसे कि मैंने कहा, इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वजन कम होना, भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफ़ी बार, 4-5 बार, इन्फेक्शन होना या घाव नहीं भरना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है, जिसके कारण कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है,
1: ओहो,
0: इतना ज़्यादा शुगर होता है।
1: वैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है शुगर की?
0: नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं, फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है, और जो पोस्ट लंच मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है वो 130 के अंदर होनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है, जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है, वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है वो 126 या उससे ज़्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज लेबल कर देंगे।
1: अच्छा यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है वो कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है या बहुत भूख लगती है फिर भी वज़न कम होता जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसे शुगर नहीं है लेकिन जांच के पहले या कुछ घंटों के पहले उसने मीठा कुछ ज़्यादा खा लिया है, तो क्या जांच प्रभावित हो जाती है?
0: नॉर्मली अगर जांच के पहले कुछ मीठा खा गया है तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है या जो प्री डायबिटिक्स नहीं है उनमें इसका असर नहीं होगा। बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी,
1: अच्छा
0: तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए, जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में, तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत ज़रूरी है।
1: जी हाँ भाई, देखिए चर्चा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है, थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए आप।
0: श्रोताओं को मैं, ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता, जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, इमरजेंसीज के कारण, बट शी इज़ ऑलवेज देयर। सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले, फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल।
1: हम सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का बहुत ही रोमांटिक गाना है।

0: तू मिले दिल खिले। देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाया आपने। और अब जब मरीज आपसे मिलते हैं, टाइप वन के भी मिलते हैं, टाइप टू के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंट या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं टाइप टू मरीज है ये?
1: जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइप वन कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज़ के हैं वही है। लेकिन ये बहुत बार इनको इमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते हैं तो शुगर ज़्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज़ हो सकता है। या बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वज़न नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है या पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज़ हम सस्पेक्ट करते हैं।
0: तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है?
1: ये ब्लड से ही होता है, जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज़ के लिए टेस्ट होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 मंथ्स एवरेज होता है डायबिटीज़ का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज़्यादा हो तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ का इंडिकेटर है, और अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ है।
0: अच्छा, सपोज़ पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज़ का मरीज़ है, तो अल्टरनेट इमीडिएट ट्रायल ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं।
1: अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं और ब्लड रिपोर्ट्स, हम पूरा पिक्चर देखते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट, तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते हैं।
0: तो कभी कोई ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट ट्रायल ली हो और बाद में पता चला हो कि डायबिटीज़ नहीं था?
1: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो, या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है जो 3 महीने का, पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है, तो अगर ये 3 महीने का शुगर है वो खाने पीने से अल्टर नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट 3 महीने के शुगर लेवल का रिकॉर्ड है। तो अगर ये HbA1c ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ का संकेत है। इसके अलावा 2-3 और टेस्ट होते हैं, जो कि एक सीरम इंसुलिन लेवल होता है, जो इंसुलिन की मात्रा होती है ब्लड में, उसे हम टेस्ट करते हैं। अगर वो लेवल लो है तो भी हमें डायबिटीज़ का इंडिकेटर मिलता है। और एक सी पेप्टाइड लेवल होता है, जो भी हम टेस्ट करते हैं ऐसे स्पेशल कंडीशंस पे, जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परीक्षण की बात बता दी और कंफर्म कर दिया कि डायबिटीज़ का मरीज़ ये रोगी है और उसका इलाज आवश्यक है, तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बताती है कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है?
1: एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है। अगर शुगर ज़्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर डायबिटीज़ के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होकर एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देर इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है। बट अगर सिर्फ शुगर ज़्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का BP बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इसको OPD बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं।
0: क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज़ नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा लिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज़ का रोगी है, क्योंकि लक्षण उसमें नहीं है, ये आप देखते हैं, पूरा हिस्ट्री मालूम पड़ जाता है। कई मरीज ऐसे भी आते होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है।
1: जो मरीज मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं, उनमें जैसे कि मैंने कहा, पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं हम पहले, कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट्स को तकलीफें क्या है, फैमिली हिस्ट्री

0: लेते हैं, हम लाइफस्टाइल डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग कुछ आद्य उनको एडिक्शंस है इसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं। तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया है और तुरंत शुगर चेक किया है, इसके लिए शुगर ज़्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं। उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
1: ये बहुत ही अच्छा परीक्षण आप करते हैं ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है
0: राइट पेशेंट्स
1: वो
0: को
1: दूर
0: बहुत
1: हो जाता
0: टेंशन
1: है।
0: होती है।
1: अब देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा।
0: ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है। ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूँगा जो मेरे MD के बैचमेट्स हैं। मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं, ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा।
1: सुनते हैं।

0: दिल चाहता है, दिल तो बहुत चाहता है कि गाना लगातार चलता रहे, सुनते रहें, लेकिन गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का, दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर साहब, मधुमेह की जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वो कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे।
1: देखो, बच्चों में जो डायबिटीज़ होता है, कॉमनली हमने जैसे बोला कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके लक्षण हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इन में से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। फिर वो आगे जांच करके बता सकते हैं कि मरीज को डायबिटीज़ है कि नहीं, और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स है, दवाइयाँ हैं, अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सके।
0: हाँ,
1: तो इसमें जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग कि पेशेंट की इंसुलिन वैल्यू क्या है। साथ ही खाने के परहेज करना पड़ता है, और सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चा है, बढ़ती उम्र है, तो उसका सेहत भी हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हैम्पर होगी, मेमोरी हैम्पर होगी।
0: डॉक्टर साहब आपने बताया कि मेमोरी पे भी फर्क पड़ सकता है, और आपने 3 साल की जो बच्चों का उदाहरण दिया है, एक पढ़ा

0: अच्छा, परीक्षण के बाद यदि ये पता चलता है कि बच्चे को टाइप 1 नहीं है और कुछ ऐसे डायबिटीज के लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं शुरुआत, तो क्या गोलियों से काम नहीं चल सकता?
1: टाइप 1 डायबिटीज़ में हम गोलियां नहीं दे सकते। अगर उसके लिए मैंने जैसे बोला, हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इंसुलिन लेवल्स देखेंगे, सी पेप्टाइड लेवल्स देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे बच्चे को डायबिटीज़ है कि नहीं। पर अगर बच्चा है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन है। हम कोई दवा टैबलेट बच्चों में नहीं दे सकते। एडल्ट्स में जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, उसमें इंसुलिन इज़ द लास्ट ऑप्शन। बहुत बेहतरीन दवाइयाँ मार्केट में हैं, एलोपैथी ऑब्वियसली, बट जिससे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है और इंसुलिन एक आवश्यक स्रोत बन जाता है कि ये लेना ही है उसको, तो ये तो फिर जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा।
1: जी, सही बात है। इसी बात का हमें दुख होता है कि इंसुलिन जो है लाइफ लॉन्ग बच्चों को लेना पड़ेगा। बड़े होते हैं तभी भी उनको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। दैट्स व्हाई इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं।
0: लेकिन युवा अवस्था तक अगर वो बच्चा आता है, शादी ब्याह की बात होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें कुछ डिसफंक्शन की बात रहती है, कुछ कमी सी लगती है, दौर्बल्यता आती है।
1: डायबिटीज़ में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, बट अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, सही न्यूट्रिशन रखें, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
0: अच्छा, ऐसे कोई मरीज आपके पास आते हैं जिसकी आयु 15 से 20 साल हो, युवावस्था कही जा सकती, किशोरावस्था, टीनेजर, उनको डायबिटीज़ हुआ हो अपनी लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, तो क्या वो, और मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो वो क्योरेबल है?
1: डायबिटीज़ जो है इसका कोई क्योर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, मतलब उनका शुगर जस्ट नॉर्मल रेंज के बाहर है, या ये वो पेशेंट्स है जिसको हम अगर सही लाइफस्टाइल दे, उनका डाइट कंट्रोल करें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें वो पेशेंट्स, तो उनका शुगर कंट्रोल में रह सकता है, उनको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, ये बहुत ही भयानक बीमारी है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चे काउच पोटैटोज बन रहे हैं, सोफा पे बैठ के टीवी देखना, घंटों मोबाइल में घुसे रहते हैं। हमारे जब हम छोटे थे तब हम बाहर खेलने जाते थे, मैदानों में आउटडोर गेम्स खेलते थे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खोखो हो, ये सब खेलते हुए हम बड़े हुए। लेकिन आज के अगर हम यंग जनरेशन देखें तो वो कंटिन्यूसली मोबाइल में घुसे रहते हैं, या फिर प्ले स्टेशंस है, टीवी है, इंटरनेट है, तो इसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। आउटडोर जो गेम्स रहते हैं आजकल बहुत कम खेलते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी इज ऑन द राइज। बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको जो ओबेसिटी के शिकार है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वजन, मोटापा जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत बढ़ रहा है, और ये सब का असर डायबिटीज़ की तरफ उनको ले जा रहा है। उनको युवा अवस्था में 20, 25, 30 साल में डायबिटीज़ हो रहा है, इसके कारण डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस भी आगे बढ़ के उनको होने वाली है।
0: ये बहुत

0: गाना तो आपने बहुत ही इमोशनल सुनवा दिया। ये देखिए, ममत्व से बढ़कर कोई एहसास नहीं और कोई इमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब किसी को मधुमेह हो जाता है, वो आपके पास आता है, तो एक तारतम्य आपका जुड़ जाता है, एक सिंपैथी सी हो जाती है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को हो गया। लेकिन जब बड़ों को डायबिटीज़ हो जाता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के बारे में क्या कारण आप समझते हैं कि हो जाता है?
1: इसके कारण मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण हैं। एक है जेनेटिक, जो फैमिली से आता है। आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आप डायबिटीज़ के लिए प्रोन है। ज़रूरी नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज़ होगा, बट यस, आप नॉर्मल आदमी जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज़ नहीं है या जिसके जीन्स में डायबिटीज़ नहीं है, उससे आप रिस्क पे है, उससे ज़्यादा रिस्क आपको है डायबिटीज़ होने की। आजकल जो उससे ज़्यादा बीमारी जो है आजकल, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी। डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ ओबेस पेशेंट्स में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो काउच पोटैटोज है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, और जो अल्कोहल या स्मोकिंग के आदि हैं, ये पेशेंट्स में डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज डायबिटीज़ जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, या आप स्ट्रेस ले रहे हैं, मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गांव में भी हम देख रहे हैं जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन आ जाता है उन्हें, तो ये सब डायबिटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे जाके ये पेशेंट्स, ये मरीज़ को डायबिटीज़ हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, एक फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की, जो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, तो ये आपके पास इस तरह के भी मरीज़ देखने को मिलते होंगे आपको, कि पिता को था लेकिन 3 भाई या बहन हैं, उसमें से केवल एक को ही हुआ है, 2 को नहीं हुआ है?
1: डायबिटीज़ में फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि फादर या मदर को या दोनों को डायबिटीज़ है तो सभी बच्चों को डायबिटीज़ होगा।

0: उस इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट रखे और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे तो चांस है कि उसको डायबिटीज नहीं हो।
1: ये बात तो आपने बड़ी सुधार की कही है कि कभी अच्छा, इसमें एक सेंटेंस आपने कहा था, स्ट्रेस या तनाव या अवसाद, इसको अलग अलग रूप में लेते हैं लोग, वो हर किसी को है, आपको है और मुझे भी है, कहीं ना कहीं हम इससे बचे नहीं हैं, लेकिन उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना गहराई से उसको महसूस करते हैं, तभी इसके शिकार बनते हैं। कितना सहमत हैं आप?
0: ये एक बिल्कुल सही बात बोली। देखो, जैसे कि मैंने कहा, अर्बनाइजेशन जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, भागदौड़ वाली मुंबई में जो हम भागदौड़ करते हैं, यहाँ से वहाँ ऑफिस जाओ, यहाँ आओ, इधर जाना है उधर जाना है, तो लाइफस्टाइल जो हमारी है पूरी तनावपूर्ण है। ऑफिस में वर्क है, घर पे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है। कि जो युवा है गाँव में भी, जो रूरल एरियाज है वहाँ पर भी स्टडीज है जो बताती हैं कि गाँव में भी जो स्ट्रेस है वो लेवल काफ़ी बढ़ गया है युवाओं में। स्ट्रेस से बचना नामुमकिन है। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना स्ट्रेस ले, कितना नहीं ले। मैं तो मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ, भगवान ने हमको दो कान दिए हैं, एक कान से सुनो, दूसरे से बाहर लो। बीच में जो दिमाग है उसको बेचारे को टेंशन मत दो, उसको छोड़ दो
1: जी।
0: क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ डायबिटीज के और हम बढ़ावा दे सकते हैं, इससे और भी सारी काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एसिडिटी है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।
1: ये आपने इतना गंभीर स्रोत बताया है कि मुझे एक प्रश्न यहाँ करना पड़ेगा सुनने वालों की ओर से, कि आप इतना इलाज करते हैं और एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसका अगर मधुमेह नियंत्रण में न आया, तो न आने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए
0: जी। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखे तो काफ़ी सारे शरीर के जो पुर्जे हैं उन पे नुकसान हो सकता है। डायबिटीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट किलर
1: जी।
0: ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है और जब 10 साल 15 साल आदमी को डायबिटीज़ होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तब इसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरुआत होती है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो जाते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, काफ़ी इसके कारण मोर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी होती है। डायबिटीज़ जो कॉम्प्लिकेशंस है ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर बोलते हैं। सरल भाषा में कहा जाऊँ तो शरीर के सभी अवयवों पे इसका असर होता है, बुरा असर। आंखों में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसमें जो आंख का पर्दा है जहाँ पे इमेज बनती है उसे डैमेज होता है, पेशेंट्स को आगे जाके दिखना बंद हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट्स बहुत जल्दी होते हैं, जिसको हम मोती बिंदु कहते हैं, तो ये पेशेंट्स को कम उम्र में कैटरैक्ट होता है, ऑपरेशन से ये सही हो सकता है, बट अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ गया तो इसके कारण उनको दिखना बंद हो सकता है। फिर डायबिटीज से किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है और आगे जाके ये पेशेंट्स डायलिसिस पे भी लैंड अप हो सकते हैं, इतना गंभीर रूप से डायबिटीज़ का असर होता है। तीसरा असर डायबिटीज़ का होता है हार्ट पे, जिसमें हार्ट अटैक जो है ये हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में। स्पेशली हार्ट अटैक उन पेशेंट्स में होता है जिनको ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मात्रा ज़्यादा है। तो हम जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, साथ में ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ का ब्रेन पे भी असर हो सकता है, बिकॉज डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल हैंड इन हैंड चलते हैं, तो ये पेशेंट्स को लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी होती है, जिसमें हम हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है और आगे जाके तलियों में और हाथ के जो पंजे हैं उसमें जलन होती है। ये जलन बहुत सीवियर हो सकती है और इसके कारण पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है।
1: हमने ये भी मरीजों में देखा है, पाया है कि आपने हाथों की जो जलन बताइए, पैरों की पगतलियों में जो ऐसा होता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ता है।
0: डायबिटीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट। जैसे कि मैंने बताया, न्यूरोपैथी में क्या होता है कि इनकी जो नर्व्स है वो कमज़ोर हो जाती है, इनके सेंसेशन जो है वो चले जाते हैं, इसलिए ये पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशंस नहीं होता है। काफ़ी बार ये होता है कि पैरों में जख्म हो गई, लेकिन पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशन नहीं होने के कारण

0: ये जख्म बढ़ता जाता है। और डायबिटीज़ के जो मरीज़ है ये काफ़ी बार अपने फूड चेक नहीं करते हैं, इसलिए हम हमेशा मेरे पेशेंट्स को मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि डेली बेसिस पे एक बार एटलीस्ट दिन में अपना फुट इंस्पेक्ट करना चाहिए, और फुटवेयर जो है वो प्रॉपर फुटवेयर होनी चाहिए और फुट इंस्पेक्शंस होना चाहिए। तो ये जो डायबिटिक फुट है इसमें कॉम्प्लिकेशंस होके इन्फेक्शन हो सकता है, और ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके हमें काफ़ी बार एम्पिटेशन भी करना पड़ता है, मतलब पैर को काटना पड़ता है। वो लेवल हम डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, बिलो नी होता है, बिलो एंकल, अबव एंकल होता है, तो डिपेंडिंग, या कभी कभी सिर्फ एक उंगली काटनी पड़ सकती है। तो इतना भयानक ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट।
1: लेकिन यहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसमें मटेरियलिस्टिक ढंग से देखें, तो प्लास्टिक का चप्पलों का उपयोग कर सकते हैं, या पूरा जूता और मोजा बंद करके पहनते हैं तो मॉइस्चराइजेशन होता है, तो उस पैर की अवस्था को कैसे रखा जाना चाहिए?
0: नहीं, डायबिटिक फुट केयर में यही है कि आप अपने फुट क्लीन और ड्राई रखें। यू कैन वेयर सॉफ्ट चप्पल्स, आजकल मार्केट में भी स्पेशल डायबिटीज़ फुटवेयर आती है जो आप पहन सकते हैं। जो पेशेंट्स में डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटिक फुट है या कभी कभी फ्लैट फुट होता है, उनके लिए स्पेशल फुटवेयर भी आते हैं। न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए भी स्पेशल फुटवेयर है। लेकिन जो आम जनता है जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, ज़्यादा टाइट शूज़ नहीं पहने, और घर पे आते ही पैरों को खुला रखें, उनको हमेशा डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करें।
1: इसका मतलब थोड़े समय के लिए जब बहुत सारी बंदिश हो जाती है तो उसको आपको थोड़ा हवा के रूप में रखना चाहिए, थोड़ा खुला रखना चाहिए, मोजे वगैरह ना पहने उस समय के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो संगीत वाली बात है वो कौन सी है?
0: ये गाना है, ये मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगा।

0: और अब हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उसमें तमाम सुनने वाले भी इसमें शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानना जरूर चाहेंगे कि डायबिटीज ना हो इसके लिए क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या बचाव के तरीके अपनाने चाहिए।
1: डायबिटीज़ ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हम डेफिनेटली इससे बच सकते हैं और इसको हम डिले कर सकते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी। हमारी लाइफस्टाइल सही रखे, हम एक बैलेंस डाइट फॉलो करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो डायबिटीज़ के भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। तो मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि आप डेली एक्सरसाइज करें। आजकल के युवा और एडल्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही कम होगी। घर से निकलते हैं, बाइक है, कार है, वहाँ से ऑफिस जाते हैं या बस पकड़ के ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर आते हैं, घर बैठते ही टीवी के सामने बैठ जाएंगे, थके हुए टीवी के सामने ही खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है ये आजकल कॉमन पब्लिक है, इनमें बहुत ही कम होती जा रही है। स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके कारण भी लोग खाना लेट खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं कि नहीं मैं पहले काम करूंगा, ये सर पे बैठा है, बॉस सर पे बैठा है, मैं पहले काम खत्म करता हूँ फिर खाना। मेरा ये सुझाव है और मेरे श्रोताओं से ये कहना है कि आप खाना जो है टाइम पे लीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। आजकल जंक फूड का क्रेज है। मैं ये नहीं कहता कि आपको टेस्टी फूड या जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इसको आप संडे को एंजॉय कीजिए, बट बाकी 6 दिन जो है हफ्ते के उस दिन आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। डाइट के बारे में बताना चाहूँगा कि हमें जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डाइट में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक होना चाहिए। फैट का इंटेक, चर्बी का इंटेक या चर्बी युक्त पदार्थों का इंटेक कम रखना चाहिए। खाने में सलाद्स, हरी सब्जियां, फ्रूट्स और टोंड मिल्क का सेवन करें। रेगुलर बेसिस पे आपको सलाद्स और फ्रूट्स लेना चाहिए। साथ ही नॉन वेजिटेरियन फूड है जो एंजॉय करते हैं वो बेशक खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट और एग योक, जो योक होता है, उसे कम लेना चाहिए। और तली हुई चीज़ें, फ्राइड स्टफ, इसका सेवन कम करना चाहिए। कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है कि आप मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट यस, अगर आप हाई कैलोरी फूड जिसमें कि घी, तेल, चर्बी ज़्यादा है, ऐसा फूड का सेवन रेगुलर करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो यस, आप डायबिटीज़ की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं, आपको फ्यूचर में जाके डायबिटीज़ होने की संभावना है।
0: ये आपने सही कहा कि मीठे के बारे में जो मिथ है खा सकते हैं लेकिन उसको पचाइए भी।
1: यस
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चलन सा निकला है, कोई भी पदार्थ हो उसमें कहा जाता है आप ले सकते हैं शुगर फ्री, तो व्हाट इज शुगर फ्री?
1: जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे शुगर नहीं बढ़ता है या कम बढ़ता है, इसके लिए हम इनको शुगर फ्री बोलते हैं। जैसे कि सैकरिन हो गया या कुछ केमिकल्स है जो स्वीट टेस्ट देते हैं बट इनसे शुगर लेवल नहीं बढ़ता है।
0: जी
1: स्टीविया है जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ये भी शुगर फ्री होता है। तो जो पदार्थ या मिठाइयाँ बनाई जाती है इनमें इन केमिकल्स, शक्कर या चीनी या गुड़ का इस्तेमाल न करते हुए ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिनसे कि उसका कैलोरी काउंट और शुगर काउंट लो हो या उससे शुगर नहीं पड़े। तो हम ये सलाह देते हैं पेशेंट्स को कि ये जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस है इनका सेवन आप कर सकते हैं, बिकॉज दिल तो करेगा, दिल तो अभी भी बच्चा है, मीठा खाने की जिद तो करेगा। तो आप कभी कभी इंडल्ज कर सकते हैं, बट ये जो शुगर फ्री मिठाइयाँ स्पेशली होती है उनमें मावा है, घी है, तो कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इनको रेगुलरली नहीं ले, कभी कभार खुद को खुश करने के लिए या शाबाशी देने के लिए कि अगर आपने डायबिटीज़ कंट्रोल रखी है, रेगुलर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वंस इन अ वाइल इट्स ओके टू इंडल्ज।
0: तो ये तो तमाम सारी जो लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारी है आपने दे दी है और हमें उम्मीद है कि लोग इसको स्वीकारेंगे, मानेंगे और उसका पालन करेंगे। अब चलते चलते एक गाना तो बनता है, वो आपकी पसंद का नगमा कौन सा है?
1: ये आखिरी गाना है जो मैं श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहूँगा, पूरे इंडिया के श्रोताओं को। ये AR रहमान साहब का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हर इंडियन के करीब होना चाहिए। माँ तुझे सलाम।
0: आइए सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, आपने देखिए देशभक्ति पूर्ण जज्बे से जो लबरेज था ये गाना सुनवाया, और अब चलते चलते आखिर में एक कोई संदेश नुमा बात हमारे मधुमेह के रोगियों को कहना चाहेंगे तो वो क्या है?
1: मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा सब श्रोताओं को कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और अगर हम सही लाइफस्टाइल चुनें तो हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल।
0: इतने गहन विषय पर आपने सरल शब्दों में आज का हमारा जो विषय था मधुमेह कारण और बचाव, इस पर अपनी चर्चा की और लोगों को समझाया, हमारे सुनने वालों से मुखातिब हुए। इसके लिए विविध भारती में आने के लिए और इस तरह की चर्चा करने के लिए विविध भारती की ओर से, तमाम सुनने वालों की ओर से आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: एक बार फिर से सब श्रोताओं का और विविध भारती का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेल करके, खत लिख के हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराइए। चलते चलते आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो

0: बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था। तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं,
1: क्या
0: जैसे
1: बात है।
0: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोता भी सुन रहे थे मुंबई से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। शाम के 5 बजे हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा वाणी।

श्रोता भी सुन रहे थे मुंबई से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। शाम के 5 बजे हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा वाणी।

0: इसको हेल्दी रखना और उसकी जो देखभाल करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और जब हम कार्यक्रम में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो इसके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी देंगे। इसके बाद में बात करेंगे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की, और ये संदर्भ में है हमारी सरकार के 12 साल के। इसके बाद में महार और राजस्थान के जरिए हम जानेंगे आज राजस्थान की वीरांगनाएं महिलाओं की और महिला शक्ति की।
1: और जानकारी में उस्ताद योजना हम हमारे दोस्तों के लिए लेकर आए हैं जो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है।
0: इसके बाद आपको चिराग जल रहे हैं युवा डायरी के जरिए एक युवा साथी से रूबरू करवाएंगे जिनका नाम है रोहित नागर, और इनसे बात की है कन्हैया जी ने। तो दोस्तों कार्यक्रम में आगे बहुत कुछ है और ढेर सारा एंटरटेनमेंट भी है और साथ है हम सभी का, और हम सब जब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो युवा अपने सपनों को भी पूरा कर पाएंगे और अपने हर गोल को अचीव कर पाएंगे। इसी के साथ एक क्लासिक से मेलोडियस सॉन्ग की तरफ इन्हें लेके चले।
1: बिल्कुल, शुरुआत करते हैं प्यारे से गीत से,
0: सुनिए।

0: इसको हेल्दी रखना और उसकी जो देखभाल करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और जब हम कार्यक्रम में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो इसके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी देंगे। इसके बाद में बात करेंगे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की, और ये संदर्भ में है हमारी सरकार के 12 साल के। इसके बाद में महार और राजस्थान के जरिए हम जानेंगे आज राजस्थान की वीरांगनाएं महिलाओं की और महिला शक्ति की।
1: और जानकारी में उस्ताद योजना हम हमारे दोस्तों के लिए लेकर आए हैं जो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है।
0: इसके बाद आपको चिराग जल रहे हैं युवा डायरी के जरिए एक युवा साथी से रूबरू करवाएंगे जिनका नाम है रोहित नागर, और इनसे बात की है कन्हैया जी ने। तो दोस्तों कार्यक्रम में आगे बहुत कुछ है और ढेर सारा एंटरटेनमेंट भी है और साथ है हम सभी का, और हम सब जब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो युवा अपने सपनों को भी पूरा कर पाएंगे और अपने हर गोल को अचीव कर पाएंगे। इसी के साथ एक क्लासिक से मेलोडियस सॉन्ग की तरफ इन्हें लेके चले।
1: बिल्कुल, शुरुआत करते हैं प्यारे से गीत से,
0: सुनिए।

0: खाना देते हैं, जलवायु को संतुलित करते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: चलिए पहले कुछ महासागरों से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में जान लें। जो महासागर है वो हमारी पृथ्वी का 50% भाग से ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो महासागर ही पैदा करते हैं।
1: बिल्कुल, और वो लाखों प्रजातियों का घर भी है।
0: जी बहुत ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो महासागरों में मिलती है। लेकिन जो प्लास्टिक का प्रदूषण है, जलवायु प्रदूषण है, ओवर फिशिंग है, इन सभी के वजह से जो महासागर हैं वो खतरे में आते जा रहे हैं। और इस पे हमारा फोकस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम युवा हैं और बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं जिनको करके हम इस खतरे को टाल सकते हैं, कम कर सकते हैं।
1: जी
0: और 2026 में ये जो फोकस है वो भी हमारा इसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड और एवीज यानी कि जो मजबूत समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं वो हमें बनाने होंगे ताकि 2030 तक कम से कम 30% के जो महासागरों की जो रक्षा है वो हम कर सकें।
1: बिल्कुल रफिया, तो युवा होनी है, इस्तेमाल करना है और समुद्र तटकों में साफ रखना है और साथ ही अपनी आवाज़ को उठाना है। और जब कभी भी हम समुद्र किनारे घूमने के लिए जाएं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम वहाँ पे कोई भी प्लास्टिक की वस्तु वगैरह या पॉलीथीन वगैरह न डालें।
0: अब इसी तरह से हमें सारी प्रिकॉशन लेते हुए ही घूमना फिरना है क्योंकि दोस्तों अगर हम वहाँ पर चले भी जाते हैं और उसके बाद में वहाँ अगर हम गंद फैलाकर आते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी तोहमत है कि युवा होते हुए भी हम इस बात को समझ नहीं पा रहे। और इसी के लिए हमें जागरूक रहना होगा और जागरूक रहते हुए अपने प्रयासों को करना होगा क्योंकि जब तक हम जागरूक हैं जब तक ये पृथ्वी जीवित है।
1: जी बिल्कुल,
0: ये बिल्कुल हमें कहना पड़ेगा। और इसी के साथ आपको एक खूबसूरत सी कविता भी सुना देते हैं जिसका नाम है हमारी जिम्मेदारी। और हमारी जिम्मेदारी ही है जिसको हमें आगे तक निर्वहन करना है और इन महासागरों की पुकार को सुनते रहना है।
1: जी
0: तो सुनिए, समुद्र पुकार रहा है सुनो मेरी बात, बचाओ मुझे बच जाएगा पूरा संसार, हर लहर कह रही है अब वक्त आ गया है, हाथ बढ़ाओ मिलकर करें एक नया प्रयास, मछलियों की चीख को मत अनसुना करो, आवाज नहीं आती पर आवाज है, कोरल की मौत को मत देखते रहो, ये नीला खजाना हम सबका यार है, रक्षा करो तो जिएगा भविष्य हमारा। दोस्तों हम अगर रक्षा करेंगे तो महासागर फिर से जी उठेंगे और इनके ऊपर ये जो संकट है वो टल जाएगा। और ये संकट सिर्फ महासागरों पे नहीं, हमारे जीवन पर है, हमारे पर्यावरण पर है, क्योंकि अगर इसी तरह से महासागर भी नष्ट होते रहे तो ग्लोबल वार्मिंग हमें खा जाएगी।
1: और इसके लिए हमें दोस्तों कि किस प्रकार से हम महासागरों को बचा सकते हैं, उसके लिए कुछ तरीके हम अपना सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक को बंद करना या उसका बहुत ही कम उपयोग करना, और जहाँ तक कहें हम कि तट की सफाई करना, सफाई अभियान चलाना, जागरूकता फैलाना, लोगों को समझाना इस बारे में, साथ ही जलवायु बचाओ, समुद्री

0: बनाने की हमें आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार जो है सकते हैं,
1: और जितने भी हमारे प्रयास होंगे वो भरसक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि बस हमने सोच लिया या हम स्टूडियो में बैठ

0: जानकारी भी
1: जी बिल्कुल।
0: तो दोस्तों अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि जानकारी देना, जागरूक करना हमारा काम था, एक्शन लेना हमारा भी काम है, हम भी युवा
1: जी,
0: हैं,
1: बिल्कुल।
0: साथ ही साथ आपका भी काम है, और ये विषय बेहद गंभीर है, इसलिए इस पर विचार करें। और इसी के साथ आपको लेकर चलते हैं एक एंटरटेनमेंट से भरे गीत की तरफ, तो लीजिए सुनिए
1: एक प्यारा सा गीत।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों, इस ब्रेक के बाद में अब आप सभी को लेकर चलते हैं, चिराग चल रहे हैं युवा डायरी की तरफ और सुनवाते हैं रोहित नागर से कन्हैया जी की बातचीत। तो लीजिए सुनिए।
2: नमस्कार साथियों, चिराग जल रहे युवा डायरी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इस क्रम में आपको रोज मिलाते हैं किसी न किसी युवा सक्सेस से, उसी क्रम में आज हमारे बीच में जुड़े हैं रोहित नागर। रोहित जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।
3: नमस्कार, मेरा नाम रोहित नागर है। मैं अभी फिलहाल, मेरा जो प्रतिष्ठान है रोहित इंटरप्राइजेस, जो कि हमारे पापा के द्वारा बनाया गया, पिछले 25 सालों से मैंने बैचलर ऑफ रेडियोथेरेपी और पीजी रेडियो डायग्नोसिस
2: जी
3: और एमएचए किया हुआ है
2: जी।
3: मैंने सारी

0: ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो आप किस प्रकार से आपके कस्टमर को संभालते हैं या उनकी बातों को समझते हैं या क्या क्या समस्याएं आपको आती है वो भी बताएं।
1: सुनील, एक ग्रामीण एरिया है, एक रूरल एरिया है, जहाँ यहाँ पे लोग कुछ चीजें समझ नहीं पाते हैं, उनको हमको थोड़ा समझना पड़ता है। लोगों को जो बात बोलते हैं उनको सोच के उसका जवाब देकर उनको पर्टिकुलरली समझाना पड़ता है।
0: जी
1: उसके साथ में हम लोगों से जुड़ते हैं, दिन पे दिन उनको समझते हैं, उनको अच्छे से सेवाएं देने की कोशिश करते हैं।
0: जी तो इसमें कोई कोई समस्याएं भी आती है आपको?
1: हाँ, बहुत सारी समस्याएं आती है, डेली कुछ ना कुछ चलता रहता है। यहाँ पर लोगों का विश्वास जीतना ही सबसे बड़ी चीज है। लोगों
0: जी
1: को क्या है कि समझ नहीं आता है।
0: बिल्कुल रोहित जी, हम आज के जमाने में देखते हैं तो विश्वास की बहुत कमी रहती है, तो इस आज के जमाने में अगर कहीं विश्वास बन जाता है तो वास्तव में बहुत बड़ी बात है।
1: जी, हमारे साथ ऐसा ही होता है। घर में कुछ भी चीज चाहिए होती है तो हमसे आके कहते हैं।

0: तो या डिग्री कर रखी है जो भी है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि युवा व्यक्ति अगर उस फील्ड में जाना चाहे तो उनके लिए क्या क्या रास्ते हैं।
1: देखो क्या है ना कि मेडिकल फील्ड में हर बच्चा जाना चाहता है।
0: जी
1: हर बच्चा 12th में बायो लेने के बाद में सोचता है कि मैं मेरे को मेडिकल फील्ड में जाना है, पर अपने एरिया में ऐसा कोई गाइडेंस देने वाला नहीं मिलता है कि उसको कौन से फील्ड में जाना चाहिए। लोग बाग क्या करते हैं, डिप्लोमे तक सीमित रहते हैं, पैरामेडिकल में कि भाई हाँ रेडियो अपना DRT हो गया, MLT हो गया, इस टाइप से कोई कोर्स को सोच के दो चार कोर्स में उलझ के रह जाते हैं। अगर अपन आगे जाएंगे तो बहुत सारे कोर्स नजर आते हैं, जैसे मैंने करा हुआ है कि बैचलर ऑफ रेडियोथेरेपी,
0: जी
1: तो वैसे ही बहुत सारे कोर्स लगभग मेरे नॉलेज में 53 कोर्सेस हैं। तो 12th के बाद में इतने सारे कोर्स को बच्चे कर सकते हैं। यही कोर्स नहीं, बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छे पैकेज में आगे जा सकता है बच्चा। एक डिप्लोमा तक नहीं सोचना चाहिए हर बच्चे को, हर बच्चे को एक डिग्री तक सोचना चाहिए, जो कि एक टेक्निकल के साथ में एजुकेशनल तरीके से भी सोचा जा सकता है। तो हर माता पिता को मेरा एक ही कहना है कि भाई अपन हर अपने पड़ोसी की बात में आके कि भाई उसने ये कर रखा है, वो सरकारी नौकरी है, तो बच्चों को भी उसमें डाल दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर माता पिता को भी और हर बच्चों को भी वो नहीं करना चाहिए, सबकी सुनना चाहिए बच्चों को जितना हो सके उतना, और अपनी मर्जी में उस टाइप का कोर्स उसको करना चाहिए। और ऐसा कोर्स करना चाहिए कि भाई एक डिप्लोमा करके वही खत्म नहीं होना चाहिए, चलो जितना हो सके उतना आगे बढ़े, ऐसा काम करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। मैंने आज रेडियो थेरेपी का कोर्स कर रखा है, वो बहुत अच्छा स्कोप है, उसमें बहुत अच्छा स्कोप है, गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छा स्कोप है, साथ में प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट में जितना स्कोप है जितना पैसा आप प्राइवेट में कमा सकते हैं। और मेरा सभी बच्चों और सभी माता पिताओं से यही कहना है कि आप गवर्नमेंट जॉब का नहीं सोच के बच्चों को आगे बढ़ाने का सोचे तो बच्चा बहुत आगे तक जा सकता है।
0: जी बिल्कुल। तो युवा व्यक्ति होने के साथ साथ आप ये बताएं कि युवाओं के देश के प्रति क्या क्या दायित्व हो सकते हैं, आपके नजरिए में युवा की क्या क्या सोच हो सकती है या किस कार्य को कर सकते हैं ये भी बताएं, ताकि हमारे जो श्रोता इस भेंट वार्ता को सुनेंगे तो वह भी आपसे प्रेरणा ले सकें।
1: मेरा तो यही मानना है कि आप कोई से भी फील्ड में हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, या कोई मेडिकल फील्ड में हो, हमेशा अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने देश को बढ़ावा देने के लिए या फिर अपने जमीर को जिंदा रखने के लिए एक मनोभावनाएं रहनी चाहिए, साथ में दिल के अंदर अपने देश के लिए एक अच्छा सोचने वाला विचार मन में होना चाहिए। जैसे कि सबको पता है कि स्वच्छ भारत अभियान है, और अपने इंडिया में रेड क्रॉस सोसाइटी जैसे इस टाइप से चलते हैं, बहुत सारे मेडिकल फील्ड में रेड क्रॉस सोसाइटी हो गया। ये रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा।
0: जी
1: रेड क्रॉस सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है कि कहीं पे भी कोई, जैसे कोई वॉर चल रही है, इंटरनेशनल वॉर चल रही है, अपने देश में कोई आपदा आती है, अपने एरिया में कोई आपदा आती है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी सबसे आगे खड़ी होती है।
0: जी जी
1: इसी टाइप से हर युवा को किसी न किसी जो देश में अच्छा कार्य करे ऐसी सोसाइटी से जुड़ा होना चाहिए।
0: रोहित जी, हमारी भेंट वार्ता लगभग समाप्ति की ओर है। आपका मूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, मेरे को आपने इस लायक चुना है।
2: साथियों, अभी आपने सुनी रोहित नागर से बातचीत, जिसमें हमें उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं जो युवाओं के लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाली हैं।
3: तो दोस्तों, उन बातों को आपको याद रखना है और उन बातों को थोड़ा बहुत सही पर फॉलो ज़रूर करना है,
2: जी
3: क्योंकि जो चिराग जल रहे हैं युवा डायरी सेगमेंट है, आपको आपके साथ में युवा विचारों को शेयर करता है और उन विचारों को आगे स्प्रेड करने की कोशिश करता है। तो आशा करते हैं कि ये जो बातचीत है ये आप लोगों के लिए काम की सिद्ध होगी और आपके काम ज़रूर आएगी।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हमारे खेतों की जान है।
2: जी,
3: हमारे अन्न की नींव है, और वो क्या है?
2: हमारी मिट्टी,
3: यानी सोई। दोस्तों, स्वस्थ मिट्टी के बिना अच्छी फसल नहीं हो सकती। तो फिर अगर अच्छी फसल नहीं होगी तो अच्छा भोजन भी नहीं मिलेगा, और अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो हमारा स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना और भविष्य तक हमारी हेल्थ का अच्छा होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के कार्यक्रम का खास विषय है खेत की मिट्टी को स्वस्थ कैसे बनाएं।
3: पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में जान लेते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: स्वस्थ मिट्टी यानी कि अगर हमारी सॉइल हेल्दी है तो वो हमें अच्छी चीजें देगी, जो अच्छा लेता है वही अच्छा देता है। हमारे पास में अगर

0: वाली सॉइल होगी, उसमें अगर सूक्ष्म जीव यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, अरबों की संख्या में, आप देखिए कि जो सॉइल है
1: बिल्कुल
0: वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, कि सॉइल के अंदर इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, इतनी सारी जो जीव हैं वो
1: जी
0: रहेंगे, उनको वो पोषण भी देगी और हमें भी पोषण देगी।
1: बिल्कुल
0: लगातार रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से मिट्टी बंजर हो जाती है, जिससे हमें बिल्कुल बचना चाहिए, और जो मिट्टी का बंजर होना है और साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खत्म होना है, ये बिल्कुल एक जैसी बात है दोस्तों।
1: बिल्कुल। और स्वस्थ मिट्टी ज़्यादा पानी सोखती है और कम सूखती है, और फसलों को भी बीमारियों से बचाती रहती है ताकि वो फसलें जो स्वस्थ हो और मजबूत बने।
0: और मिट्टी को आसान मतलब स्वस्थ रखना बहुत ही आसान है दोस्तों। जैविक खाद का हम इस्तेमाल कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती की तरफ आप जाइए,
1: और
0: क्रॉप साइकिल जो है
1: बिल्कुल
0: उसको
1: बिल्कुल
0: यूज़ कीजिए। क्रॉप साइकिल का मतलब सीधा सा मतलब है कि आपको जो फसल है उनको उलट के पलट के उगाना है, यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बार आपने गेहूं बो दिया और जो गेहूं है उसकी जड़ों में जो है कि वो लेग्यूमिनस प्लांट नहीं है, अब उसके बाद में अगर आपको लेग्यूम वाला प्लांट उगाना है यानी आपने दालें उगा दी, तो आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर राइजोबियम जीवाणु जो है उसकी
1: बिल्कुल
0: मात्रा बढ़
1: बिल्कुल
0: जाएगी, और साथ ही साथ में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा वो भी अच्छी मात्रा में होगा। अब जब आपने लेग्यूम वाली फसल हटा दी तो आपकी जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी है, ह्यूमस की मात्रा अच्छी है, अब आप वापस से कोई ऐसी फसल लगा सकते हैं जो लेग्यूम नहीं है, यानी आप वापस से गेहूं बो सकते हैं, तो दोनों फसलों को फायदा होगा।
1: बिल्कुल। और जो किसान के मित्र हैं केंचुए, वो और सूक्ष्म जीव भी पालने चाहिए ताकि जो है मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो बना रहे।
0: बिल्कुल, ये जो केचुए होते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पता है आपको क्या
1: बिल्कुल
0: करते हैं कि नहीं है भैया, ये जब मिट्टी में रहते हैं इनको मिट्टी का फ्रेंड भी कहा जाता है,
1: जी
0: परम मित्र कहा जाता है। अभी ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी की पोरोसिटी को इंक्रीज करता है। अब पोरोसिटी का मतलब आप इस तरह से लगा लें कि भंगुरता जो होती है मिट्टी की उसको इंक्रीज करता है। अब उसको इंक्रीज करने की वजह से क्या क्या फायदे हो सकते हैं जरा सोचिए। सीधी सी बात है कि जो हमारे पौधे की जड़ें हैं वो ज़्यादा अंदर तक जाएंगी, ज़्यादा गहरा जाएंगी, जो न्यूट्रिशंस हैं उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगी, और ऑक्सीजन जो है जड़ों तक पहुंच सकेगा, जो हमारा पौधा है वो अच्छे से सांस ले सकेगा। तो सोचिए कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको फ्रेंड कहने का रीजन है,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: ये रीजन बहुत खास है। और इसके अलावा आप मल्चिंग कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी सॉइल है, आपकी मिट्टी है, आप उसको डायरेक्टली जो
1: बिल्कुल
0: आपके सनलाइट पड़ रही है या कोई भी चीज़ इफेक्ट कर रही है सॉइल को, उससे बचा सकते हैं। आप मल्चिंग किस तरह कर सकते हैं, सॉइल के ऊपर ही सॉइल से मल्च करना,
1: जी
0: यानी उसके ऊपर सॉइल डाल देना हल्की हल्की, या फिर आप ग्रास मल्चिंग भी कर सकते हैं। इससे आप जो सॉइल का टेम्परेचर है उसको भी इम्प्रूव्ड रख सकते हैं, मैनेज रख सकते हैं, अप्रोप्रिएट रख सकते हैं, और के साथ साथ जो पेड़ हैं, होज हैं, वो भी आप आस पास लगा सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: और साथ ही साथ सॉइल का टेस्ट टाइम टू टाइम कराना बहुत ज़रूरी
1: बिल्कुल
0: है,
1: और पानी का सही प्रबंधन भी बहुत आवश्यक होता है।
0: और पानी का सही प्रबंधन करने के लिए अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ बहुत ज़्यादा ड्राफ्ट है यानी कि बहुत ज़्यादा
1: जी
0: सूखा पड़
1: जी
0: रहा है, वहाँ पे हम क्या करें, ड्रिप सिस्टम का यूज़ कर
1: जी
0: लें, स्प्रिंकल सिस्टम का यूज़ कर लें, और ड्रेनेज की जो व्यवस्था है वो हम उसको इस तरह से रखें कि हमारी मिट्टी को कटाव ना हो।
1: बिल्कुल
0: और हमारी मिट्टी को अच्छा रखने के लिए हम कितने ही प्रयास कर सकते हैं, और बिल्कुल सिंपल है कि नहीं भैया।
1: जी बिल्कुल। तो युवा, मिट्टी को बचाना सिर्फ किसानों का ही काम नहीं है, हम सबका दायित्व है। आज से ही हम अपने घर के किचन वेस्ट को कंपोस्ट बनाना शुरू करेंगे और मिट्टी को बचाएंगे। याद रखिए दोस्तों, स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ फसल और स्वस्थ राष्ट्र।
0: तो दोस्तों, आप सभी को हमने बहुत सारी ये जो जानकारी है ये दे दी है, अब
1: जी
0: ये जो छोटे छोटे प्रयास हैं ये करना तो आपकी जिम्मेदारी है,
1: बिल्कुल
0: जानकारी देना हमारा काम है, हम भी हमारे स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और आपको अपने स्तर पर प्रयास करना है, क्योंकि ये जो सॉइल है, ये मिट्टी है, ये हमारी धरती माँ है, हमें ये सपोर्ट करती है, हमारा अर्थ का सपोर्ट सिस्टम है, हमें वो चीज़ें देती है जो हमारे खाने के लिए उपयोगी हैं, हमें सांस देती है। तो दोस्तों, इसकी जिम्मेदारी किसकी है,
1: हमारी है।
0: बिल्कुल, और बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत डीप है, आपको इसे समझना होगा, अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा, और मिट्टी की जो हेल्थ है उसका पूरा ध्यान रखना होगा, और जो मिट्टी फिर आपको जो उपजाऊ अच्छी फसल
1: बिल्कुल
0: देने
1: बिल्कुल
0: वाली है, जिसमें सारे न्यूट्रिशन मौजूद है, जिसमें कोई लेस न्यूट्रिशन नहीं है, वो सबका फायदा आपको पहुंचने वाला है, तो आपको खूब सारा ध्यान रखना है अपनी सॉइल का।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हैं सॉइल की। तो सॉइल को स्वस्थ रखना और स्वस्थ फसल उगाना और स्वस्थ स्पष्ट राष्ट्र बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब हम आपको लिए चलते हैं आज के अगले विषय की तरफ, यानी कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो अभूतपूर्व काम किए हैं, उनको आम आदमी तक पहुंचाए हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। आम आदमी को अच्छा इलाज, सस्ती दवा, सुरक्षित जीवन देने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हम आपको बता देते हैं।
1: बिल्कुल, आयुष्मान भारत योजना के तहत 12 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया गया है और साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है उसमें लाखों लोगों की जान बचाई है। और कोविड के काल में हम देखें तो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो कि 220 करोड़ से ज़्यादा डोज हमारे भारत में लगाई गई हैं।
0: और पीएम स्वनिधि उज्ज्वला और स्वास्थ्य भारत मिशन से भी स्वास्थ्य को बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिला है। तो दोस्तों, आप सभी सोचिए कि ये जो सुरक्षा है वो बहुत ज़रूरी थी और हमारी सरकार ने हमें दी भी है।
1: बिल्कुल, और यूँ कहते हैं कि व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अमूल्य धरोहर

है उसको अपनाएं, विकसित भारत को सपोर्ट करते रहें। यह था युवाणी का विशेष कार्यक्रम, जो कि मतलब विशेष विषय हम इसे कह सकते हैं, जिसे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हम आप सभी से यही चाहते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और जितने भी नियम बनाए गए हैं आप सभी के लिए उनका पालन करते रहें, और ये जो जितनी भी योजनाएं आज तक आई हैं उनका लाभ भी उठाते रहें। और इसी के साथ चलते हैं थोड़े से एंटरटेनमेंट की ओर, और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कार्यक्रम में फिर से स्वागत है दोस्तों आपका।
3: आपका युवाणी कार्यक्रम जो है वो आप अपने साथ में एक खास सेगमेंट लिए चलता है जिसका नाम है मारो राजस्थान। तो राजस्थान का इतिहास, वीरता और बलिदान की गाथाओं से भरा पड़ा ये जो सेगमेंट है वो होता है। आज हम बात करेंगे उन अदम्य महिलाओं की जिन्होंने न सिर्फ रणभूमि में तलवार चलाई बल्कि समाज को भी नई दिशा दी। राजस्थान की वीरांगनाएं और महिला शक्ति।
2: बिल्कुल, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भक्ति शक्ति में हर तरीके से अपना जज्बा रखता है और यहाँ की भूमि वास्तव में पूजने लायक है। यहाँ की भूमि ने न सिर्फ यूँ कहें कि युद्धों में अपना प्रदर्शन बेहतर किया है बल्कि किसी भी फील्ड में अगर अपन देखें तो हर फील्ड में राजस्थान का नाम रोशन हुआ है।
3: और इसी के साथ एक कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगी। धन्य हुई राजस्थान की माटी, धन्य हुआ इतिहास यहाँ, जहाँ नारियों ने दिखलाया अद्भुत शौर्य प्रकाश यहाँ। घूंघट की ओट में छिपती थी पर रण में चंडी बन जाती थी। मातृभूमि की रक्षा खाते हंसते हंसते कट जाती थी। पद्मिनी के जौहर की ज्वाला आज भी हमें जगाती है। राजपूत

0: तो दोस्तों, इस राजस्थानी गीत संगीत के बाद में कार्यक्रम में अब हम बात करेंगे उस्ताद योजना की, यानी USTTAD, अपकार्डिंग द स्किल एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। और जितने भी आर्टिस्ट हैं उन सभी को ये जो योजना है वो सपोर्ट करती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ये योजना है और केंद्र सरकार की इस योजना को इसका मुख्य है और उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कलाओं और शिल्प की समृद्ध विकास करना, उसको संरक्षित करना, कारीगरों को आधुनिक बाजारों तक जोड़ना, क्योंकि जो हमारे यहाँ की कला है ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उसको आधुनिक बाजारों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो जो कला है वो लुप्त होती चली जाएगी। क्योंकि ये जो कामगार हैं, ये जो आर्टिस्ट हैं, ये जो क्राफ्ट हैं, जो फोक को हमारे दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, उनकी कला दबी रहनी नहीं चाहिए, इसीलिए उस्ताद योजना बनाई गई है।
1: बिल्कुल, और इसका लक्ष्य यही है कि पारंपरिक दस्तकारों और जो मास्टर शिल्पकार के कौशल को उन्नत करना, ताकि उनके हुनर को युवा पीढ़ियों को सौंपा जा सके, और हुनर हाट का आयोजन करना, डिजाइन का प्रशिक्षण

0: आयु सीमा की अगर हम इसमें बात करें तो 14 से 35 वर्ष की आयु सीमा इसमें निर्धारित की गई है।
1: तो दोस्तों उस्ताद योजना देती है सभी आर्टिस्ट को हुनर हाट का आयोजन, यानी कि बेचने का जो शानदार अवसर होता है वो प्रदान किया जाता है, जो डिजाइनिंग होती है उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, और आयु सीमा तो आपको बता दी गई है ही। और अगर आप भी किसी भी तरह से इसमें योग्य हैं और पांचवी कक्षा अगर पास हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आपको इसमें आवेदन करने के लिए जाना होगा पीएम विकास पोर्टल पर, या फिर आपको जाना होगा पीएम स्कीम वेबसाइट पर। तो दोस्तों आप युवा हैं और जितने भी फोक कलाकार हैं, क्राफ्ट्स वाले हैं, आर्ट्स को ट्रेडिशनल रूप से आगे बढ़ाने वाले कलाकार हैं, वो सब जितने भी हैं अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने कला को आगे तक जोड़ना चाहते हैं, आधुनिक बाजारों तक ले जाना चाहते हैं, तो उस्ताद योजना से जुड़िए। और ये जानकारी हमने आपको दे दी है, आप भी आगे कन्वे कीजिए और इस जानकारी का पूरा लाभ उठाइए।
0: और दोस्तों अब चलते हैं अपने आज के इतिहास की ओर, क्या हुआ आज के दिन की भारत में इतिहास की घटनाएं। दोस्तों आज ही के दिन 1948 में भारत की बीच हवाई शुरू की, और आज के दिन 1936 में भारत था, और 2004 में भारत सहित दुनिया के कई देशों ने 122 वर्ष के बाद शुक्र नजारा था।
1: तो दोस्तों ये थी आज के इतिहास की कुछ घटनाएं। अब आप सभी से हम कहना चाहेंगे कि ये जो युवाणी कार्यक्रम है इसके जरिए हम अनेकों जानकारियां आपको देते हैं
0: जी।
1: और ये जो जानकारियां हैं ये आपके लिए उपयोगी भी हैं। आज आपने जाना राजस्थान की वीर महिलाओं के बारे में भी, और आपने ये भी जाना कि खेत की मिट्टी को कैसे स्वस्थ रखना है। विश्व महासागर दिवस के बारे में भी हमने आपको बताया कि किस तरह से उनको संवर्धित रखकर, सुरक्षित रखकर आप अपना कल भी बचा सकते हैं। और जो हमारी सरकार है उसके जो 12 साल के जो स्वास्थ्य और स्वच्छता के जो नियम हैं वो भी हमने आपसे साझा किए। तो देखिए सारी जानकारियाँ, सारी चर्चाएँ हम आपसे साझा कर चुके हैं, बस ज़रूरत है उनके एप्लीकेशन की, जागरूकता फैलाने की, वो आपका काम है। हमने आप तक जानकारी दे दी है और इस जानकारी को और ज़्यादा फैलाना आपकी जिम्मेदारी है। आप युवा हैं, आपकी ताकत है ये,
0: बिल्कुल
1: जिम्मेदारी भी। तो दोस्तों ये काम आपका है, आपको करना है और निभाना है, और युवाणी के साथ जो आपका संबंध है, जो आपका रिश्ता है, उसे हमेशा बरकरार कर रखना है, और 5 पर हर बार ट्यून करना है आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल, और सुनना है युवाणी कार्यक्रम, और जुड़े रहना है युवाओं के प्रयासों से। और
0: बिल्कुल अब घड़ी की सुइयों ने हमारे ओर इशारा कर दिया है कि अब वक्त हो गया है हमारे दोस्तों से विदा लेने का।
1: तो दोस्तों आपकी दोस्त रफिया खान को दीजिए इजाजत,
0: और आपके अपने रेडियो साथी को दीजिए कार्यक्रम समाप्ति की इजाजत।
1: नमस्कार।

युवा साथी अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। आइए अब आपको शेष रहे कार्यक्रमों से अवगत करा दें।

आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7 बजे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हम मुंबई से अनुप्रसारित करेंगे। और 7:10 पर सुनिएगा, केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष श्रृंखला, थीम रहेगी किसान सशक्तिकरण। सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के साथ बातचीत होगी। सात बजकर 7:45 पर किसान साथियों के लिए कार्यक्रम होगा कृषक चौपाल। इसमें चर्चा का विषय रहेगा खेत की मिट्टी को स्वस्थ कैसे रखें, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संदर्भ केंद्र सरकार के 12 साल। डॉक्टर सुरेश चंद वैष्णव से ली गई भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी, मानव जीवन के लिए महासागरों का महत्व। साथ ही किसान साथी सुनेंगे मौसम, बाजार भाव, समर्थन मूल्य और कल के कार्यक्रम की झलक।

रात 8 बजे श्रोता सुनेंगे विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष प्रसारण। अतिथि होंगे प्रज्ञा पालीवाल, पूर्व महानिदेशक आकाशवाणी, प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वर्तिका नंदा, वरिष्ठ लेखिका, और श्री प्रदीप सरदाना, वरिष्ठ पत्रकार। और 8:45 का समय रहेगा समाचार संध्या का, इसे हम दिल्ली से रिले करेंगे।

गैर फिल्मी गीत गजल और भजन पर आधारित कार्यक्रम सबरस आप सुनेंगे प्रतिदिन की तरह रात 9 बजे। ये थी शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

0: स्पेस वॉक ट्रेनिंग तथा स्पेशलाइज्ड स्पेस फ्लाइट ऑपरेशंस भी शामिल थे। इनके अदम्य साहस एवं असाधारण कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन नायक।
1: मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। बम्बई शेयर बाजार का समिति सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को

0: अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 180 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं हेमलता का गाया गीत। फिल्म है अखियों के झरोंकों से। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: Akashwani at 90.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी।

0: लाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, संगीत रवि का है और फिल्म है आँखें।

0: कभी कभी।
1: लता मंगेशकर की ही आवाज़ में अब सुनिए राजा मेहंदी अली खान का लिखा गीत, संगीत मदन मोहन का है और फिल्म है आपकी परछाइयाँ।

श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब आपको बता दें कार्यक्रम संबंधी सूचना। 7:45 पर हमारे किसान साथी सुनेंगे कृषक चौपाल। इसमें चर्चा का विषय रहेगा खेत की मिट्टी को स्वस्थ कैसे रखें, स्वास्थ्य और स्वच्छता, संदर्भ केंद्र सरकार के 12 साल। डॉक्टर सुरेश चंद्र वैष्णव से ली गई भेंटवार्ता होगी मानव जीवन के लिए महासागरों का।

महत्व। साथी किसान साथी सुनेंगे मौसम, बाजार भाव, समर्थन मूल्य और कल के कार्यक्रम की झलक। और 8 बजे सुनिएगा विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद, 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष प्रसारण। अतिथि प्रज्ञा पालीवाल, पूर्व महानिदेशक आकाशवाणी, प्रोफेसर अशोक टंडन वरिष्ठ पत्रकार और डॉक्टर वर्तिकानंदा वरिष्ठ लेखिका। साथ ही होंगे श्री प्रदीप सरदाना वरिष्ठ पत्रकार। समय याद रखिए, ये कार्यक्रम होगा रात 8 बजे। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज़ में इसे हमने लिया है फिल्म अभिमान से। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत सचिन देव बर्मन का है। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हितों की विकास यात्रा बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में अब तक 4 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया पूरी, 3 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। और आकाशवाणी की गौरवशाली सेवा के 90 वर्ष पूरे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 98% आबादी तक पहुंच।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हित की विकास यात्रा बताया है। आज श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना, किंतु इस विकास यात्रा के केंद्र में गरीब और वंचित वर्ग का कल्याण रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। श्री मोदी ने कहा कि गरीबों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने अहम भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि डबल इंजन सरकार प्रदेश में जनहित योजनाओं के जरिए सेवा कर रही है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विधायक दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंतिम व्यक्ति के विकास का काम सुनिश्चित किया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य में 5 जून से 21 जून तक 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह के प्रथम चरण में सशस्त्र बलों और सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित कर रही हैं। राष्ट्रपति भवन में हो रहे इस समारोह में अदम्य साहस और समर्पण का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए जा रहे हैं। समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करने जा रहा है। ये बैठक कल से 13 जून तक इंदौर में होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की ये बैठक भारत की अध्यक्षता में हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि इसमें मुख्य रूप से किसानों की आमदनी, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन आवासों में नल से जल, रसोई गैस,

0: और शौचालय की आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। उन्होंने इसे लाखों गरीब परिवारों के लिए बड़ा बदलाव बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 12 साल में देश में समावेशी विकास को नई गति मिली है। इंडिया गठबंधन की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। इसमें विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले बैठक में शामिल हुईं। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आज शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत करीब 125 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में 3,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। वहीं कई क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं। जयपुर के संभागीय आयुक्त वी सरवन कुमार के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं जल्द बहाल होने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया की समय सीमा आज समाप्त हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 3 प्रत्याशियों ने 9 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं। नाम वापसी की आखिरी तारीख 11 जून है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रत्याशियों ने आज अपने नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण के समक्ष दाखिल किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में श्री पूनिया ने उन पर भरोसा करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया।
1: लोकतंत्र के उच्च सदन में जाने का अवसर मिलेगा। जितनी भी बार पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी, पार्टी ने मुझे भरोसा देके युवा मोर्चे के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते उस कालखंड में जो अवसर दिया वो पार्टी ने दिया, जिससे मुझे प्रतिष्ठा मिली, नाम मिला और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते एक बार विधायक के नाते पार्टी ने मुझे भरपूर अवसर दिया।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि इस साल 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए नंबरों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की विंडो 2 से 7 जून तक पूरी तरह कार्यरत थी। इस दौरान 1,60,000 से अधिक उम्मीदवारों ने 3,08,000 से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं के लिए आवेदन किया। CBSE ने मीडिया पर इस पोर्टल के काम नहीं करने को लेकर चल रही कुछ खबरों पर भी स्थिति स्पष्ट की है। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों का भ्रम दूर करते हुए बताया कि जिन छात्रों के स्क्रीन पर रोल नंबर नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है, इसका कारण ये है कि उन्होंने इस प्रक्रिया के पहले चरण यानी आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए आवेदन नहीं किया था। बोर्ड ने कहा कि नियम के मुताबिक केवल वही छात्र अगले चरण के लिए पात्र होते हैं जिन्होंने पहले चरण में अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई किया था। राज्य में सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 28 जून तक रहेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ग्रीष्मावकाश की अवधि बढ़ाकर 43 दिन कर दी गई है। पहले ये 17 मई से 20 जून तक 35 दिनों की थी। शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव आलोक जैन ने आज इस बारे में एक आदेश जारी किया। इसके अनुसार संस्था प्रधान की ओर से एक अवकाश के स्थान पर अब 2 दिन की छुट्टी दी जा सकेगी। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज के ही दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। पेश है न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालिहा गाजी की रिपोर्ट।
2: 8 जून का दिन देश की सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। साल

0: 556 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्रों के माध्यम से 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए दुनिया के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
1: राज्य के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियों में आज कमी देखने को मिली और मौसम का मिजाज मिला जुला रहा। एक ओर जहां श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं पुष्कर में करीब 5 सेंटीमीटर बरसात हुई। इसके अलावा बीते 24 घंटों में अजमेर, बूंदी, कोटा, टोंक, झुंझुनू और भरतपुर में पानी बरसा। जैसलमेर में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज से 11 जून तक आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार जताए हैं। इस दौरान पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान में पारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का उछाल आने की संभावना है। 11 जून से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आंधी बारिश की गतिविधियां एक बार फिर जोर पकड़ सकती हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में काउंटडाउन कार्यक्रम जारी हैं। इसके तहत लोगों में स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए रोजाना सामूहिक योग और प्राणायाम सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में युवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने लोगों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है।
2: जीवन के अंदर अपने आप को फिट रखना, ये खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम खुद स्वस्थ रखते हैं, शरीर से और मन से मजबूत होते हैं, तो परिवार मजबूत होता है, उससे समाज और राष्ट्र मजबूत होता है। चाहे हम पैदल चलें, चाहे हम सीढ़ियां चढ़ें, चाहे हम नियमित रूप से खाना खाएं, ऑयल कम करें अपने खाने के अंदर, ये सारी चीजें एक फिट इंडिया बनाता है, एक मजबूत भारत बनाता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हितों की विकास यात्रा बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में अब तक 4 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया पूरी, 3 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। और आकाशवाणी की गौरवशाली सेवा के 90 वर्ष पूरे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 98% आबादी तक पहुंच। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की गईं। 25 मई से शुरू हुआ ये अभियान 5 जून को पर्यावरण दिवस तक चलाया गया। इस दौरान जल संरचनाओं की साफ सफाई, जल संरक्षण के कार्य, मरम्मत और पुनरुद्धार संबंधी कामों के साथ ही श्रमदान और जागरूकता गतिविधियां रखी गईं। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने भी पौधरोपण कर पक्षियों के लिए परिंडे बांधे। उन्होंने जाखम और भंवर सेमला बांध का निरीक्षण कर जल संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर मीडिया राउंड टेबल आयोजित की गई। जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों ने परिंडे बांधे और पौधरोपण किया। जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से मीडिया एक्सपोजर विजिट का भी आयोजन रखा गया। अभियान का समापन समारोह पूर्व मंत्री और निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी की उपस्थिति में रखा गया। माही बजाज सागर बांध से पीपल खूट अपर हाई लेवल बहुउद्देशीय कैनाल परियोजना का निर्माण कार्य इन दिनों अंतिम चरण में है। 1565 करोड़ रुपए की लागत की इस अनूठी परियोजना में बिना भूमि अधिग्रहित किए पाइपलाइन डाली गई है। इसके जरिए जमीन से 3 से 4 मीटर की गहराई पर पानी बहेगा और ऊपर किसान खेती करेंगे। परियोजना के पूरा होने से प्रतापगढ़ सहित उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिलों के किसान लाभान्वित। प्रभावित होंगे। लक्ष्य हासिल होने से अगली रबी फसल के लिए 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई

0: सुविधा मिलेगी। वहीं जल जीवन मिशन के लिए जाखम बांध तक पानी पहुंचने से प्रतापगढ़ शहर और उसके 554 गांवों के अलावा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के 1899 गांवों को पानी मिलेगा। जिले के करजू और रावतपुरा गांव में इन दिनों किसानों ने आधुनिक मल्चिंग तकनीक अपनाकर नकदी फसलों की खेती शुरू की है। इस तकनीक से टमाटर और मिर्च सहित अन्य नकदी फसलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। इससे किसानों को गर्मी के मौसम में बोई जा रही फसलों से अच्छी आमदनी की उम्मीद है। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने बीते दिनों बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया। इस साल अब तक जिले में ये सातवीं बड़ी कार्रवाई है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि इससे पहले भी एक अन्य तस्कर की करीब 3.25 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां फ्रीज की जा चुकी हैं। पुलिस ने अभियान के तहत नौगावा के देवलदी गांव स्थित चारागाह से भी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए। जिला कलेक्टर ने बीते दिनों ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और जल संरक्षण तथा पौधरोपण कार्यों का निरीक्षण किया। इधर जिला स्तरीय बैंकिंग समीक्षा समिति की आयोजित हुई बैठक में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के उन्होंने निर्देश दिए। सांसद सीपी जोशी ने दिशा समिति की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी मौजूद रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बार अधिक मास के चलते जिले भर में धार्मिक गतिविधियां चरम पर रहीं। मंदिरों और आश्रमों में अनुष्ठान हुए। अक्षय तृतीया पर धार्मिक स्नान और दान पुण्य किए गए। आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ में आखातीज के अबुझ सावे पर संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। वहीं मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद उल अजहा का त्यौहार पारंपरिक रूप से मनाया। ईद की नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की गई। जिले में बीते दिनों मौसम ने कई रंग दिखाए। कभी आंधी तो कभी बारिश की गतिविधियों ने जिलेवासियों को परेशान किया। वहीं बढ़ते तापमान और तपन ने भी लोगों को व्याकुल किए रखा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आई बारिश ने गर्मी का असर कम किया। इसके साथ ही प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लारला 12 साल रा कामकाज न गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो। देश माए प्रधानमंत्री आवास योजना रा तहत हाल ताई 4 करोड़ बत्ता मकान बनाई चिया। प्रदेश हूँ राज्यसभा री 3 सीटा माथ चुनाव सारू पर्चा दाखिल करन रो काम पूरो भयो। 3 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना। और आकाशवाणी री गौरवशाली सेवा रा 90 साल पूरा भया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रा आदर्श सागे 98% आबादी ताई पहुंच। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लारला 12 साल रा कामकाज ने गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो है। श्री मोदी कहो कि इन दौरान देश कई बदलावा रो गवाह बन्यो। प्रधानमंत्री कहो कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत सरीखा हर जतन रो मकसद जनता सारू पूरा मानु जीवनु तय करनो है। श्री मोदी कहो कि गरीब तबका री जनता री जिंदगी बेहतर बनावण माए प्रौद्योगिकी की खास काम की नो है।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि वानी डबल इंजन सरकार प्रदेश माए जनता रा भलारी योजनावां रे जरिए सेवा कर रही है।

0: आज विधानसभा परिसर में राखी जी विधायक दल री मीटिंग में बोल रहा हा। श्री शर्मा कहो के प्रदेश में आखिरी छोर ताई रा हर एक जनारो विकास तय करियो जा रियो है। ध्यान जोग है कि राज्य में 5-21 जून ताई 12 साल विश्वास के विकास के और जन कल्याण के अभियान चलायो जा रियो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह रा पहला दौर में सशस्त्र बलों रा और सुरक्षा कर्मचारियों रो मान कर रही है। जबरदस्त हिम्मत और समर्पण रो दर्शाव करन वाला जवाना ने ये कार्यक्रम में वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण नवाजा जा रहा है। जलसा में उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई हस्तियां शामिल है। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स रा सदस्य देशां रा कृषि मंत्रियां री मीटिंग काल मध्य प्रदेश रा इंदौर माय शुरू फैला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल माय खबरनवीसां सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वे कहो कि 13 जून ताई फेवन वाली मीटिंग री सदारत भारत करेला। श्री चौहान कहो कि मीटिंग माय किसाना री आमदनी काम धंधा खेतीबाड़ी सारू कर्ज और बाजार ताई पहुंच बधावन राज्य तंत्र बारा माय चर्चा करी जावेला।
1: खाद्य सुरक्षा पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: देश में प्रधानमंत्री आवास योजना रा तहत हाल ताई 4 करोड़ बत्ता मकान बनाई चिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आ जानकारी दीनी। वे बतायो के आम मकाना माय नलों पानी रसोई गैस और शौचालय रा बुनियादी सुविधा मुहैया कराई चिया है। वे इनने गरीब परिवारों सारू मोटा बदलाव बतायो। केंद्रीय मंत्री कहो के लाडला 12 साल माय देश माय सगला रो विकास और तेजी उमफियो है। विपक्षी पार्टियां रा इंडिया गठबंधन री आज नई दिल्ली माय मीटिंग हुई। इनमाय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस रा आला नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी रा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस री अध्यक्ष ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रा नेता उमर अब्दुल्ला और NCP शरद पवार गुट री सुप्रिया सुले शामिल फिया। जयपुर विकास प्राधिकरण री ओरू आज जयपुर शहर माय गैर कानूनी कब्जा हटावन री मोटी कार्रवाई करी जी। नंदपुरी अंडरपास हूँ रेलवे लेन रे बराबर री सड़क ने 80 फीट चौड़ी करण सारू चलाई जिया। ई अभियान रा तहत 125 बत्ता गैर कानूनी तौर हूँ करी जिया बनाई चुनाई रा काम हटाई जिया। ई दौरान एहतियातन 3000 बत्ता पुलिस वाला तैनात करी जिया, जबकि कई हलका माय मोबाइल और इंटरनेट जुड़ी सेवाएं बंद रखी जी। जयपुर रा संभागीय आयुक्त वी सरवन कुमार का नियम जारी हुकम रे मुजब बेगोई आ हलका माय इंटरनेट पाछो चालन री संभावना है। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव सारू प्रदेश 3 सीटा माथे चुनाव बाबत पर्चा दाखिल करन री मियाद आज पूरी फेगी। राज्य रा मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन बतायो कि प्रदेश 3 उम्मीदवार 9 पर्चा दाखिल कीना। भारतीय जनता पार्टी री ओरू डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका गुर्जर आज नाम पाना, रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण सामी पेश कीना। ई मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और जनता रा और कई नुमाइंदा मौजूद हा। खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका श्री पूनिया वा माथे भरोसो करण सारू भाजपा रा केंद्रीय नेतृत्व रो आभार जतायो।
2: लोकतंत्र के उच्च सदन में जाने का अवसर मिलेगा। जितनी भी बार पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी, पार्टी ने मुझे भरोसा दे के युवा मोर्चे के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते उस कालखंड में जो अवसर दिया वो पार्टी ने दिया, जिससे मुझे प्रतिष्ठा मिली, नाम मिला। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते, एक बार विधायक के नाते, पार्टी ने मुझे भरपूर अवसर दिया।
0: कांग्रेस पार्टी री ओरू नीरज डांगी पहले पर्चो दाखिल कर चुका है। नाम 11 जून

0: ताई पाछा लिया जा सके है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ई साल 12वीं कक्षा री परीक्षा सारू नंबरन रो सत्यापन करण अर कॉपियां ओजू जंचावण सारू अर्जी देवण री विंडो 2-7 जून ताई लगातार चालती रहवण रो दावो कीनो है। बोर्ड रे मुजब इन दौरान 1,60,000 विद्यार्थी 3,08,000 कॉपियां सारू अर्जी दीनी। CBSE भ्रम दूर करता थका बतायो कि रोल नंबर नॉट फाउंड री जानकारी रो कारण ई प्रक्रिया रा पहला दौर माए कॉपी री फोटोकॉपी लेवण री अर्जी नी देवणु हो। बोर्ड रे मुजब नियमा रे मुताबिक कॉपी री स्कैन कॉपी हासिल करण सारू अर्जी देवण वालाई अगला दौर सारू पात्र वे है। राज्य री सरकारी स्कूलां माए गर्मी री छुट्टियां 28 जून ताई रहवेला। शिक्षा विभाग रा शासन उप सचिव आलोक जैन री ओर जारी हुकम रे मुजब गर्मी री छुट्टियां 17 मई 20 जून ताई 35 दिन री करी जी ही, जो व्यवधार 43 दिन री कर दी री जी है। हुकम रे मुजब संस्था प्रधान री ओर एक री बजाय अब 2 दिन री छुट्टी दी जा सकेला। आज आकाशवाणी रा गौरवशाली 90 साल पूरा फेंक्या। साल 1936 माए आज ही रा दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने ऑल इंडिया रेडियो नाम दियो चियो हो। पेश है समाचार कक्ष डॉक्टर सालेहा गाजी री रपट।
1: साल 1956 माए इनरो आकाशवाणी नाम दियो जियो। आज देश भर माए आकाशवाणी रा 551वां केंद्रा रे जरिए 23 भाषावा और 146 बोलियां माए कार्यक्रम प्रसारित करिया जावे है, जो देश री 98% आबादी ताई पूगे है। इस आगे ही आकाशवाणी रो विदेश सेवा विभाग दुनिया रा 100 देशा माए भारत री आवाज पुगारियो है। आकाशवाणी रो समाचार सेवा प्रभाग बहुजन हिताए बहुजन सुखाए रा आदर्श सागे रेडिया प्रसारण रा सब ऊंचा मानकारी पालना करता थका 2400 घंटा सगली भाषावा और बोलिया माए समाचार और समाचारों जुड़िया कार्यक्रम प्रसारित करे है।
0: अरब मौसम राज्य रो कई हल्का माए आंधी बारिश री हलचल आज थोड़ी कम रही। इन कारण श्रीगंगानगर माए पारो 44 डिग्री सेल्सियस ताई पूग गयो। जैसलमेर माए जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। दूजी कानी अजमेर कन्ने पुष्कर माए करीब 5 सेंटीमीटर बरसात हुई। लाडला 24 घंटा माए अजमेर बूंदी कोटा टोंक झुंझुनू और भरतपुर माए में बरसियो। मौसम विभाग 11 जून ताई आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए कमी रा आसार जताया है। इस दौरान उगनी और उत्तराद उगनी हलकां रे अलावा मौसम सुखो रेवन री संभावना है।

संपूर्ण रूप हो तीन उम्मीदवार नाम पाना दाखिल किन्ना और आकाशवाणी री गौरवशाली सेवा रा 90 साल पूरा भया बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रा आदर्श सागर 98% आबादी ताई पहुंच। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।

0: दीपिका स्पिन 4000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। आइए सुनते हैं मुंबई से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जयमाला। सभी फौजी साथियों का और सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है, उसमें इन्फ्लेशन कितना है, उसका डिमांड सप्लाई सब कुछ देखा जाता था। आज भी वही फैक्टर जरूर है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि एमएसपी जो होगा वो मिनिमम 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। और 2018 से पहले आप देख लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग बताते थे कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकता
1: जी,
0: क्योंकि पूरा बोझ सरकार के ऊपर आएगा, सरकार को खरीदना पड़ेगा। लेकिन 2018 में जब लिया, आज देख लीजिए पॉसिबल है, सबके सामने 8 साल हो गया, सरकार हर साल मिनिमम 50% एंश्योर करके एमएसपी डिक्लेयर कर रही है। शुरुआत में जरूर जो मार्केट प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा एमएसपी से नीचे बिका, लेकिन आज जो देखिएगा ये खरीफ और रबी सीजन गया है, इसमें जो एमएसपी से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले तो 30% तक शुरुआत में थी, क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, फार्मर को बेटर प्राइस मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ कुछ चीजों में एमएसपी नहीं मिल रहा है, ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है। और मस्टर्ड का देख लीजिए, अभी मस्टर्ड का सीजन है, एमएसपी से ऊपर है। चना का देख लीजिए, चना ऊपर है। व्हीट का तो सरकार खुद ही

थे कृषि कानून जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है, फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर

0: सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है एक कोलैबोरेटिव वे में, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरुआत होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
1: सुनील जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं, अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं। तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको इस, और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
0: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई, आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है? ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
1: जी सुनी, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, तो ऐसे में एक किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से हुए तो करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने 25 दिसंबर तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी
0: जी बिल्कुल, एंड मिस्टर आनंद कमिंग टू यू, यू नो द

0: पैसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए, यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से सारी चीजें हो रही है। मेगा फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो आप कुछ ऐसे
0: चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे जैसे मान के चलिए 100 जिले थे तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहां पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है इन जिलों में एक्स बटा 8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सिक्योरिटी रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है ये सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में। तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है। चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है कंप्रेस बायोगैस में और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टर्बाइन फ्यूल के माध्यम से उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं और ये तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टर्बाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही हैं। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए, ये फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है टेक्नोलॉजी ड्रिवन है वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है, पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए। हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं इस मंत्रालय के के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहां पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा

0: इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओस होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
0: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओस को, जो चाहे वो कर सकते हैं। एज ए बिजनेस एंटिटी उनको बिजनेस बढ़ाना है, और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है। किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
0: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं। और अपने फार्मर को कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं, तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
1: So that collective power is there. And Mr. Mishra, we would also like your views, and if you could tell us that how government is really empowering the farmers by protecting them from increase in the prices of fertilizers. So this is a very important input, the fertilizers. So this aspect, how it has been taken care of at the policy level in these 12 years, can you tell us about this empowerment aspect for farmers?
0: See, fertilizer in India is considered the cheapest in the world when you talk about urea particularly. Why? Because government has not raised the price for past two decades or so, and urea currently is available at 267 rupees per bag of 45 kg. Last international price at which India bought urea was $954 per ton. So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9,500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range.
1: Right.
0: And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent,
1: okay,
0: so that the end product also becomes cheaper for the consumers, and our inflation is also remain under control.
1: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
2: Thank you.
3: Thank you very much.
0: Thank you very much.
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani.
5: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और

0: वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभुदत्त मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: ये आकाशवाणी
2: श्रोता भी सुन रहे थे। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष श्रृंखला थीम किसान सशक्तिकरण। सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के साथ बातचीत। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। 7:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं किसान साथियों के लिए कार्यक्रम कृषक चौपाल।

कृषक चौपाल कार्यक्रम सुन वाला सभी भाई बहनों के तई आपका साथी मुकेश कुमार भील को गणो गणो राम राम। साथियों, आज चर्चा का विषय में अपन बात करांगा खेत की मिट्टी को स्वस्थ कशा राख सका। तो साथियों, अपना खेत की मिट्टी स्वस्थ और निरोगी कशा राखा पर अपना ताई विचार करवा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन अपना खेत की मिट्टी की उर्वरता क्षमता कम होती जा रही है। इको असर अपने ताई देखभाल में आ रही है, क्योंकि साथियों खेत मिट्टी कठोर होती जा रही है, इससे उत्पादन में उत्पादन कम हो रही है। ज़्यादा उत्पादन लेवा के लिए रासायनिक उर्वरकों को ज़्यादा मात्रा में डालबा से अपना खेत की मिट्टी कठोर अस्वस्थ होती जा रही है। अगर अपने ताई मिट्टी के ताई स्वस्थ रखनो है तो अपने ताई देसी खाद गोबर की खाद ही डालनी चाहिए। केचुआ खाद से अपना खेत की मिट्टी को स्वस्थ अच्छो बने रहेगो, साथ ही साथ अपने ताई फसल को बदल बदल के बुआई करनी चाहिए, जिससे फसल में लागबा वाला कीट है जो नहीं रह पाओगा। और साथियों, आबार मिट्टी जांच करवाबा के बढ़िया समय है, इसे मिट्टी में पोषक तत्व की कमी या अधिकता को पतो लाग जाओगो और अपना जो मिट्टी में कई पोषक तत्व की कमी है इको पतो लाग जाओगो। और साथ ही अपने तई हरी खाद है माघ तई जिन्हें अपन ढेचा बोला बनानी चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी के लिए खेत के लिए उर्वरक क्षमता बढ़ावे छे। तो साथियों, और आज चर्चा में अपन बात करांगा विश्व महासागर दिवस। तो साथियों, आज 8 जून को विश्व महासागर दिवस भी है। इसकी शुरुआत 1992 में रियो डी जेनेरियो से हुई थी। साथियों, इस दिवस के तई मनाबा का मुख्य कारण विश्व में महासागरों का महत्व उनकी वजह से आबा वाली चुनौतियों के

बारे में जागरूकता पैदा करनी है। तो साथियों, इस दिवस के ताई मनावा का उद्देश्य लोगों का जीवन में महासागरों का महत्व का बारे में बताना छे। इसके अलावा महासागर से जुड़िया पहलू जैसा खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन, समुद्री संतुलन, अंधाधुन उपयोग, जलवायु परिवर्तन जैसे बिंदुओं पर प्रकाश डाल बोचे। साथियों, बातचीत और करांगा। आज अपन एक बहुत ही बढ़िया जानकारी लेके आया है, मानव जीवन के लिए महासागरों का महत्व। इन विषय पर जानकारी दे रहा डॉक्टर सुरेश चंद वैष्णव, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग से। तो सुना यह जानकारी और लेवाएं को पूरा लाभ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: चौपाल कार्यक्रम में आज अपन बात करांगा मानव जीवन में महासागरों का महत्व और इस विषय पे बातचीत करवा के लिए अपने साथ है डॉक्टर सुरेश चंद वैष्णव एसोसिएट प्रोफेसर। बातचीत करवा के लिए प्रोफेसर साहब हैं तो उनका स्वागत करते हैं। राम राम साहब कार्यक्रम में आपको। सर आज अपने बात करवा के लिए जो विषय है वो है मानव जीवन में महासागरों। तो मानव जीवन में महासागर कशा उपयोगी है?
3: देखिए मानव जीवन में महासागरों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि आप वर्षा को ले लीजिए, अगर महासागर से जल प्राप्त नहीं हो तो वर्षा नहीं। महासागरों का जो जल है वो जल वाष्प, गर्मी के कारण जल वाष्प में बदल करके ऊपर उठता है और आकाश में ऊपर उठ करके जो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के कारण वापस वो हवा के साथ आगे नहीं बढ़ करके वर्षा के रूप में नीचे गिरता है, जिससे कि हमें पेयजल प्राप्त होता है, पीने के लिए जल प्राप्त होता है, नदियों में जल प्राप्त होता है, तालाबों में जाता है और जो भूमिगत जो जल है जिसको अपन सिंचाई के रूप में काम में लेते हैं ट्यूबवेल लगा करके किसान भाई, उनके लिए भी समुद्र से ही जल प्राप्त होता है। नदियों में बांध बनाए जाते हैं तो वो वर्षा जल समुद्र से ही प्राप्त होता है, जिससे किसान भाई नहरों के द्वारा सिंचाई करते हैं और फसल का अच्छा उत्पादन लेते हैं।
2: जी जी जी, जैसे अपन बात कर रहे थे साहब कि भाई बारिश और मानसून, तो ये मानसून में कैसा उपयोगी है महासागर?
3: देखिए मानसून जैसे उठता है या उत्पन्न होता है तो वो बिना महासागरों के मानसून का बनना या उठना या बारिश होना संभव नहीं है।
2: जी
3: इसमें महत्वपूर्ण योगदान महासागरों का है क्योंकि महासागरी जल वाष्प बनकर के गर्मी के कारण वाष्प बनकर के ऊपर उठता है और जो धरातल है यानी कि जो जमीन है महाद्वीपीय क्षेत्र वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण मास और महासागरों में तापमान कम रहता है तो उधर से जब हवाएं चलती है तो स्थल भाग की ओर चलती है यानी जमीन की ओर चलती तो वो आगे बढ़ती है और नमी धारण कर लेती है तो वो ऊपर उठ के पहाड़ों से टकरा करके ऊपर उठती है आकाश में और जैसे ही वो ऊपर उठ के ठंडी होती है तो उससे बारिश होती है। तो जहाँ महासागर पास में है वहाँ वर्षा ज्यादा होती है और जैसे जैसे अपन महासागरों से दूर जाते हैं तो वर्षा में भी कमी आने लगती है।
2: जी जी जी, जैसे कि अपन बात करा महासागर ऑक्सीजन भी प्रदान करे तो ये की प्रकार करे सर?
3: देखिए पूरी जितनी भी अपन ऑक्सीजन अभी ले रहे हैं मानव जीवन में या प्राणी जगत जितने भी है जीव जंतु
2: जी,
3: इसका 50% ऑक्सीजन महासागरों से प्राप्त होती है। महासागरों में जैसे लीचन लाइकन जो वनस्पति रहती है उससे प्राप्त होती है और एक्चुअल में तो जो ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है वो जल ही है क्योंकि जैसे आप देखते हो कि H2O की दो कण तो हाइड्रोजन के एक कण ऑक्सीजन का मिलकर के जल बनाते हैं
2: जी।
3: तो महासागरों से जो ऑक्सीजन मिलती है वो बड़ी महत्वपूर्ण है
2: जी जी। और जैसा भोजन और पोषण

0: कशा प्राप्त हुए?
1: देखिए, भोजन और पोषण के रूप में देखा जाए तो विश्व का 20% जो प्रोटीन का अंश है
0: जी,
1: वो महासागरों से ही प्राप्त होता है, जैसे मछली पकड़ करके या समुद्री जीव जंतुओं का आखेट करके यानी शिकार करके और उसको भोजन के रूप में काम में लेते हैं विभिन्न रूपों में
0: जी,
1: और विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाई जाती है
0: जी।
1: तो इस तरह से पोषण के रूप में और भोजन के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सारी ऐसी वनस्पति भी है जिनको भी अपन भोजन के रूप में काम में लेते हैं, लेकिन समुद्री जीव उनका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और 20% विश्व के खाद्यान्न की पूर्ति लगभग समुद्री जीवों से होती है
0: जी। जी, अपन बात करें साहब, महासागरों से व्यापार किस प्रकार से प्राप्त हो सके?
1: देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो वैश्विक स्तर का व्यापार यानी कि एक देश से दूसरे देश का जो व्यापार हो रहा है उसका 80% व्यापार समुद्र के द्वारा होता है। उसका मुख्य कारण ये है कि समुद्री मार्ग एक तो सस्ते पड़ते हैं और काफी मात्रा में एक देश से दूसरे देश में माल को लाया ले जाया जा सकता है और प्रदूषण कम करते हैं, क्योंकि महासागरों में प्रदूषण लगभग नगण्य होता है, एक जहाज चलता है, एक इंजन चलता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महासागरों मार्गों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है।
0: साथ बात करें अपन औषधियां की, तो औषधियां कैसा प्राप्त करें और कहीं कहीं औषधियां प्राप्त हो महासागर?
1: महासागरों से विभिन्न प्रकार की औषधियां जैसे जड़ी बूटी के रूप में है और क्या नाम से रासायनिक की जो पदार्थ है
0: जी,
1: रासायनिक खनिज है वो जो औषधि के रूप में काम आते हैं
0: जी,
1: वो मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं।
0: और जैसा अपन बात करा कि रोजगार जे और आजीविका कैसा प्रदान करे छे महासागर?
1: देखिए, रोजगार के रूप में महासागरों का अच्छा महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक दूसरे देश से व्यापार हो रहा है तो उसमें भी रोजगार मिलता है
0: जी,
1: और मछली पालन में भी बंदरगाहों का निर्माण करके पोत बना करके रोजगार उपलब्ध हो सकता है, पर्यटन के रूप में महासागरों को डेवलप करके रोजगार प्रदान किया जा सकता है।
0: और सर बात करें अपन कि भाई कृषि में किस प्रकार महासागर उपयोगी है?
1: बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि कृषि में महासागर कैसे उपयोगी है। तो देखिए, कृषि के अंतर्गत जैसे कि सिंचाई के लिए हमें जल चाहिए तो महासागरों से जो मानसून उठता है उसके बिना बारिश संभव नहीं है, तो महासागरों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बारिश का और खेती किसानी का बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, नजदीकी संबंध है।
0: अपन बात करा कि भाई पर्यटन और मनोरंजन का क्षेत्र में महासागर किस प्रकार उपयोगी है?
1: हाँ, देखिए, मनोरंजन के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में महासागर में जैसे नौका वहन करना, आखेट करना
0: जी
1: महत्वपूर्ण उपयोगी है
0: जी,
1: और रिसर्च के क्षेत्र में भी जैसे किसी प्रकार का अनुसंधान करना उसमें भी महासागरों का महत्व है, क्योंकि विशाल मात्रा में जल राशि रहती है
0: जी, जी।
1: तो अपन दूर दूर तक उसमें यात्राएं कर सकते हैं, आखेट कर सकते हैं, मनोरंजन के तौर पे या पर्यटन के तौर पे भ्रमण कर सकते हैं मोटर बोट्स के द्वारा।
0: बिल्कुल,
1: समुद्री पोत को विकसित करके अपन उसको पर्यटन के रूप में भी विकसित कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो कन्याकुमारी का जो तट है
0: जी,
1: वो पर्यटन के रूप में एक्चुअल में विकसित किया गया है।
0: बिल्कुल, अंत में चालता चालता कार्यक्रम सुनबा जो श्रोता है और किसान साथी है वहाँ का सुझाव का माध्यम से क्या कहना चाहेंगे?
1: सुझाव देखिए यही है कि महासागरों का जो आजकल वर्तमान में लोग प्रदूषित कर रहे हैं
0: जी,
1: तो उस प्रदूषण को बचाने के लिए एक ही कि प्लास्टिक का कम से कम अपने किसान भाई उपयोग करें,
0: बिल्कुल
1: कागज या कपड़े के थैले का उपयोग करें, जिससे कि जल प्रदूषित नहीं हो, महासागर प्रदूषित नहीं हो, नदियां प्रदूषित नहीं हो
0: जी,
1: यही कहना चाहता हूं मैं, ये हमारा पर्यावरण बचा रहे।
0: बिल्कुल सर, डॉक्टर सुरेश चंद वैष्णव एसोसिएट प्रोफेसर वर्डिया विश्व भारती पीजी कॉलेज छबड़ा से आपने वहाँ का जो श्रोता है और किसान साथी है वहाँ का तई बहुत अच्छी जानकारी दी महासागर मानव जीवन में महासागरों का महत्व के बारे में, और इससे वहाँ का जो श्रोता है और किसान भाई है जरूर लाभ लेगा

0: और कार्यक्रम में आवा के लिए और अपनो महत्वपूर्ण समय निकालवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स

0: जिससे कि जल प्रदूषित नहीं हो, महासागर प्रदूषित नहीं हो, नदियां प्रदूषित नहीं हो।
1: जी
0: यही कहना चाहता हूं मैं, ये हमारा पर्यावरण बचा रहे।
1: बिल्कुल सर, डॉक्टर सुरेश चंद वैष्णव, एसोसिएट प्रोफेसर वैडिया विश्व भारती पीजी कॉलेज छबड़ा से, आपने वहाँ का जो श्रोता है वो किसान साथी है वहाँ का, तई बहुत अच्छी जानकारी दी महासागर, मानव जीवन में महासागरों का महत्व के बारे में, और इससे वहाँ का जो श्रोता है वो किसान भाई है जरूर लाभ लेगा, और कार्यक्रम में आवा के लिए और अपनो महत्वपूर्ण समय निकालवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल।

0: बहुत अच्छी जानकारी दी महासागर, मानव जीवन में महासागरों का महत्व के बारे में, और इससे माकर जो श्रोता है और किसान भाई है जरूर लाभ लेगा, और कार्यक्रम में आवा के लिए और अपनो महत्वपूर्ण समय निकालवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: और आप कार्यक्रम को टाइम भी पूरा ओवा में चालू, तो आपका साथी मुकेश कहते हैं दो आ गया। राम राम।
3: कृपया हमारे अगले का...

0: सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ यह विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, थैंक यू।
0: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप लंदन पीटीआई के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूँ।
2: नमस्कार। यहाँ आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है, और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो एक सफर है, इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूँ, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है, लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने बरसों से चल रहा है, 90 साल से जब आकाशवाणी की बात कर रहे हैं, और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखिए, कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए जो ये फिल्म संगीत है, क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्विअर्थी गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युवाणी से हुई थी। इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी, और मेरी पहली कमाई भी युवाणी से हुई थी। मुझे याद है शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युवाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी, यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके हैं और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IIMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा, प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी, और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी, और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी। तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
1: देखिए, 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसे आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना, और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर 3 कोस पे एक बोली बदल जाती है, और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है एंटरटेनमेंट के साथ साथ

0: सूचना देने का काम किया है वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद हैं, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है, मछुआरों को देनी है, सुनामी का हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहां आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहाँ क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के, तो ये जो एक लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है। इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी, और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है। अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय हैं, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी, आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर टीवी चैनल्स, विजुअल माध्यम जो है उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स है वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना, आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है वो आकाशवाणी से सुनता है, यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ TRP की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का तो आपने स्वयं ही बताया कि यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी TRP की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, इतनी गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र है और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र है जहाँ पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ, जब ये PTI के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी, माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ाया भी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
2: मैं उस पीढ़ी का हूं जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आए ही नहीं थे, तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर्स क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलविल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको

0: बच्चा बच्चा जानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत संगीत सरिता चित्रलोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा। मनोरंजन का साधन, महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं, फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलिहान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार। जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकी नंदन पांडे,
1: रामानुज प्रसाद सिंह,
0: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, पामेला सिंह, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने FM रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, वेव्स हैं रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपकी आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया। इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंडोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश गोवा CM डेड। अब ये हो गया शूटिंग लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
1: अच्छा।
0: उसके चलते वो गोवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कन्फर्म
1: करेंगे।
0: तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजी ने कहा साहब हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना है साहब ऐसा कोई समाचार नहीं है। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूँ आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री कार्यालय ने सैटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलो अप, उसने कहा क्या फॉलो अप, आपने कहा था गोवा CM डेड उसका फॉलो अप क्या है। तो रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
1: देखिए जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था। उस समय भी ऐसा होता था, पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधी लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोलकी पोल। ढोलकी पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए देखिए आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने FM चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए, और उसके बाद फिर ऐसे लग रहा है शायद फिर पीछे हो रहा है। तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम

0: प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर। और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको आज सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं। और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स, रेडियो के चैनल्स हैं चाहे वो टीवी के चैनल्स हैं, उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूं और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में, कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में जो किया अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम किए हैं वो इतने अनुपम है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही हैं, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी घर की हो?
1: देखिए, 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा। और भारत के आजाद होने के बाद ही यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
0: हमारे आकाशवाणी में आज भी वो स्टूडियो है
1: और आज वो बापू धाम बन गया और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहां महात्मा गांधी आए थे।
0: जी।
1: इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषाओं की बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खास तौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया। किसानों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही। असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थीं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गई और कमर्शियल मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा। तीन तरह के ब्रॉडकास्टर्स से हमारा परिचय रहा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो और खास तौर पर संगीत हो, जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया। और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में, थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो, आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़ी शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है। और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं, महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक। कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक,

0: एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न का टोला है। सारे रस हैं इसमें। वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ। नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे। तो दत्त साहब बताते थे कि जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे। लोगों से भीख मांगते थे, एक तरह से हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो। तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी। और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती है उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवा अवस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे, इनको मिस ना करूं, जरूर सुनूं।
2: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन। उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करेंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करेंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशंस या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं और इन कार्यक्रमों को हर छात्र युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं। तो हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। और जब हम लोग देखा करते थे हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था, हॉकी बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी मेलो वाली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हो, कवियों
1: जी को, पंत जी, सबने, महादेवी वर्मा, सबने,
2: सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद। और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे, जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे, ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं। गीत संगीत तो सुनते ही थे, और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गाँव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले, हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था। और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी, तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
1: स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सबैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980-82-83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ। और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज ही के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को। और मेरा एक बड़ा, एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म

0: रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनकी अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर। मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे, लेकिन उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया। वो कार्यक्रम भी सवाई की में 2 जून 1988 को गया था, जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है। तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की, तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम करता रहा। मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था। उस समय बड़ा मुश्किल था, आज के समय के हिसाब से अपना जो छात्राएं हैं उनसे खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गया, लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था। लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मेटल रिकॉर्डर हो जाता था, वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर फिर बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था। लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी, डॉक्टर से भी बात करते थे, लोगों से भी बात करते। कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए, वो भी इसके अंदर चल रहे हैं। तो टंडन साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को, किस रूप में देखते हैं आप आज?
1: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था, जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे, तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया। विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो, या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती थी, बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे। और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें, उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर। हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे। और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करस्पॉन्डेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी, और उन पर जितना दबाव रहता था, क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया, जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर करती है पाकिस्तान की सेना, तो यहाँ से एक स्पेशल वार कॉरेस्पॉन्डेंट बनके सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहां पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है, लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम हैं जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया। और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर, सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर, तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए, अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है। आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है, और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा, उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे। आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है। तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है। चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा। उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है। पहले एक जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था। हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था, तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी। आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
2: देखिए, आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन

बाद भी लोग तन्मयता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है। रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है और आने वाले समय में जिस तरह के आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में

0: मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर पर 11वीं-12वीं को पढ़ाता हूं। मैं माननीय टंडन जी से एक सवाल करूंगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में।
1: जी टंडन साहब,
2: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे, लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था, और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर ना और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी है ही है। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है उनके साथ हो रहा है, और मैं ये कहना बिल्कुल

0: एक साख बनाई है, उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है। और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए, वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में, स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइश वेले है, ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं, या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
1: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, टंडन साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पे जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है, तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है। और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही हैं, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्ज्वल होगा।
2: बिल्कुल। और कोई सवाल पूछा चाहे जरा बताएं। जी आप बताएं।
3: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हुई इस बात की जानकर के सर की पहली कमाई मैम की भी युवाणी से, आपकी भी और मेरी भी सर वहीं से हुई। मैम, मेरा नाम मनीष आजाद, रेडियो वाले है, और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हुआ, और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ,
2: इसीलिए रेडियो वाले आपका नाम है।
3: सर, ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है, क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं, आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम तालमेल किया जाए?
1: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का, वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था, उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
2: जी आप पूछिए सवाल।
4: जी नमस्कार।
2: नमस्कार।
4: मैं डॉक्टर पारुल राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन, तो जो कहते हैं ना कि एक कोना जो खाली है, वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाए, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
2: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं, और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
1: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर
2: सखी संगीत चल रहा है, महिलाओं को अचार बनाना, ऐसी घर की चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। कई बार वो जो व्यंग्य कार्यक्रम उसमें जोड़ देते थे कि आप जो अचार बनाने से कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कहीं पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह कह रहे, वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा, तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो लोकप्रिय। जी मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब, कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को और क्या उनका रहता था?
0: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं, तो देखिए वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही, और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामयिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ, इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए। वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है, और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
2: तो जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जाहिर है इतने सारे अखबार आते थे, उनका मीडिया क्लिपिंग्स आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति, खासतौर समाचारों के प्रति,
0: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं, और आज भी वही है।

0: मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है,
1: बिल्कुल।
0: और जितने लोग

0: मेरी बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए। क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
1: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और पीएचडी रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स हैं उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए। किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है विशेष रूप से, आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है,
2: बड़े-बड़े संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
1: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
2: बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे, और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी का अभी मैंने कुछ दो तीन पंक्तियां लिखी हैं अपने मेरे कवि मन ने कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
3: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
4: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियमन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा, और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
5: ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। थोड़ी देर में श्रोता सुनेंगे समाचार संध्या।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इजराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
7: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में

प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के

0: AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदी

0: www.radiomirchi.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदी
3: लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं रूप कुमार राठौर के गाए इस भजन के साथ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए सुनते हैं सलमा आगा से ये गीत।

और अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे चंदन दास से कार्यक्रम की अगली गजल।

और आइए अब सुनते हैं भूपेंद्र और मिताली के

और आइए अब सुनते हैं भूपेंद्र और मिताली के युगल स्वरों में ये गजल।